मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू

0: व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ इस मातृभूमि वंदना से।

उषा टंडन, राहत अली और साथियों के समूह स्वर में ये थी देशभक्ति पूर्ण रचना। वंदना में लीजिए सुने हरिओम शरण के स्वर में निर्दोष की ये भक्ति रचना।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आपने सुनी निर्दोष की ये भक्ति रचना। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुने लता मंगेशकर के स्वर में सूरदास का ये भक्ति पद।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति पद। आइए अब सुने पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोमकली के स्वरों में ये भजन।

पंडित कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोंकली के स्वरों में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। आइए अब सुने विनोद चटर्जी के स्वर में ब्रह्मानंद का ये भक्ति पद।

0: विनोद चटर्जी के गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की वंदना अब संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। आइए अब सुने चिंतन। आलेख श्री वल्लभ चंद्र थानवी का है।
1: मनुष्य जीवन भाग्य से नहीं, कृपा से मिली अनमोल वस्तु है। करुणा वरुणालय की, करुणा से प्राप्त नरदेह ईश्वर की अहेतु की कृपा का सुफल है। जब जीव असंख्य जन्मों तक निम्न योनियों में भटकता हुआ अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगता है, तब महाकारुणिक प्रभु उसे ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जो जन्म मरण की मुसीबतों से उसे हमेशा के लिए बचा सकने में समर्थ होता है। भवसागर से पार जाने के लिए उसे नरतनु रूपी जहाज प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि मात्र इसी शरीर से साधन कर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नीचे की योनियों में प्रकृति की पराधीनता में रहकर केवल कष्टों को भोगते हुए मिली आयु पूरी करने की विवशता है। अधिकांश में तो ज्ञान का पूर्णतः अभाव ही है। कुछ प्रजातियों में ज्ञान है भी तो वो भोजन प्राप्ति और आत्मरक्षा तक ही सीमित है। मनुष्य जिन्हें अपने से श्रेष्ठ समझता है उस देव योनि में भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना अवश्यंभावी है। गीता में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरकर पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का साधन न तो मनुष्य से नीचे की योनियों में संभव है और न ही उससे ऊंचे की देव आदि योनियों में ही, और तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती जीव दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। यह सिद्धांत है, दुखों से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है, क्योंकि बंधन किसी को भी अभीष्ट नहीं होता। स्वतंत्र होना, स्वाधीन होना आत्मा का सहज गुण है। इस सहज स्वरूप में स्थिति के लिए जीव मात्र प्रयत्नशील है, पर सही दिशा में प्रयत्न न होने के कारण लक्ष्य प्राप्ति से वो वंचित रह जाता है। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत सभी जीवधारियों पर समान रूप से लागू होता है, पर प्राणी विज्ञान का यह सिद्धांत प्राणियों के जिस विकास की सीमा को तय करता है वो केवल भौतिक और जड़ शरीर के सर्वांग विकास तक ही सीमित है और उसकी परिणति है योग्यतम का चुनाव। लेकिन विकास के इस शिखर पर पहुंचकर भी दुखों से पूर्णतः छुटकारा तो फिर भी नहीं मिल पाता है। यहां से आगे की यात्रा आध्यात्मिक विकासवाद में देखी जा सकती है। आधुनिक युग में अरविंद जैसे महर्षियों ने इसे बौद्धिक स्तर पर समझाने का भरपूर प्रयास किया है। आध्यात्मिक विकासवाद की चरम परिणत है मोक्ष, पर इसकी प्रथम शर्त है मुमुक्षा, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा। इसलिए हमारे शास्त्र प्रारंभ करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथवा अथातो धर्म जिज्ञासा। अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए या अब हमें धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये प्रबल ब्रह्म जिज्ञासा ही मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो जाती है, और यदि वो भाव प्रधान व्यक्ति है तो धर्म जिज्ञासा उसे अपने इष्ट की प्राप्ति कराकर हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक में निवास दे देती है, जहां आनंद का उपभोग करता हुआ वो पुनः

0: जन्म मरण के महान कष्ट से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है।
1: चिंतन अभी आपने सुना, आलेख श्री वल्लभ चंद्र थानवे का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:35 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रसारण। 6:35 होने को हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: अनुराधा पौडवाल। आकाशवाणी के इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए मछली पालन के लिए सरकारी योजनाएं, सहायता और सब्सिडी, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बसंत सिंह।
1: नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय, मछली पालन के लिए सरकारी योजना, सहायता और सब्सिडी, एक ऐसे उभरते हुए व्यवसाय पर जो न सिर्फ किसान का आय बढ़ाने में मदद कर रहे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे, या एक मछली पालन से हम कर सकते हैं। पहला चीज ये है कि आज के दिन में अगर देखा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मछली पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी या प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि मछली पालन के लिए आज भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजना चलाई जा रही है। जैसे कि मैं आपको कुछ योजना के बारे में बताना चाहूँगा, आप जिससे मछली पालन कर सकते हैं, तालाब निर्माण कराना कर सकते हैं, तालाब का गहरीकरण कर सकते हैं, या अपने खुद के जमीन पर तालाब बना के मछली संग मुर्गा पालन कर सकते हैं। कई प्रकार के शासन की योजना है, तो मैं आपको कुछ योजना के बारे में बताना चाहूँगा। जो पहला योजना है, जैसे कि आपको पता होगा सभी, एक योजना है भारत सरकार का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह एक ऐसी योजना है जिससे भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में सामग्री विकास करना। इस योजना के तहत मछली पालन से जुड़े लगभग हर काम पर आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि क्या क्या आर्थिक सहायता दी जाती है, तालाब निर्माण कराना, पुराने तालाबों को सुधार करना, मछली बीज का खरीदी बिक्री में सहयोग करना, मछली के लिए चारा के खरीदने में सहयोग करना, एरिएशन सिस्टम या कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधा पर हर तरफ के आय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको सब्सिडी दी जाती है। और दूसरा सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सब्सिडी है जिसमें पहले के क्या होता, मात्र सिर्फ कृषि के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड पहले सुविधा केवल खेती के लिए था, लेकिन अब मछली पालन और पशुपालक को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। केसीसी के माध्यम से किसान बहुत ही कम ब्याज दर पर आसानी से लोन ले सकता है। उन्होंने शुरुआती निवेश करने में काफ़ी मदद मिलती है और वह बिना आर्थिक दबाव को अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कुछ केसीसी से क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कम ब्याज दर पर लोन लेना, खर्च के लिए पैसा मिलना, मछली बीज खरीदने के लिए पैसा मिलना, चारा खरीदने के लिए पैसा मिलना, दवा और देखभाल के लिए भी सब्सिडी मिलता है। और दूसरा चीज NFDB, जिसको आप सभी जानते हैं, फुल फॉर्म नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहा जाता है, जो कि मछली पालन के लिए किसी तरह का मदद करता है। जैसे कि NFDB ट्रेनिंग और तकनीकी जानकारी प्रदान कराता है, प्रोजेक्ट के लिए वित्त सहायता प्रोवाइड कराता है, आधुनिक मछली पालन का तरीका सिखाता है, और लाभ जैसे कि कई सारे योजना छत्तीसगढ़ शासन राज्य सरकार मछली पालन के तरह तरह का सहायता देता है। जैसे कि मुफ्त में सस्ता मछली का बीज, जैसे कि मछली का बीज अलग अलग प्रजाति का मछली का बीज, जैसे कतला, रोहा, मिर्गल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सब अलग अलग प्रजाति का मछली का बीज मुफ्त या सस्ते दाम पर राज्य सरकार मुहैया कराता है, और तालाब निर्माण और सुधार में सहायता प्रदान करता है, प्रशिक्षण और तकनीकी में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए स्टेट राज्य सरकार से, तो आप निजी आपके विकास खंड या जिला सहायक संचालक मछली पालन विभाग में जाके मत्स्य विभाग के अधिकारी से संपर्क करके आप मछली पालन विभाग का अच्छे से अच्छे जानकारी ले सकते हैं, तालाब निर्माण कराने के लिए सहयोग ले सकते हैं। और योजना की बात किया जाए तो योजना अभी सरकार इतना ध्यान दे रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कराने के लिए कि कई प्रकार के तालाब निर्माण होते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं आप, पॉन्ड लाइनर हो गया, जिसमें प्लास्टिक का एक लेयर रहता है जिसमें 2500 डिसमिल का जरूरत रहता है। आप इसमें अच्छे से अच्छे कम दामों में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और आपका ज़्यादा आमदनी मिल सकता है। आज के समय में प्रारंभिक खेती के साथ साथ वैकल्पिक आय का स्रोत बहुत ही जरूरी है हो गया है। ऐसे में मछली पालन एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। अच्छी बात यह है कि सरकार भी इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए कई लाभकारी योजना चला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, ब्लू रेगुलेशन, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये सब संस्थाएं हैं जो किसान को आय बढ़ाने के लिए टेक्निकल

0: सपोर्ट करता है। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा में अभी आप मछली पालन के लिए सरकारी योजनाएं, सहायता और सब्सिडी, इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे बसंत सिंह। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। करंट अफेयर्स ये कार्यक्रम सुनेगा रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहिर भैरव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर। और श्रोताओं, इसी कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनेगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इनसे मिलिए, ये कार्यक्रम सुनेगा 8:30 पर। इसमें आप सुनेंगे अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे दीपक हटवार। कार्यक्रम नवा बिहान में 9:00 सुनेगा योग से नशा मुक्ति विषय पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता का दूसरा भाग। भेंट करता होंगे नेमी चंद साहू। सुबह 11:05 पर प्रादेशिक संगीत पर आधारित कार्यक्रम अनुराग धारा में सुनेगा गुजराती गीत। कलाकार होंगी जिगीशा किराडिया। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 12:00, शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट और एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 पर। शाम 5:10 पर युवाणी सजेगी हिंदी में। इसमें आजकल का विषय होगा परिवार हमारी ताकत है और होगा क्रम जश्न आवाज। इसमें आप सुनेंगे शीला श्रीधर से ली गई भेंटवार्ता। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात आधारित होगी खेती माँ सौर ऊर्जा अपनावन लागत ला घटावन और हेलो चौपाल में सुनेगा फसलों में समेकित कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के लाभ। इस विषय पर डॉक्टर SM अली हुमायूं कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद द्वारा दी गई जानकारी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सतीश कुमार यदु और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:40 और 8:15 पर कलाकार होंगे पवन चंद्राकर और इसी कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे उदित नारायण। 10:30 पर श्रोताओं आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

0: IPL इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं।

0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। हर सुबह अंधकार की चादर हटाकर सूरज अपने पैर पसारता है और नव कलेवर लिए फिर से उगता है। नई आशा, नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नए विश्वास और नए रंग के साथ। वो रंग जो न केवल आसमान को अपनी लालिमा से रंगते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी सपनों के नए रंग भरते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो नया सवेरा हमारे जीवन में भी एक नया दिन लेकर आता है, एक नई शुरुआत का दिन जो हमें खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने का मौका देता है। तो आइए साथ मिलकर गर्म जोशी के साथ आज की इस नई सुनहरी सुबह का स्वागत करें और कुदरत के इस नायाब तोहफे के लिए उसका शुक्रिया करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में, ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: जीवन में किसी भी महान काम को करने के लिए शक्ति और आत्मविश्वास दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। श्रोताओं, ये प्रेरणादायक सुविचार है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और अपने सुविचार के जरिए वो हमें जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास के महत्व को समझा रहे हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। साथियों, जीवन में आत्मविश्वास का होना जरूरी है, पर एक संतुलित मात्रा में, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। और इसी तरह शक्ति का होना भी अनिवार्य है, पर स्वचेतना के लिए, ना कि बल प्रदर्शन के लिए। जब हमारे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास दोनों ही संतुलित मात्रा में होते हैं, तब ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और आत्मबल प्रदान कर सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। जब कभी भी जीवन में संघर्ष, चुनौती या विपरीत परिस्थिति आती है, तब ये हमें परखती है और उस पल में लिया हमारा निर्णय असल में हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, क्योंकि हम दुनिया से तो छुपा सकते हैं, पर खुद से नहीं। जो अंदर से कायर और बुजदिल होते हैं, वो इन परिस्थितियों से मुंह फेर लेते हैं और इनसे बचने के बहाने ढूंढने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बहादुर व्यक्ति अपनी पूरी आंतरिक शक्ति और आत्मबल से ऐसी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। तो अब फैसला हमारा है कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से करते हैं। आत्मविकास एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर दिन हमारा नया जन्म होता है। इसलिए खुद को पहचानने में जुटे रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ी सफलता है। और आत्म सुधार के लिए भी कभी देर नहीं होती, और जिसने खुद को विकसित किया उसने दुनिया को बदल दिया।

श्रोताओं, नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये सफर यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले हम आप सभी के साथ अपनी खुशियां साझा करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अपनों के साथ खुशियां बांटने से वो और भी ज्यादा बढ़ती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है, और इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी के विविध केंद्रों में ढेरों आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आकाशवाणी रायपुर ने भी आज यानी 15 मई को सुबह 7 बजे से ही वॉकेथॉन का आयोजन किया है, जिसमें आकाशवाणी का पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि आप सभी हमारे इस परिवार के अनमोल नगीने हैं, और आप हैं तो हम हैं। इसलिए आकाशवाणी रायपुर परिवार आप सभी रेडियो प्रेमी श्रोता साथियों को तहे दिल से इस वॉकेथॉन के लिए आमंत्रित करता है। श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ें। तो साथियों, कुछ दिन तारीख ऐसे होते हैं जो मानव समूह, संगठन, समाज, देश द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, घटना या मान्यता की स्मृति में मनाए जाते हैं। और आज 15 मई है, यानी साल के 5वें महीने का 15 दिन। तो आइए हम भी जाके इतिहास के पन्नों में और देखें कि इस तारीख में क्या कुछ खास है। साथियों, परिवार जो प्यार, खुशी और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है, जिसकी छाओं में दुनिया भर का हर गम खत्म हो जाता है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर के परिवार की महत्ता, सामाजिक भूमिका और उसकी अहमियत को समझाने और जागरूकता को बढ़ावा देने हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी परिवारों को सुख समृद्धिवान बनाना और उनके अस्तित्व को बढ़ावा

0: देना है। तो आज इस अवसर पर एकल परिवार, वैश्वीकरण और बच्चों के सर्वांगीण विकास में इसके प्रभाव पर हमने विशेष चर्चा की फैमिली काउंसलर और लाइफ कोच रोमा कौशिक से, जो पिछले 7 सालों से इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं लाइफ कोच डॉक्टर रोमा कौशिक से विशेष चर्चा।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी श्रेया।
1: मैम, आजकल बदलती लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर के चलते समाज में न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार का चलन बढ़ गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगी?
2: श्रेया, इस पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर परिवार का अपना एक सुंदर सा रूप होता है। अब चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली की बात करें या ज्वाइंट फैमिली की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स को बच्चों के साथ इंडिविजुअल बॉन्डिंग एंड फोकस अटेंशन देने का मौका भी मिलता है। हाँ, बिजी स्केड्यूल के कारण चैलेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन अगर घर में प्यार और कोऑपरेशन, इमोशनल सपोर्ट हो तो बच्चों में अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट होते ही हैं। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और रेगुलर फैमिली कनेक्शंस के थ्रू हम जॉइंट फैमिली का भी वैल्यू और क्लोजनेस को भी बनाए रख सकते हैं, बिकॉज आजकल सारी चीजें इंटरनेट में एंड वर्चुअली हम अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट।
1: मैम, ऐसे में अक्सर क्वालिटी टाइम का जिक्र जरूर होता है, तो ऐसा क्या करें कि काम और परिवार में संतुलन बना रहे?
2: फिर मैं यही बोलूंगी, संतुलन बनाने के लिए डेफिनेटली क्वालिटी टाइम सबसे जरूरी है। तो हमें रोज कुछ समय बिना फोन और डिस्ट्रैक्शन के फैमिली के साथ बिताना चाहिए। साथ में जैसे खाने के टाइम पे हम कुछ रूल्स बना सकते हैं कि नो टीवी, नो फोन। बच्चों के साथ बात करना और उनकी छोटी छोटी बातों को सुनना बहुत मायने रखता है। जरूरी नहीं कि हम पूरा दिन साथ में रहे, लेकिन जो समय साथ में बिता रहे वो मीनिंगफुल और थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए।
1: मैम, आज के आधुनिक युग में भारतीय परिवारों पर विदेशी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, ऐसे में संस्कृति और वैश्वीकरण में तालमेल बना रहे इसके लिए क्या करें?
2: तो मैं यही बोलूंगी कि ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली हमको नए थॉट्स और अपॉर्चुनिटीज देता है, जबकि हमारी संस्कृति से हमें पहचान और मूल्य समझ आता है। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर के साथ साथ अपनी लैंग्वेज, जो भी कल्चर है, फेस्टिवल्स है, और बड़ों के साथ समय थोड़ा सा बिता के सारी चीजें सिखाई जा सकती है। बच्चों में मॉडर्नाइजेशन का भी एक अवेयरनेस रहेगा, प्लस जो हमारे कल्चर्स है जो फेड हो रहे हैं, दैट इज अ कंसर्निंग पॉइंट, उसको भी आई थिंक कंटिन्यू किया जा सकता है।
1: मैम, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब फैमिली स्ट्रेस जैसी परेशानियां आड़े आती हैं, तो ऐसे में परिवार को तनाव मुक्त कर स्वस्थ वातावरण कैसे बनाएं?
2: फिर मैं ये बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। खुल के बात करना बहुत जरूरी है, चाहे वो अपने चैलेंजेस के बारे में हो या अचीवमेंट के बारे में। जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो काफी ज्यादा समझते हैं एक दूसरे में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एंड सपोर्ट भी करते हैं, तो स्ट्रेस डेफिनेटली कम होता है। साथ में वक्त बिताना, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे थोड़ा सा घर पे पॉजिटिव माहौल रहता है। जरूरत पड़े तो थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए, अगर हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड हम उस चीज को कोप अप नहीं कर पा रहे, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी मुझे लगता है कि हमें कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए।
1: मैम, अंत में आज विश्व परिवार दिवस के अवसर पर आप हमारे सभी श्रोताओं से क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
2: तो मैं इससे यही बोलूंगी कि परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, सबसे जरूरी है उसमें लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड टुगेदरनेस। आज के इस खास दिन पे मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, क्योंकि एक हैप्पी एंड स्ट्रेंथ फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा समय साथ बिता रहे हैं और अपने फैमिली के लिए एक रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन हो।
1: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: QR कोड स्कैम। जब भी कोई अज्ञात कॉलर किसी भी कारण से पेमेंट की बात करता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसको आपको पेमेंट देना है, और पेमेंट देने के लिए एक QR कोड भेजकर कहता है कि आप इसको स्कैन कीजिए और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपके साथ ठगी हो सकता है, क्योंकि QR कोड पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। सस्ती डील और लालच में ना आए, जागरूक बने, सतर्क रहें। किसी प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल की मदद ले सकते हैं, या www.cybercrime.gov इनमें भी जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
2: श्रोताओं, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में उसके युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि युवा देश की धड़कन होते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि उन्हें सही माध्यम से जोड़ा जाए, और इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने साल 2023 में माई भारत मेरा युवा भारत पोर्टल की शुरुआत की थी, और उसकी सफलता के बाद अब नए कलेवर में युवाओं का ये खुला मंच डिजिटल प्लेटफॉर्म माई भारत मेरा युवा भारत 2.0 लॉन्च किया गया है, जो युवाओं को उनके करियर और कौशल विकास के लिए एक स्मार्ट, उत्तरदायी और तकनीक आधारित बेहतर मंच प्रदान करता है। इस नए संस्करण से युवाओं को मिलने वाली विशेष सौगात से जुड़ी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की राज्य निदेशक प्रभारी श्री अर्पित तिवारी से। तो आइए आपको सुनवाए माई भारत के राज्य निदेशक प्रभारी श्री तिवारी से इस विषय पर खास बातचीत।
3: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
4: धन्यवाद श्रेया जी।
3: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि माय भारत पोर्टल के जरिए हाल फिलहाल में युवाओं को क्या नई सौगात दी गई है।
4: माय भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को फिजिकली और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव से जोड़ता है। माय भारत के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं, और इन सभी के लिए बहुत सारी समय समय पे नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर निकल के आते हैं। इसमें अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंटर्नशिप स्कीम निकाली गई है वो माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं तक पहुंच रही है। इसमें अलग अलग विधाओं में, अलग अलग सेक्टर में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। ये पेड इंटर्नशिप हैं, और इसमें नए नए अलग अलग सुदूर क्षेत्र के जो युवा हैं उनको भी भाग लेने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आए हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ST स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्र जो अंतिम वर्ष में हैं या फिर MTech के स्टूडेंट्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं या इवन फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए भी निशुल्क ISC बैंगलोर के द्वारा ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम माय भारत के जरिए किया जा रहा है। साथ ही साथ वॉलंटियर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिससे उनकी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके, यूथ लेड इनिशिएटिव डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के काफी प्रतियोगिताएं भी हो रही है। इसी तरीके से अलग अलग यूथ लेड और यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव चल रहे हैं जो माय भारत अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं तक पहुंचा रहा है।
3: सर, इन कार्यक्रमों में कौन कौन भाग ले सकते हैं, क्या इसके लिए किसी प्रकार का कोई विशेष वर्गीकरण किया गया है?
4: नहीं, माय भारत जो है सभी वर्ग के युवाओं के लिए, सभी क्षेत्र के युवाओं के लिए ओपन है। 15 से 29 वर्षीय कोई भी युवा

0: माय भारत पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है, उसमें जो पब्लिश्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, उसमें भाग ले सकता है। इसमें कोई भी तरीके का जो है रिजर्वेशन नहीं है, सभी चीजें ओपन है और इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज रहती है वो केस टू केस बेसिस पे भाग लिया जा सकता है। जैसे पीएम इंटर्नशिप है, इसमें 18 से 25 वर्षीय युवा ही भाग ले सकते हैं। तो एज जो एक है फैक्टर, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनके हिसाब से। इसके अलावा जो है हर वर्ग के लिए माय भारत की अपॉर्चुनिटीज ओपन है और इसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि माय भारत युवाओं के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, एकेडमिक कॉलेजेस और हमारे इंडस्ट्रीज सभी के लिए ओपन है। इवन मेंटर मेंटी प्रोग्राम भी है, तो जो युवा वर्ग से ऊपर भी जा चुके हैं वो भी इसमें भाग ले सके। माय भारत एक मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को अपॉर्चुनिटी से जोड़ता है। तो इसमें हर वर्ग के, हर क्षेत्र के युवा भी शामिल हो सके, इंडस्ट्रीज भी शामिल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो सके, नॉलेज इंस्टीट्यूशन भी जुड़ सके, ये भी के लिए ओपन है।
1: सर, जो इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, किस तरह की प्रक्रिया इसमें शामिल है?
0: देखिए, माय भारत में जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो हमारे ऑफिसेज हैं छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में पुराने 16 जिलों में माय भारत के ऑफिसेज हैं और अभी इसी वर्ष बीओजी के द्वारा नए 17 जिलों में भी ऑफिसेज खोलने का प्रावधान आया है। अगले 2-3 महीनों में हम पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में माय भारत प्रेजेंस स्थापित कर पाएंगे। अभी भी हमारी प्रेजेंस है पर वॉलंटियरिंग के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो एक तो माध्यम यह है कि कार्यालय में आके बातचीत करके जुड़ा जा सकता है और उसे भी एक आसान तरीका है जो हमारा माय भारत पोर्टल है, उसमें जाके बहुत ही सिंपल स्टेप में पंजीयन किया जा सकता है। myBharat.gov.in पे जाकर रजिस्टर नाउ में क्लिक करके अपनी बेसिक जानकारी भरते हुए इसमें जुड़ा जा सकता है।
1: सर, क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी विशेष दस्तावेज या समय सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है?
0: देखिए, समय सीमा और दस्तावेजीकरण की जरूरत तो केस टू केस बेसिस पे होती है। जैसे पीएम इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है वो समय बाध्य है, इसमें इसकी लास्ट डेट रहती है अप्लाई करने के लिए। वैसे ही हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा जो ईएलटी है उसमें भी समय सीमा रहती है। वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज रहती है वो भी स्पेसिफिक समय के लिए रहती है, तो उसमें भी समय सीमा रहती है। तो हर कार्यक्रम का जो है उसमें समय सीमा रहती है। इस वजह से समय सीमा प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जो भी उधर सारी जानकारी रहती है, तो हमें समय का ध्यान जरूर रखना पड़ता है।
1: सर, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से और खास तौर पर युवाओं से क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी युवाओं से यही आह्वान करना चाहूंगा कि देश निर्माण में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और माय भारत से जरूर जुड़े, जिससे कि आपको भी अवसर मिल सके और देश निर्माण में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
1: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत एक अमूल्य धरोहर होती है। फिर चाहे वो कोई इमारत हो, कला हो, सभ्यता हो, भाषा हो या फिर लिपियां। साथियों, हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई पांडुलिपियां, हस्तलिखित ग्रंथ और ताड़पत्र केवल कागज या पत्तों पर अंकित शब्द नहीं है, बल्कि वो हमारी सभ्यता, इतिहास और ज्ञान परंपरा के जीवंत साक्ष्य हैं। इसलिए इन्हें संजो कर रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भी इस ओर एक अनूठी पहल की है और एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना ज्ञान भारतम अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण से इस अमूल्य धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। ऐसे में इस अभियान से जुड़ी सटीक और अधिकृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की जिला नोडल अधिकारी श्रीमती अंजलि शर्मा से। तो आइए आपको सुनवाएं श्रीमती शर्मा से इस विषय पर विशेष संवाद।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्ते श्रेया।
1: मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ज्ञान भारतम अभियान के बारे में बताएं और ये भी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: श्रेया, ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में मौजूद जो प्राचीन एवं हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं उनकी खोज करना, संरक्षण करना और उनको डिजिटलाइज करना है। और यह जो अभियान है, यह चाहता है कि हमारी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है वो सुरक्षित रहे और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।
1: मैम, इस अभियान में कौन कौन भाग ले सकते हैं?
2: इस अभियान में समाज का हर वर्ग भाग ले सकता है, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, शोधकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आम नागरिक हो, जिसके पास एक पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि हो, पांडुलिपि यानी मेनुस्क्रिप्ट हो, वह इसमें भाग ले सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि युवा और शिक्षण संस्थान इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े।
1: मैम, इस अभियान से जुड़ने की प्रक्रिया किस प्रकार है? जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें इसके लिए क्या करना होगा?
2: इस अभियान से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इच्छुक व्यक्ति अपने पास उपलब्ध पांडुलिपियों की जानकारी जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को दे सकता है। इसके लिए मैं कुछ नंबर्स भी शेयर कर देती हूँ, जैसे 9111008718 या 9300853074, 9406144822। इन जगहों पर वो बता सकता है कि उसके पास में इस प्रकार की कोई पांडुलिपि है। फिर हम उसके घर पे जाएंगे, हमारा सर्वेयर भेजेंगे और उसके पांडुलिपियों का सत्यापन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पांडुलिपि उसी के पास रहेगी, सिर्फ उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
1: मैम, इस अभियान में विशेष तौर पर किस प्रकार की लिपियों का संरक्षण होना है?
2: देखिए, 75 साल पुरानी पांडुलिपि मतलब होती है हस्तलिखित लिपि। भाषा कोई भी हो सकती है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, तमिल, कुछ भी भाषा हो सकती है। ताड़पत्र, ताम्रपत्र या पुराने कागजों पर लिखी हो सकती है। किसी भी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है, पारंपरिक ज्ञान हो सकता है, ये सभी पांडुलिपि में आता है।
1: मैम, क्या इस अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है?
2: जी, इस अभियान के लिए शासन ने 31 मई एक समय सीमा दी हुई है। तब तक हमको सर्वे करके मैपिंग कर लेना है। इसीलिए नागरिकों से मेरी अपील है कि समय सीमा के भीतर वो सक्रिय रूप से भाग ले और हमें अपनी अमूल्य पांडुलिपियों की जानकारी साझा करें।
1: मैम, अंत में आप इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगी या उन्हें क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
2: मैं जिले के सभी नागरिकों से कलेक्टर सर के बिहाफ पे ये अपील करना चाहती हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हमारी जो पांडुलिपियां हैं केवल कागज या ताड़पत्र नहीं है, बल्कि वे हमारे इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का अमूल्य खजाना है। तो ये हम सभी का दायित्व है कि इस धरोहर को हम सुरक्षित रखें और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। इसलिए जिसके पास भी पांडुलिपि है, जो उपरोक्त में नंबर बताई हूँ, कृपया उन पे कॉल करें। थैंक यू सो मच
1: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, आइए अब आपको नया रायपुर स्थित IIIT में PhD प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा के संबंध में जरूरी जानकारी दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नया रायपुर स्थित IIIT में ऑटम सेमेस्टर 2026 में PhD प्रवेश के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई है, जिसके शॉर्टलिस्ट की घोषणा 25 मई को होगी, तो वहीं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 3 जून को होगा और इन सभी के बाद परिणाम की घोषणा 5 जून को की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि संस्थान में PhD कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गणित, भौतिकी, मानविकी एवं प्रबंधन जैसे विषयों के साथ साथ बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरते अंतर्विषयीय क्षेत्रों को भी शोध के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी विधा में पारंगत होने का विचार कर रहे हैं तो कृपया साझा की गई उपरोक्त जानकारियों पर विशेष ध्यान जरूर दें।

श्रोताओं, सच्चे रिश्तों की गहराई को नापा नहीं जा सकता। ऐसे एहसास जो हर परिस्थिति में एक समान हो, वही रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाते हैं। एक ऐसा ही प्यारा और अनूठा रिश्ता है आपका और आकाशवाणी रायपुर का। तो इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखें और हमें अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। साथियों, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये सुहाना सफर यहीं पूरा होता है। आज के लिए इस खूबसूरत सफर की यहीं समाप्ति होती है। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं? हमें पत्रों के माध्यम से जरूर लिख भेजें। हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत जल्द नए अंदाज में, नई बातों, नई गीतों और नई रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और याद रखें कि आज 15 मई है और आज आकाशवाणी रायपुर ने वॉकेथॉन का आयोजन किया है। तो बस इन्हीं ढेर सारी बातों और मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए अपनी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत और स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।
3: विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में

0: सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट।

0: कोड़िकोड के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sander World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, "Energy remains a key pillar of the relationship." He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE so sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
7: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
4: Brazilian Foreign Minister petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees.

इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की बुनियादी जरूरत शिक्षा होती है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के अनेक राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां तक साक्षरता और शिक्षा की बात है, हमारे प्रदेश ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में देश के अन्य राज्यों की तरह अपना एक स्थान बनाया है। अगर अतीत की बात करें तो हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षरता और शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन आज विभिन्न प्रयासों के साथ

0: इस रेस में हम भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में साक्षरता और शिक्षा की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे को। इस कार्यक्रम में प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म रायपुर में हुआ है और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में मेरे पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में रहे हैं तो उनका ट्रांसफर जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ हम रहे। जैसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी बस्तर में हुई, रायपुर ज़िले में हुई, फिर बालोद जो अब अलग ज़िला बन गया, पहले विभाजित दुर्ग ज़िला हुआ करता था, वहाँ पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई।
0: उसके बाद फिर उच्च शिक्षा आपकी कहाँ की रही?
1: उच्च शिक्षा भी हमारी ज़्यादातर शुरुआत जो है वो रायपुर की रही और उसके बाद फिर बालोद में ही हमारी उच्च शिक्षा हुई।
0: आपकी उच्च शिक्षा जब पूर्ण हुई तब आपने सोचा होगा कि किस क्षेत्र में जाया जाए?
1: जब मैं शासकीय महाविद्यालय बालोद में अध्ययनरत था उस समय रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रोग्राम चलता था, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम। उसमें 10 केंद्र जो असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ा किए जाते थे, जन शिक्षण निलियम ये बनाया गया था। उस समय वहाँ पर जो भी प्रभारी प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे मेरी रुचि को देखते हुए NSS राष्ट्रीय सेवा योजना NCC इत्यादि की रुचि को देखते हुए मुझे कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है तो आप ये करेंगे। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि असाक्षरों को साक्षर करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो उन 10 केंद्रों के सुपरविजन का काम मुझे सबसे पहले सौंपा गया था। ये 1986 की बात है लगभग। तो पहली शुरुआत मैंने वहाँ से जब की तो धीरे धीरे मेरे मन में ये महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को ही साक्षर किए जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
0: प्रशांत जी, जब इस कार्य की शुरुआत आपने अपने जीवन में की तो ये कितने बरस पहले की बात होगी?
1: ये लगभग 35 वर्ष पूर्व की बात है, क्योंकि 86 से 1990 के दरमियान मैं कॉलेज में ही था और उस समय मैंने ये कार्य वहाँ पर किया। और उसी समय जब मैं कॉलेज में की पूरा करने के बाद जब अपनी पढ़ाई मेरी समाप्त हो रही थी उसी समय अविभाजित मध्य प्रदेश में साक्षरता आंदोलन चला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलकर ये अभियान हमारे अविभाजित दुर्ग जिले तक पहुंचा और उस आंदोलन से मैं जुड़ गया। और पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, धीरे धीरे से मैंने राज्य स्तर और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा।
0: प्रशांत जी, जिस वक्त साक्षरता अभियान चला था उस वक्त तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, लेकिन फिर भी अगर हम अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति उस समय कैसी थी, फिर बाद में इसमें किस तरह का परिवर्तन आपने देखा?
1: पहले तो लगभग 1/4 लोग असाक्षर उस समय थे जब राज्य बना था 25 वर्ष पहले। अब तो 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर लिए हैं और आज स्थिति आ गई कि हम अब 1/3 और उससे भी कम हमारे अब असाक्षर रह गए हैं। लगभग ये हम यदि थोड़ा सा भी यदि प्रयास करेंगे तो हम लोग 100% साक्षरता की ओर, एक निश्चित कार्य योजना जो हमारी बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 47 के पहले तक हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर ले, तो उसके पहले भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
0: अगर अभी हम पूरे देश में राज्यों की एक लिस्ट बनाते हैं तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं?
1: साक्षरता की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी का जो पायदान है वो काफ़ी नीचे, 10 से नीचे अभी आ गया है वो।
0: आपने 2003 के बाद जब यहाँ पर साक्षरता अभियान चलाया तो उसके बाद की और आज की स्थिति में आपको जो फर्क दिखाई दे रहा है तो उसमें अब कितना बाकी है, क्यों बाकी है, क्या कारण है कि क्या लगातार ये चल नहीं रहा है या इसे और अधिक तेजी से चलाने की जरूरत है अभियान को?
1: ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा है, इसमें कुछ फैक्टर वो काम करते हैं। देखिए, असाक्षर कौन होता है? हमारी जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे स्कूल आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो शाला त्यागी हो जाते हैं, अपने घर में खेत में काम करने की वजह से या परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता, वो जानवर चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गाय बैल, गाय भैंस चराने के लिए या अन्य कामों में वो यदि व्यस्त हो जाता है, इसलिए वो स्कूल से बाहर हो जाता है। बहुत हम प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देता है, और जो पढ़ा भी होता है तो जाके आगे जाके वो भूल जाता है, और वही व्यक्ति हमारे जो है असाक्षरों के टारगेट में आ जाता है, और वो भले ही पाँचवीं पढ़ा हो, आठवीं पढ़ा हो, लेकिन फिर से वो असाक्षर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले ये करना होगा कि हम एक तरह से, ऐसा है कि ये जो कमरा है इसमें यदि हम नल चालू कर दें और पानी आ रहा है लगातार, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम इस कमरे से पानी को खाली करने के लिए हम एक बर्तन से पानी निकालते जा रहे हैं और बाहर हम करते जा रहे हैं। हमको यदि इसको 100% बंद करना होगा। मेरी ये मान्यता है कि साक्षरता अभियान तो चलना ही नहीं चाहिए, इसका स्वरूप बदलना चाहिए, यानी हम पहले नल को बंद कर दें, फिर हम पूरे असाक्षरों को साक्षर कर दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग फिर से असाक्षर न बने, जो हमारे स्कूल में जो लोग एडमिशन ले लिए हैं। सबसे पहले तो 100% हम एडमिट लोगों को करें, और हम यदि उनको एडमिट कर लिए हैं तो ऐसा कोई कारण न हो, स्कूल का वातावरण हम ऐसा बनाएं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाएं रोचक तरीके से, कि वो लोग स्कूल से बाहर न जाएं, और किसी भी कारण से चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हम वो परिस्थितियां निर्मित न होने दें कि वो स्कूल से बाहर जाएं, उनको इस तरह से सपोर्ट किया जाए, तब हम 100% ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और 100% साक्षर कर सकते हैं।
0: प्रशांत जी, इसमें जन जागरूकता भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आमतौर पर ये होता है कि शासन की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि गांव के सारे ही सारे बच्चे स्कूल में आए, लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसे निर्मित होती हैं कि उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले जो हैं अपने बच्चों को पूरी तरह से स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं होते हैं, या फिर कई बार ड्रॉप करना पड़ता है उनको। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जन जागरूकता के आजकल बहुत सारे उपाय हैं, मीडिया तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता ही है, और इसके साथ साथ हमको ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जिनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यानी जो सेवाभावी व्यक्ति हैं, जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में। गलत नहीं है कि अपने फायदे के बारे में सोचें, लेकिन यदि आप देश के बारे में सोचेंगे, दूसरों के फायदे में के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपके आपके बारे में, आपके फायदे के बारे में सोचेगा। यह दृष्टिकोण यदि हमारे मन में हो जाए तो हमको टॉप टू बॉटम, मतलब उच्च शिखर से लेकर हमारे जो वार्ड तक के, घर तक के है, वहाँ पर हमको ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा, नंबर एक, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके साथ साथ जितने नेतृत्वकारी लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी देनी होगी कि आपको अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है, साक्षर करना है, 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% बच्चे बाहर बिल्कुल ना जा पाएं, यदि कोई बाहर जाता है उनके लिए उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षक न केवल शिक्षकों की व्यवस्था है बल्कि वो पूरी दक्षता से, पूरी क्षमता से उनको परिणाममूलक तरीके से पढ़ाएं, अध्ययन अध्यापन करें जिनका उनका मन लगे, और रिजल्ट भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है। और कोई भी यदि स्थितियां ऐसी निर्मित होती, कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानियों को दूर करें, और सामाजिक लोगों को भी आप विश्वास में लो, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो केवल अभी अन्य कार्यों में, यदि खाली दिमाग शैतान का होता है, उनको अच्छे कामों में यदि व्यस्त कर देंगे ना, तो आपको दुर्घटना भी नहीं होंगी और उनका भी मन लगेगा, जब वातावरण बनाए जाने की ज़रूरत है, और इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि अच्छी इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है अभी, जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, वो इसीलिए मिली है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई है, उन नीति का बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, ये बहुत जरूरी।
0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री प्रशांत कुमार पांडे, और इनसे हम विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। तो उससे पहले प्रशांत जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: वाह वाह वाह, फिल्म और ये सब तो नहीं।

0: बता पाऊंगा, लेकिन गाने के बोल जरूर
1: बिल्कुल बताएं।
0: जब कोई बात बिगड़ जाए,
1: बिल्कुल
0: जब फिल्म कोई मुश्किल, हाँ मुश्किल पड़ जाए,
1: हाँ, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

0: क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मुश्किल की घड़ी तब होती है जब इंसान के जीवन में अशिक्षा का अंधकार होता है, और आप उसी अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़े हैं। प्रशांत जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, मैंने

0: पहले महाविद्यालय में 1990 तक और उसके बाद 1990 से 2003 तक जिले में, 2003 से 2025 तक राज्य में काम किया। और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं गया तो मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो ये महसूस किया गया कि अब पूरे प्रदेश में कुछ नया किया जाए। और संभवतः जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और जो परिणाम मूलक कार्य करता हो यानी परिणाम दे सकता हो। उनको जब ये पता चला कि 25 जो साल हुए हैं और 25 साल में हमको 25 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, उसमें से हम जिस विभाग में कार्य किया है उसमें 2 और बाकी ज़िलों को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा ये दायित्व होगा। उनके पीछे उद्देश्य ये है, इस जो स्वायत्त शासी जो संस्थान है उसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो लागू है उसका कैसे बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कर सकें, इसमें हम माननीय जनप्रतिनिधियों को कैसे कन्विंस कर सकें, हम इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ सकें, हम इसमें जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मीडिया का कैसे हम समावेश इसमें कर सकें। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा गुणवत्ता पर इसमें फोकस किया गया है। शिक्षा गुणवत्ता भी यदि हम बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, और उसमें ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल हमें नौकरी तक पहुंचाती हो बल्कि ऐसी शिक्षा जो एक बेहतर इंसान बनाती हो। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से हमें जोड़ा जाना होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना कोई भी यदि शिक्षा दी जाए वह अधूरी है। उसको जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक के यह हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होंगी। नैतिकता की बातें तो छूटी गई हैं आजकल, और जो गंभीर उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करना होगा। तो शिक्षा गुणवत्ता मेन है। शिक्षा गुणवत्ता तभी हो सकती है जब बालक, पालक, शिक्षक ये तीनों मिलकर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में डाल देते हैं और उनको शिक्षक के भरोसे छोड़ सकते हैं, शिक्षक पालक के भरोसे रहते हैं, वो तो पढ़ के आएगी, वो किसी अन्य कार्य में बिजी रहते थे। ये देखना होगा कि वो शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रखा जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और घर में भी शिक्षा के लिए वातावरण हो, माता पिता हों, बाप भाई हों और जो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो घर पर भी उसको एक वातावरण हो, ये हम प्रयास करेंगे। और दूसरा उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, गुड पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट होगा इसमें कि कैसे पेरेंटिंग हो बचपन से लेकर उसको, और उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ा दबाव जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है और रिजल्ट में आपने देखा होगा हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि इतने परसेंट लाना, इतने परसेंट लाना। आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखिए देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंक पाए हों, गढ़ना ज़रूरी है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे, जब तक प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देंगे तब तक कक्षा का वातावरण नहीं बदल सकता।
1: प्रशांत जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, अगर हम आपकी इस जिम्मेदारी के साथ में हमारे प्रदेश में शासन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा की अभी जो व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उसको सुधार करने के लिए आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हम अपनी इकाई का गठन करेंगे। उसमें हमको ये स्वायत्तता दी गई है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा, कि हम इसमें शासकीय और अशासकीय दोनों लोगों को इसमें शामिल कर सकें। और इनको जब हम जोड़ लेंगे, एक हमारी कमेटी गठित हो जाएगी, तो फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जिसमें नगरीय निकाय भी, नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। फिर हम गांव-गांव में स्वयंसेवी व्यक्ति तैयार करेंगे। वो स्वयंसेवी व्यक्ति जो है वो न केवल बच्चों की शिक्षा से लेकर बड़ों की शिक्षा तक ध्यान देगा। यही न केवल ये प्रक्रिया हमारी स्कूली शिक्षा में होगी बल्कि यह प्रक्रिया हमारी उच्च शिक्षा के लिए भी रहेगी। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। पहले तो हमने केवल शिक्षा नीति के चैप्टर नंबर 21 जो प्रौढ़ शिक्षा थी उस पर काम किया था, और ये जो दायित्व है बहुत बड़ा दायित्व है, इसमें हमको बच्चों की शिक्षा से, बाल्यावस्था की शिक्षा से, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी और बालवाटिका आपने सुना होगा, वहाँ से उनकी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पर हमको काम करना होगा। और केंद्र और राज्य के सारे लोग, हम रिसर्च भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल को और स्टेट को देंगे, और उसके साथ सबके साथ समन्वय के साथ काम करेंगे।
1: हमने सुना है कि आपने विदेश की भी यात्राएं की हैं, विदेश की यात्राओं में क्या शिक्षा ही आपकी यात्रा का उद्देश्य रहा है, या विदेश की शिक्षा और भारत की शिक्षा को आपने नज़दीक से देखा है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा है?
0: निश्चित रूप से मुझे कई बार विदेश यात्रा अल्प समय के लिए जाने का मौका मिला, लेकिन मैं ज़्यादा समय के लिए जो मैं गया हूँ, वो लंबे समय के लिए बोलना चाहिए, वो मैं गया हूँ थाईलैंड और जापान। पहले एक स्टडी टूर में मैं थाईलैंड गया और उसके बाद मैं जापान गया। जापान में मैंने महसूस किया यूनेस्को और जाइका, मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन सोसाइटी, इसके सहयोग से हमारा वहाँ जाना हुआ था। एशियाई कंट्रीज़ के जो लोग हैं, 11 लोग 11 देश से चयन किए गए थे। हमारे यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई थी कि हर राज्यों से पहले तो नाम का चयन हुआ था, फिर अंत में पूरे देश से एक व्यक्ति का चयन हुआ, और संयोग से उस एक व्यक्ति में मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा कि शिक्षा ही वहाँ के विकास का मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा को वो लोग बहुत ज़्यादा, बेसिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ की शिक्षा में मुझे महसूस किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो उस देश में महसूस किया जापान में खासतौर पर, मुझे अनुशासन बहुत देखने को मिला। सबसे ज़्यादा वो अनुशासन पर ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया वहाँ पर मैंने को देखने को मिला। जैसे हम तो कोई डेलीगेशन कहीं पर जाता है तो हम लोग उनके लिए VIP व्यवस्था करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और वो आगे आने, उन लोगों ने भी हमारे शहर से दूर जाने के लिए स्पेशली, जैसे यहाँ पर स्पेशल प्लेन होते हैं, तो हम लोग जितने लोग थे उतने सीटर, 25 सीटर हमको एक प्लेन दी गई थी इधर वो जाने के लिए, हमारे लिए खड़ी रहती थी हमेशा, जैसे जो सुविधाएँ मिलती। लेकिन ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन में भी हम लोग को उन्होंने कराया। मेरे को बताने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ स्पेशल प्लेन या बुलेट ट्रेन और इसमें बैठा, बल्कि वो सब में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम आनंद लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्लास हमारी चलती थी, क्या सीख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं। और खाली वही नहीं, साइकिल भी चलवाते हैं हमको और पैदल भी चलवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उतरे ट्रेन से और बस तक के हमको कोई ऑटो रिक्शा या आएगा, वहाँ से पैदल चलना है आपको, यानी वो पैदल भी, जितना आपने खाना खाया है वो आपको पचाना भी, और हेल्थ के लिए जितने कदम चलना जरूरी है उतना कदम चलना है। तो अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जैसे हम लोग एक टेबल पर बैठे हैं, वहाँ गोल में अलग अलग टेबल पर, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल, हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं, टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग टेबल पर ग्रुप बैठते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, आपने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उस तरह के ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है, एक्टिविटी बेस्ड, आपको क्लासरूम लगेगा ही नहीं जब क्लास आप जाएंगे तो। और एक क्लास में एक टीचर नहीं होता, दो टीचर होता है, एक पढ़ाता है और एक ऑब्जर्व करता है। और जैसे स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पर एक दूसरा कमरा होता है, वहाँ पर उन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़े पीछे जा रहे हैं, कभी फिल्म पहले आई थी आपको याद होगा तारे जमीन, तो तारे जमीन पर में जिस तरह से टीचर ऑब्जर्व करता है, उस तरह से वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं। और वो टीचर ऑब्जर्व करने के बाद उनको अलग कमरे में रखा जाता है, और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, लर्निंग उनके मटेरियल होते हैं, वो वहाँ उनके लिए उस तरीके से रखे जाते हैं। और जब उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तब उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो जो देश जो कंट्री एक एक बच्चे के लिए ध्यान देता है, और जैसे हम स्टूडियो में अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रखते हैं, वैसा ही सिस्टम वहाँ स्कूलों में है कि वहाँ आप जाइए और जूते चप्पल सब बाहर रखने का सिस्टम है। शिक्षा एक मंदिर की तरह है, ये बड़ी बात हमने देखी वहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाने का तरीका और दिखाने का तरीका, अभी तक क्या होता है, आपको हम यदि पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये अस्पताल है, ये बैंक है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये दूरदर्शन है, या हम इस तरह से बताएंगे तो वहाँ का सिस्टम क्या है वो उनको वहाँ ले जाकर दिखाते हैं। वहाँ है, ये अंदर ले जाकर दिखाएंगे बच्चों को। यहाँ तो कभी कभी हम किसी किसी जगह दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ तो अनिवार्य है ये सब चीज़ें कि पोस्ट ऑफिस है,

0: ये बैंक है, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है ना, ये आकाशवाणी है, ये दूरदर्शन है, ये सारी चीज़ें ले जाके कंपलसरी दिखाने का, ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला और उसको हमने यहाँ पर आने के बाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया और उसका ही परिणाम है कि हमको जो अवार्ड मिला है, यदि छत्तीसगढ़ की द्वारा या वहाँ से हमको चयन नहीं होता तो ये उसके परिणाम भी हमने दिखाए, परिणाम भी हमने दिया कि कई लोग तो विदेश घूम के आ जाते हैं और स्टडी तक रह जाती है।
1: तो प्रशांत जी, आपने अवार्ड का जिक्र किया तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इसी क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके हिस्से में आए हैं।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो छत्तीसगढ़ के ज़िलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सभी ज़िले अलग अलग तरीके से परेशानियों में व्यस्त थे, उनके अकाउंट सब बंद थे और उनको एड मतलब वहाँ से अनुदान नहीं मिल रहा था, उसके बहुत सारे कारण थे। उन सब कारणों को हमने ठीक किया, ज़िलों में जा के दौरा किया, ज़िलों के जो कलेक्टर्स थे, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे सौजन्य भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनके TL की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए, अपने प्रोग्राम को हमने दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए। जब एक एक को जा जा के हमने सबसे बात की, पूरे उस समय जो 18 ज़िले थे जब शुरुआती दौर पर, तो उन सारे ज़िलों में जाके हमने बताया, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते गए तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर बहुत सारे, पहले सत्येंद्र मेहता साक्षरता पुरस्कार मिलता था, उससे हम लोगों ने शुरुआत की। जो भी हम करते गए नया चीज़, हम जो भी नया नवाचारी हम कार्यक्रम करते गए, जो हमने बाहर से जाके सीखा था, तो वो दूसरे राज्यों का पहले हमने दौरा किया, हम दूसरे राज्यों को देखा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, तो हमने लगा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने कलाकारों को जोड़ा, हमने यहाँ साहित्यकारों को जोड़ा, हमने यहाँ पर कुछ नवाचारी शिक्षकों को जोड़ा, इस तरह से हम लोगों को हम जोड़ते गए और हर जगह की साक्षरता की बात हम करते गए। तो एक सत्येंद्र मेहता अवार्ड उस समय मिला, फिर आगे जाके सतत शिक्षा में अवार्ड मिला, फिर साक्षर भारत पुरस्कार को बताना चाहूँगा। 2013 में हमें हमारा जो यहाँ स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसको केवल सेवाभावी बहुत कम लोग थे, सीमित संसाधन में हमने इस काम को शुरू किया था, तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, साक्षर भारत का पुरस्कार। और उसके बाद 2016 में भी हमें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और ऐसे ही ज़िलों को, ग्राम पंचायतों को मिलाकर कई ज़िलों को मैं यहाँ पर नाम लूँगा तो लंबी फहरिस्त है इसकी, तो 25 वर्ष में 25 से अधिक अवार्ड हमको अब तक राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दिए।
1: तो प्रशांत जी, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को इस स्तर पर इसका आकलन किया गया। तो प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि शिक्षा को लेकर आपका जो स्वप्न है और आपके जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को सफलता मिले और हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम भी भारत के नक्शे में एक पूर्ण साक्षर, पूर्ण शिक्षित और विकसित राज्यों की श्रेणी में दिखाई दें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नवा बिहान। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए योग से नशा मुक्ति विषय पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता का दूसरा भाग। भेंट करता है नेमी चंद साहू।
3: जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला, हमार नमस्कार। अच्छा खान पान, अच्छा दिनचर्या के साथ साथ शरीर ला स्वस्थ राखे में योग के बड़ महत्वपूर्ण भूमिका है। योग हा हमर वो प्राचीन विद्या है जेकर ले हमर ऋषि मुनि मन हा, हमर देशवासी मन हा योग के सहारा लेके स्वस्थ रहा है और मानसिक रूप से मजबूत रहा है।

0: मानसिक मजबूती और शारीरिक स्वास्थ्य ह परिवार और देश के विकास के आधार बनथे। योग के जीवन में महत्व के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर और छत्तीसगढ़ योग आयोग ह कौन महत्वपूर्ण काम करत हे जेकर ले डायबिटीज साइटिका और नशा मुक्त भारत के निर्माण करे जा सके, ये संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जिला। सिन्हा जी, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सिन्हा जी। बड़े बड़े प्रख्यात योगाचार्य मन ले आप मन हा योग के प्रशिक्षण प्राप्त करे हो। योग हा जीवन ला खुशहाली देते, जीवन बर नवा उम्मीद देते, शारीरिक को मानसिक रूप ले स्वस्थ करते। योग के जो आधार है वो प्राचीन काल ले चले आवा थे, तो योग में ऐसे का चीज है, ऐसे का विशेषता है, विशेष गुण है? बहुत अनुसंधान के बाद योग के पद्धति ह विकसित हो ही, तो अपन अनुभव ला आप बताओ कि ये ह कैसन ढंग ले बड़ वैज्ञानिक है कि हमन ला आसन ले समाधि की स्थिति में ले जाते।
1: बहुत सुंदर प्रश्न है आपके है। योग जो है अपन आप में पूर्ण विधा है, संपूर्ण समग्र विधा है। योग जो है वो मैंने एक तरह से वैज्ञानिक है, हर दृष्टि से वैज्ञानिक है। आज आप मन अनुभव करत हो देखत हो, हमर जब भारतवर्ष के सन्यासी जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसे अलग अलग है। स्वामी विवेकानंद जी राजयोगी रही से और राजयोग के अवलंबन करे तो एक पाठी रही से, एक बार पढ़े तो बड़े बड़े साहित्य ला वह आत्मसात कर ले, अपन अच्छा। जीवन में वो समझ जाए पूरा पुस्तक ला वो जो एक बार पढ़ते तो योग से ही संबंधित है। अभी स्वामी सत्यानंद जी के जो मोर गुरु जी है, मैं बताया वो हमारे जो गुरु भाई है निरंजन, योग निद्रा में वह और 26 भाषा के ज्ञान प्राप्त कर ली। अच्छा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का आप नाम सुने हो, वो परकाय प्रवेश के भी विधा, तो योग तो अक्षुण्ण है, वो कर मैंने वो आने पर्याप्त है अपन आप में ही। लेकिन अब साधक कितना साधना करते, वो साधक के ऊपर में है, साधना के ऊपर। जैसे वो प्रारंभिक चरण है, यम है, नियम है, आसन है, शरीर इसी स्थिति में रखना, तो बैलेंस रखना, संतुलन रखना, शरीर का भी संतुलन, मन ही तो है ना गड़बड़ कर देते, इतनी मन बिगड़ते तो फिर सारा है। तो आसन से, यम से, नियम से, प्रत्याहार है, ध्यान है, ध्यान है। जैसे ध्यान ए पाए के भी मैं कथों व्यवहारिक जगत में भी, जैसे बस्तर अंचल में या कहीं भी मूल छुट्टी नहीं मिली, सेना में भी ऐसे कई ठीक घटना आप सुन हो जानत हो, कारण का बहुत छोटे थे, मैं छुट्टी जाने वाला था या अपन आप में

0: केंद्रित करो शांति के साथ में और मन को शांत करो। तो ये योग में ही विधा है। योग जो है ध्यान एक माध्यम है
1: जी।
0: ध्यान जो है जब हम आदमी ध्यानस्थ हो जाता है तो ध्यान में बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद जी के मैं बार बार उल्लेख करता हूँ कि विश्व में वो कमाल करिस पहली जो है ना पूरा विश्व कायल हो गए स्वामी जी के पीछे। ओकर जो गुरु रही से वो साधक रही से रामकृष्ण परमहंस जी वो साधना करे रही से और वो पूरा शक्ति पात करे है। और राजयोग के माध्यम से ऐसे कई जन गुरु है हमार है संत ज्ञानेश्वर है सब मन है योग ला ही अपना करके अपन जीवन ला भी ठीक करे है और अपन जत भी जो सहचर है या शिष्य मंडली है बोला अपन विधा दे है। तो योग अपन आप में समाधि की जो बात बताओ लेकिन स्टेप सोपान है एक एक यम नियम आसन एकदम से समाधि में कोई आदमी नहीं पहुंचे तो समाधि में पहुंचे पर बोला साधना करना पड़ते है। जब साधक हाँ साधना करते तब बोला साध्य के प्राप्ति होते तब वोकर प्रसिद्धि बढ़ते।
1: जी जी
0: हमरो गुरु भी काम कर रहे योग आयोग काम करत है सरकार काम करत है स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत निष्ठापूर्वक स्वयं फिट रहते तो बहुत बड़े काम है योग।

0: सिन्हा जी, योग ले नशा मुक्ति, ये भी आप मन के एक ठो प्रयास है, तो ये दिशा में का का काम हुआ?
1: नशा जो है वो नाश के जड़ है। हाँ। नशा मुक्त भारत होना चाहिए, ये ठीक है, ये केवल बोले से नहीं है। हाँ। कुछ काम करने लगी, ग्रास रूट में काम करने लगी, नीचे नीचे गांव तक के हमला योगला ले जाए लगी। हाँ। और गांव गांव में ये बड़ा दुखद बात है, अच्छा नहीं लगे बोले में। हाँ। लेकिन ये बात ला बोलबो तभे ध्यान में आई कि हमारे छत्तीसगढ़ इतना सुंदर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ हा आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, सब में प्रेम स्नेह है। अब हमार मातृशक्ति भी कभी कभी खुशी है तो चलो बड़े मन पिया थे तो हमू पी ले थन शराब के, तो ये चिंतनीय विषय है। जे महतारी मन, दाई दीदी बहनी मन हा, और लड़का मन भी छोटे छोटे, और केवल शराब अल्कोहल ही नहीं, ऐसे ऐसे नशा है जैसे शिलोसन सुंघे के नशा भी चला थे, सूखा नशा चला थे, गांजा है, भांग है। अब अपन आपला एक तरह से अपन परेशानी आबादी तो हो गए हैं, तो शंकर भगवान के प्रसाद, ये गलत बात है। अने हमला सामाजिक कुरीति है यहाँ कि तर्पण दे लगे भगवान, भगवान कोई शराब अल्कोहल और गांजा हफीम चरस हीरोइन ये नहीं लेते हैं। हाँ। लेकिन अब आदि हो गए हैं, तो यदि नशा से उच्चाटन चाहिए तो हमार सोचला सकारात्मक दिशा में लगे लगे।
0: सिन्हा जी, आप अभी बताए हो कि योग में योग गुरु की बड़ भूमिका है, योग सिखाने वाले की बड़ भूमिका है, और छत्तीसगढ़ योग आयोग हा पूरे छत्तीसगढ़ में गुरु की भूमिका निभा थे, योग सिखाए के शिक्षा देवा थे। तो कोई सामान्य व्यक्ति हा योग के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए तो वो कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते?
1: विशेष करके जो आप बहुत अच्छा बातला पूछे हो, योग गुरु मन हा तो अपन अपन आश्रम में रथे, अपन अपन ठौर ठिकाना में रथे, और वहाँ जाथन तब संपर्क होते, तो वो उपलब्ध होते कि नहीं होते, यही बात ला ध्यान में रखना पड़ते कि वो मन गुरु जी कहीं ऐसे जो तज्ञ है। तो योग आयोग ऐसे PhD है, आजकल PhD भी होते, योग में पढ़ाई भी होते, सबके विषय बने, जन सामान्य के विषय बने। तो ऐसे हमारे यहाँ योग आयोग भी विश्वविद्यालय में, जैसे रावतपुरा सरकार है, बहुत सकन PhD हमार संगवारी मन हो गए है। हाँ। ओला हमन हाँ ट्रेनिंग जब होते हैं। हाँ। तब कथन कि नहीं चलो सरगुजा चलना है, बस्तर चलना है, दंतेवाड़ा चलना है, तब योग के जानकार हाँ बहुत हो गए, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी होते, योग आश्रम मन से भी हुआ थे, तो वो हाँ पूर्ण है ऐसे मोर मानना है। और वो जो और योगला पढ़ के सुन के नहीं, योगला कोई जानकार व्यक्ति के, चाहे वो गुरु के रूप में भी हो सकते हैं या PhD के तज्ञ है ओकर रूप में,

0: जानकार व्यक्ति से ही सीखना चाहिए। समान है, वार्म अप वगैरह है, जॉगिंग है, रनिंग है, चलना कसरत, तो ये तो समान है, लेकिन यदि हमला असाध्य रोग ला ठीक करना है तो जानकार आदमी ही दे सकते, जो जानते या अनुभव प्राप्त करे, कहने के भाई मैं ठीक हो गया, ये हाँ। किया तो ठीक हो गया। जैसे अभी घुटना के दर्द बहुत ज्यादा भी बढ़ा था, आप तो दो ही बात ला बताओ, स्टाप डायबिटीज और साइटिका, लेकिन ऐसे बहुत सारे रोग है जो ओला भी ओकर ऊपर भी अनुसंधान चला थे, खोज चला थे, तो वो सब दृष्टि से योगा योगा काम करत है। और हमारे ट्रेनर तैयार हुआ थे, अभी बीच में हम ट्रेनर भेजथन भी, यहाँ वहाँ जाना है, स्वयं हमारे राज्यपाल जी के यहाँ भी जाते और भी बहुत जगह जाते ओमन। हाँ,
1: और सर कोई आपसे संपर्क करना चाहिए आपके ऑफिस से तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: हमारा ऑफिस धर्मपुरा में है और हमारा पूरा स्टाफ है, और जम्मू स्टाफ के मनहा योगला ग्रास रूट में ले जाए के काम करते हैं, और बहुत अच्छा परिश्रम पूर्वक काम करते हैं, उत्साह पूर्वक हो गए। मैं स्वयं भी लगभग एक सवा साल में हो गए योग आयोग के अध्यक्ष बने के नाते, तो मोर प्रवास चलत रहते, पूरा प्रदेश में मैं काम करता हूँ। और पूरा संपर्क करना चाहिए तो धर्मपुरा में हमारे योग आयोग के कार्यालय है, ओकरे जो आप स्थापना के समय ओकर पूरा हुए तो पूरा हमारे स्टाफ है, वो मन सब काम करते, संपर्क कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकते, जान सकते, जानकारी ले सकते, यदि रुचि रही तो हमन फिर वहाँ ट्रेनिंग दे के भी व्यवस्था करबो, तो जैसे चाहिए वैसे हम पूरा सेवा देवर योग आयोग तैयार है।
1: सिन्हा जी, मोर गांव मोर तीर्थ के जिक्र आप करत रहे हो, ओकर संबंध में हमारे श्रोता मन लथो किन बताओ?
0: हिंदुस्तान के इसे मोर मानना है, हिंदुस्तान ला जानना है या समझना है जी, तो मेट्रोपोलिटन सिटी दिल्ली बम्बई कलकत्ता या बड़े महानगर से नहीं जान सकते। हिंदुस्तान के ताशीर है, हिंदुस्तान ये गांव के देश है, हिंदुस्तान किसान मन के देश है, तो हिंदुस्तान ला जानना समझना है तो गाँव जा लेना। बड़े आबादी जो है वो गाँव में बसती, तो मोर गांव मोर तीर्थ कैसे बनी? तो मोर गांव नशा से उन्मूलन हो गए है, चोरी बदमाशी नहीं होए, पुलिस केस नहीं होए, तो मोर गांव तीर्थ बने, प्रत्येक गांव तीर्थ बने, हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव तीर्थ बने, वो दिशा में योग आयोग भी काम करते हैं कि कोई भी केस हमारे गांव से थाना ना जाए, मोर गांव के समग्र विकास हो, खेती किसानी के दृष्टि से, स्वावलंबन के दृष्टि से, आत्मनिर्भर के दृष्टि से, ये अर्थ में मोर कहना है मोर गांव मोर तीर्थ बने। हम आप कहाँ जाबो, वृंदावन जगन्नाथ पुरी, तो हमारे गांव ले तीर्थ बनाबो, वही ले धाम बनाबो, इसे कल्पना।
1: सिन्हा जी, आखिरी में आप मन हमारे श्रोता मल्ला और हमार सुनैया श्रोता है तिमल्ला, संक्षेप में का संदेश देना चाहो?
0: बहुत मोर संदेश यही है, मैं तो काम में लगे हूँ, सरकार भी काम पर प्रेरणा देत रथे, तो मैं अपन आप में पूर्ण नहीं हूँ। एक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सके जब तक ओकर साथ में दहाई नहीं जुड़ी, सैकड़ा नहीं जुड़ी, तो आप मन सब मोर से यानी योग से जुड़ो, देश से जुड़ो, गांव से जुड़ो, राष्ट्र से जुड़ो, और अपन राष्ट्र ला मजबूत करो। एक नाते आप मन के पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण समय शक्ति जो भी भगवान ल दे है, और मैं आप मन लगते कि मोर अध्यक्ष बने काम करा थे, तो मोर बने काम में पूरा सहयोग करो, तो और बहुत बढ़िया मजबूती बनी, छत्तीसगढ़ में एक योग के वातावरण बनी। आप सब मोर बात ला बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, और भैया जी है तो मोर संदेश यही है कि आप मोला जैसे नेताजी की कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप योग के लिए समय दो, हम स्वस्थ छत्तीसगढ़।
1: बहुत सुघर सिन्हा जी, श्री रूप नारायण सिन्हा जी, आप मन हमार श्रोता मल्ला योग के संबंध में बड़ सुघर जानकारी दे हो, हमला समय दे हो, स्टूडियो में आए हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।

नवाभिहान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे योग से नशा मुक्ति विषय पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता का दूसरा भाग। भेंटकर्ता थे नेमी चंद साहू। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में क्रिश इस्म का ये गीत। गीत लिखा है नसीर ने और संगीत है राजेश रोशन का।

आपने सुना नासिर फराज का लिखा ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म क्रिश से, और अब सुनिए एक्शन रिप्लेस फिल्म का ये गीत। आवाज़ है श्रेया घोषाल की, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और लीजिए अब सुनिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस फिल्म का गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: दिल मांगे मोर, लीजिए सुनिए इस फिल्म का एक गीत जिसे गाया है उदित नारायण और श्रेय घोषाल ने, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पवन चंद्राकर। लीजिए इनकी आवाज़ में सुनिए ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पवन चंद्राकर के स्वर में ये भजन।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे पवन चंद्राकर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:55 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीन ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इनके खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इनमें एक जहाज करीब 19,965 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 16 मई को कांडला पहुंचने की संभावना है, जबकि दूसरा जहाज 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 18 मई को न्यू मैंगलोर पहुंच सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में भी आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुने पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहिर भैरव में आलाप और 2 रचनाएं, मध्यलय गत रूपक ताल में और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत की है अभिजीत बैनर्जी ने। तो लीजिए सुनिए पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहिर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहिर भैरव सुन रहे थे। तबले पर संगत की थी अभिजीत बैनर्जी ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। आइए अब सुने चित्रपट संगीत।

क्योंकि इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए कुणाल गांजावाला की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का। तो लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का ये पहला गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी

0: साझा करें तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए।

सुजैन डेमेलो की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं आवारापन। इस फिल्म का एक गीत जिसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत है प्रीतम का।

और मिथुन की आवाज़ों में अभी आपने सुना सईद कादरी का लिखा यह गीत। संगीत था मिथुन का और फिल्म का नाम था वो अजनबी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस वक्त चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। और लीजिए अब सुनिए केके की आवाज़ में सईद कादरी का लिखा गीत जिसे संगीत दिया प्रीतम ने और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत लीजिए सुनिए, सईद कादरी ने लिखा है इस गीत को और प्रीतम का संगीत है। फिल्म का नाम है जन्नत और आवाज है एक बार फिर से केके की। तो लीजिए सुनिए चित्र पर संगीत का ये आखिरी गीत जन्नत फिल्म से।

जन्नत, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना करके की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध हैं और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक, फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में गुजराती गीत। कलाकार हैं जिगीशा केराटिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायवाली केंद्रों से इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुराग धारा में गुजराती गीत। लीजिए सुनिए जिगीशा केराडिया की आवाज़ में ये गुजराती गीत।

कार्यक्रम अनुराग धारा में आज आप सुन रहे हैं गुजराती गीत। कलाकार हैं जिगीशा किराडिया। लीजिए इनकी आवाज़ में सुनिए ये गीत।

प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम अनुराग धारा अभी आप सुन रहे थे। इसमें आप सुन रहे थे जिगीशा किराडिया की आवाज़ में गुजराती गीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। आइए आप सुने सदाबहार नगमे। दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए उदित नारायण और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी साहब के हैं, संगीत है उत्तम सिंह का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

0: कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना समीर का लिखा एक गीत जिसे संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम था माफ़ कीजिएगा कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था आनंद बिलन का। अगला गीत सुनेंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जिमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर ते बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए बरसात, इस फिल्म का एक गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रवण का और गीत लिखा है समीर ने। तो लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का ये गीत।

0: कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना दिलवाने दुल्हन ले जाएंगे इस फिल्म का एक गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीत था जतिन ललित का। इसी गीत के साथ सदाबहार नग में ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित होने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ब्रीफिंग में भी बताया गया कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माई भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज लगभग 7 बजे सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं।

0: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
1: खातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं।
2: हम समुद्र तट पर जाते हैं।
1: ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
0: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी

0: करने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
7: ऐसा
8: झुक गया।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
5: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
6: Good morning. I am so pleased to meet a boy like you.
5: Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled.
6: "Ah, here is my good cousin,"
5: said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool.

उदित नारायण के स्वर में फ़ाइज़ अनवार का ये कलाम अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

उदित नारायण के स्वर में फाइज अनवार का ये कलाम अभी आपने सुना। अब सुनिए सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति। स्वर दे रहे हैं उदित नारायण।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे उदित नारायण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ए बी सी डी टू इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना प्रिया शर्मा और दिव्य कुमार के स्वर में। मयूरपुरी की शब्द रचना को सुरों से सजाया था सचिन जिकर ने। लीजिए अब सुनिए मोहित चौहान और नेहा भसीन के युगल स्वर में इरफान सिद्दीकी का लिखा गीत, संगीत सलीम सुलेमान का, फिल्म का नाम है फैशन।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म फोर्स का गीत, कार्तिक और बॉम्बे जयश्री के स्वर में। जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत हैरिस जयराज का है।

कार्तिक और बॉम्बे जयश्री के स्वर में जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आपने सुना। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय के स्वर में। इरशाद कामिल का लिखा गीत, प्रीतम का संगीत और फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर बजाया राग पंचम सवारी, ताल पंचम सवारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही रात 10 सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत।

शाम 5:10 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में आजकल का विषय होगा परिवार हमारी ताकत है। क्रम जश्ने आवाज में सुनिएगा शीला श्रीधर से ली गई भेंट वार्ता और आनंद लीजिएगा कव्वालियों का।

शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खेती माँ सौर ऊर्जा अपनावन लागत ला घटावन। हेलो चौपाल में फसलों में समेकित कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के लाभ, इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SM अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद, संचालन सतीश कुमार यदु का, प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

रात 8:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत। कलाकार होंगे पवन चंद्राकर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां शाम 6:30 पर। यादें फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर और चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर बजाया ताल पंचम सवारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही रात 10:00 सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर बजाया ताल पंचम सवारी। सारंगी पर लहरा दे रहे हैं सुल्तान खान, तानपुरे पर मदन बुंगाले।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर बजाया ताल पंचम सवारी, सारंगी पर लहरा दे रहे थे सुल्तान खान, तानपुरे पर मदन पोंगाले। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: अजनबी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत राहुल देवबर्मन का। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत की अगली प्रस्तुति है फिल्म कन्यादान से। स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने, गीत नीरज का, संगीत शंकर जयकिशन का है।

कन्यादान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब सुनिए चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से, आवाजें मुकेश और शारदा की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख

0: मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

बादल इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम के स्वर में। गीत समीर का था, संगीत अनु मलिक का। लीजिए अब सुनिए फिल्म एक रिश्ता का गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याज्ञिक की। गीत एक बार फिर समीर का, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है।
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: खामोशी द म्यूज़िकल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याकिक और हरिहरन के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को सुरों में ढाला था जतिन ललित ने।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म लकी का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और अदनान सामी की, गीत समीर का, संगीत अदनान सामी का है।

लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म ब्लैक मेल से आवाजें सोनू निगम और अलका याज्ञिक की, गीत एक बार फिर समीर का, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सिविल जल शोधन से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विती दसर्न से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a 6-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi has since met President Sheikh Mohammed bin Zayed, with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as brother, he praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates, and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict.
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: The National Testing Agency NTA has announced that the medical entrance exam NEET UG 2026 will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and the CBI is investigating the matter. The exam conducting agency also requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. He added that NEET UG examination will be conducted in computer-based test CBT mode from next year instead of existing OMR-based mode. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said the breadth of this engagement reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. He further said there is an urgent need to reform the international financial architecture. Earlier, Dr. S. Jaishankar met the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, in New Delhi today. In a social media post, Dr. Jaishankar said both leaders discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 100.21 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:11 और ठीक 2 सेकंड देविका हाजिर है लेकर मन भावन और ईमेल आईडी है मन भावन की fmgoldaiadelhi@gmail.com और मन भावन का आगाज उन सभी श्रोताओं के लिए जो ये कहते हैं कि भाई अपनी पसंद का गीत, तो मेरी पसंद और आपकी पसंद फिल्म है रंग बिरंगी।

मन भवन से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और मन भवन में पहली फरमाइश जो हम ले रहे हैं वो हमें भेजी है शेख मूसा मोहसिन सनावाद से और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म है कांच और हीरा और आवाज़ है रफ़ी साहब की।

0: प्रणाम, मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: मन भावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मन भावन की फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं विजय सुलकर की, रतन माला सुलकर की, कुमकुम सुलकर की। और ये महाराष्ट्र से भेजा है इन्होंने और गीत सुनना चाहते हैं ब्लफ मास्टर का, ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ मन भावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। हम तक पहुंचा है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मनद मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक जालंधर पंजाब से, हरजिंदर सिंह भाटिया हैं खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है कैनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आया, जोया, जैनब, मरियम, और कहती हैं शुक्रिया। और गीत की फरमाइश की है फिल्म चांदनी का ये गीत, लेकिन फिल्म चांदनी का एक और गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ और वो गीत भी बहुत खूबसूरत है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

3:32 ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, मन भावन, और ईमेल आईडी है मन भावन की fmgoldairdelhi@gmail.com, जहां आप हमें मेल कर सकते हैं। और फिलहाल बहुत सारे श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। जिला खुरगायन सनावाद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋषु, मुकेश और जगताप, और कैंप अमरावती महाराष्ट्र से वर्षा और हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार है साथ में। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज, जहां आजाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं, और उसके साथ हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी भाटिया, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद भागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ भागवान, और छतरी टोल बेगूसराय से अदीबा अफसारी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम, क्या बात है। और इसके साथ हम तक पहुंचा है अस्तुपुरा जिला से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, और किसु तासु अर्नव आनंद, सत्यमानंद, और इसी के साथ बोहड़ा गाजी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और साथ ही साथ मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। और इन्होंने बहुत सारी मेल हमें भेजी है और ये कहा है कि आज FM गोल्ड के बहुत ही पुराने श्रोता हैं, सुरेंद्र खुराना उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और अब्बासी परिवार ने इस गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, फिल्म है प्रोफेसर प्यारेलाल और गीत है ये।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप मन भावन, और मन भावन की अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं। ये हमें भेजी है पारसमनी रेडियो श्रोता क्लब से, और ये हमें बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार है, रामदेवरा से दिनेश चौहान है, डांगरी से बाबू राम जयपाल है, खलीफो से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना क्या बात है। तो आपकी फरमाइश है फिल्म ना छूटे संसार से ये बेहद खूबसूरत गीत।

सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत

3:46 और ठीक 55 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 MHz पर मन भावन और देविका है आपके साथ। और अगली फरमाइश जो मैं पूरी करने जा रही हूँ वो हमें भेजी है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरक्रीत, राहुल, गुरशब्द सिंह। राहुल क्या बात है। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, फिल्म आशा का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 3:53 और 40 सेकेंड। जी हाँ, मनभावन सुन रहे हैं आप और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्डी चैनल पर। और बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत प्यार करते हैं आकाशवाणी को, और क्योंकि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो एक श्रोता है हमारे जिन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिख के भेजी है। कहते हैं कि रेडियो के साथ उठता हूं, इसी के साथ सोता हूं। जब सुनता हूं नाम अपना तो बहुत खुश होता हूं। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपक होता हूं। मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ।

कुमार राहुल हैं, ये हमें हरियाणा से लिख के भेजते हैं और हम तक जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, लड्डू जहां, टुकटुक जहां और मक्काल जहां है। मसूरी रो रेडियो श्रोता क्लब जो है बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद, नईब पलक, लुबना और यश मंसूरी हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हैं। होली चौक अपना नगर से हम तक भेजा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनमर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हैं। और हम तक नरेश चिक, रेखा चिक, करण चिक, अल्पेश, सृष्टि यादव, सवि यादव, संगम विहार, हनुमान मंदिर से लिखते हैं। और आखिरी जो फरमाइश है जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग ने सहारनपुर से, और इस गीत की फरमाइश की है जी हाँ फिल्म बरसात की एक आद से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल संशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

रेडी साहब और सुरैया की आवाज में सुन रहे हैं आप बता दें कि थोड़ी सी देर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार और जानने के 30 मिनट भी होगा। 5 बजे होंगे।

0: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, आशुलिपिक समूह ग एवं घ के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित पद्धति में आशुलिपिक समूह ग एवं घ परीक्षा 2026 का आयोजन होगा। भर्ती के बारे में और भी अधिक जानकारी आप परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति पर देखें, जिसे आयोग की वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा के संदर्भ में यदि और कोई भी शुद्धि पत्र हो, परिशिष्ट हो या फिर महत्वपूर्ण सूचना होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस, रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस, रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की एक इकाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। पद का नाम है प्राचार्य और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 1 है, जो कि UR के लिए है। आवेदन प्रपत्र, आवश्यक योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं के लिए कृपया आप वेबसाइट www.vkm.ac.in को देखें। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं सहित प्रबंधक वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के पक्ष में आप भेज दें। विज्ञापन की तिथि 20 दिनों के भीतर वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी 221010 उत्तर प्रदेश पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित करें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का सुरक्षा निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाई द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या हैं उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदानों की गतिविधियों की भी हम आपको देंगे जानकारी, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नज़र। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: नमस्कार विशाल, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड विशाल शर्मा टुडे। वेल यस, विशाल वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल दैट इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। वेल एंड टुडे लेट मी स्टार्ट विद बाय एक्सटेंडिंग हार्टफेल्ट विशेस टू फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ to successfully overcome the challenges of daily life. And today it's International Day of Families. We'll discuss more about it in our Dateline India segment. So let's start with the headlines.
1: जी शगुन, प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
2: BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism.
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया।
2: बीजेपी एमएलए रथिंद्र बसु इलेक्टेड एज न्यू स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली।
1: और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।
2: So this is our segment Dateline India, and today, as we were telling you in the beginning, today it's International Day of Families. So well, loneliness, financial stress and emotional distance, they grow across modern homes. Nowadays it's pretty common. The International Day of Families 2026, therefore, it highlights why strong family bonds, they remain essential for child well-being, mental health and social stability in an increasingly unequal and uncertain world.
1: जी शगुन, और परिवार का जो महत्व हमारे जीवन में है उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। परिवार केवल खून के रिश्तों से बंधा हुआ एक समूह नहीं होता, बल्कि ये जीवन मूल्यों का पहला विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है जहां हम जीवन की वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं। और परिवार के भीतर ही व्यक्ति सबसे पहले प्रेम, त्याग, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सअस्तित्व सीखता है। सहस्तित्व की जो भावना आती है, को एग्जिस्टेंस की, सबके साथ रहने की जो भावना होती है, वो वहीं सीखता है परिवार में। और यदि परिवार हमारे स्वस्थ हैं तो समाज भी स्वस्थ होता है, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज शगुन देखा जाए तो आवश्यकता केवल परिवारों को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें मूल्यों पर आधारित और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने की है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है, और युवाओं के सामने रोजगार को लेकर की भी कई चुनौतियां होती हैं, तो परिवार और खासतौर पर संयुक्त परिवार की आवश्यकता बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। संयुक्त परिवार केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं होते, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं, और इसमें संसाधन जो है साझा किए जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और किसी भी संकट का सामना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। और जो बड़े शहरों में, महानगरों में जो है अकेलेपन की जो समस्या है, उससे जो अवसाद की समस्याएं पैदा होती हैं, वो संयुक्त परिवारों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप याद करिए पुराना समय जब परिवार संयुक्त रहा करते थे, सारे जो प्रत्येक व्यक्ति के जो कष्ट होते थे, समस्याएं होती थी, सब उसको मिल बांट करके पता भी नहीं चलता था किस तरीके से जीवन निकल जाता
2: था। Problems and issues they used to solve it by talking actually. in conversations. So let's dive into the history of the day as well. Now we have established the whole theme here. During the 1980s, actually, the United Nations began focusing their attention on issues related to families. So this started in 1980s. Then in 1993, the General Assembly decided in the resolution that 15th of May every year should be observed as the International Day of Families. So this happened in the year 1993. So this day provides an opportunity to promote awareness of issues which is related to families and also to increase the knowledge of social, economic and demographic processes affecting families. Families must become the first place where a child learns tolerance and compassion. Right, family members, they teach them. It should be a space where children are taught that life is not a competition. You were also talking about coexistence. A place where elders are not treated as burdens but as invaluable treasures of experience which they share with us. A place where women receive dignity, the children, they receive values, and youth receive trust and confidence. Much of the growing, Vishal, much of the growing violence in today's world, it stems from the weakening of dialogue and sensitivity within the families. Children are speaking to mobile phones, but not to their parents. Families may be living together physically, yet emotionally they are falling apart. Climate change, wars, economic instability, so many issues, they have made the entire world insecure. Whether it is the Russia-Ukraine war, the conflicts in West Asia, the greatest impact of these crises falls upon families. So millions are displaced. Children, they become orphans, and women face insecurity and exploitation.
1: जी, और इस साल का जो परिवार विश्व परिवार दिवस का जो आयोजन का विषय है वो है परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण. ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं. ये असमानताओं को कम करने और बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायता के लिए एकीकृत और परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक ध्यान देने का आह्वान करता है. सामाजिक और आर्थिक प्रगति में परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और फिर भी कई परिवारों को आय की अनिश्चितता, देखभाल संबंधी सीमित सहायता और जरूरी सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पर्याप्त सहायता न मिलने पर छोटे बच्चे वाले परिवारों में गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और समग्र कल्याण पर बहुत लंबे समय तक असर देखने को मिलता है. आय में जो स्थिरता होती है और देखभाल संबंधी सीमित सहायता और बच्चों के विकास में जो बाधा आती है, वो इन सभी समस्याओं के साथ साथ जो है दिव्यांगता पर आधारित असमानताएं भी इसमें जुड़ जाती हैं.
2: Well, the relationship between family stability and economic inequality, it is characterized by a bi-directional cycle where financial stress undermines domestic security, while stable families, if we talk about stable families, they serve as a critical buffer against economic hardship. So on the International Day of Families 2026, experts, they have highlighted that growing global inequality and inflation, they are directly contributing to emotional instability, emotional exhaustion actually, within the modern homes. And amid these global crises, the family, they play an important part. Families remain the one institution that gives broken human beings the courage to live again with happiness.
1: जो आपने इन्फ्लेशन की बात करी और ग्लोबल इनएक्वलिटी की बात करी, तो इस ये जो आर्थिक दबाव है ना, इसके कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब देखने को मिल रही हैं. और इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो भारतीय माता पिताओं में अवसाद का खतरा 12% तक बढ़ जाता है जब उनके वयस्क बच्चे बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं. और इसके अलावा बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने भी एक सैंडविच जनरेशन ले ऑफ की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जहां करियर के मध्य में नौकरी छूटने से भूमिकाओं में उलटफेर हो जाता है और परिवार के भरण पोषण का जो बोझ है वो छोटे बच्चों पर आ जाता है.
2: वेल ट्रू. सो इफ वी फोकस ऑन आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, इट इज ऑल देयर हैज ऑलवेज बीन फैमिली सिस्टम. इट हैज बीन बेस्ड ऑन फैमिली सिस्टम. इन इंडिया द फैमिली इज नॉट, इट हैज नेवर बीन मियरली अ सोशल अरेंजमेंट बट अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. And the epics, let me highlight the epics, Ramayana, Mahabharata, they are not merely tales of war, they are profound narratives of family values, relationships, duties. And let me highlight how the Indian philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family, It offers a vision that can eliminate war, violence, terrorism and hatred if truly it is practiced. And unfortunately, well, the consumerist culture has now entered families as well. Relationships are increasingly measured on the scale of profit and loss. Too bad. And tolerance is decreasing. While expectations, they are rising. So relationships breaking over trivial issues, they indicate that while we have increased comforts, we have lost sensitivity. Each person is going through some kind of struggle in between. So the true strength of a family lies not in wealth, but in trust. So where trust survives, even scarcity turns into celebration.
1: आपने टॉलरेंस की बात की जो लगातार कम होती जा रही है और ये हमारी सहन शक्ति जो कम होती जा रही है ना शगुन, उसी के चलते हम अब किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं. हमें अपने आराम चाहिए, अपनी आदतें, हम अपना जो भी हम देखना चाहते हैं वो करना चाहते हैं. कोई भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उपस्थित हो जाता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है आकर के, तो लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. तो ये हाँ, तो दूसरे की उपस्थिति जो है, परिवार के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति भी अब जो है सहन नहीं होती है लोगों को. ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है. जो इन सब चीजों की जो आपने बात की, इन दबावों के बावजूद परिवार ही है जो बच्चों की भलाई और भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक एक एक एक सहारा बनता है, एक बड़ा सहारा बनता है और उन्हें सुरक्षा भी देता है. कई घरों में आप अगर हम अपने दादियों की या नानियों की बात याद करें तो महिलाएं जो हैं पहले के समय में सावधानी से बजट बनाती थीं और छोटी छोटी बचत करके, जिसका किसी को पता भी नहीं होता था परिवार में, और अचानक आने वाली जो बड़ी आर्थिक परेशानियां जब आती थीं उस समय वो संकट मोचन का काम करती थी उनकी वो बचत, और परिवार को महिलाएं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थीं.
2: Well, how great is that? And you know, we are also talking from around 10 minutes and it's such great fun to have these kind of conversations. And I think we should urge our listeners also to have conversations like this. Whatever happens in your daily life, we should encourage them also, you know, to talk to their family members. It's so cool and it's wonderful. And as these global disparities, they widen, this year's observance will spotlight gaps in income, in education, healthcare, digital access and essential services that shape children's life chances. It will emphasize the need for integrated social protection systems. This includes child benefits, parental leave, affordable childcare and early education, and this will thereby strengthen family resilience, reduce poverty and promote equal opportunities.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं कि आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट्स हैं.
2: सो विशाल, विल फर्स्ट हेड टू गोवा. सो द गोवा गवर्नमेंट हैज रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू सपोर्टिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द स्वयंपूर्ण गोवा मिशन एंड स्टार्टअप सपोर्ट स्कीम्स. Chief Minister Pramod Sawant said women in Goa are increasingly stepping into entrepreneurship and self-employment. Let's find out more details from our correspondent.
3: Women in Goa are taking the lead in starting businesses. Chief Minister Pramod Sawant said that one third of the beneficiaries under these schemes are women entrepreneurs. The Chief Minister said there is a common misconception that startups are only meant for IT sector. He clarified that women can also benefit from the startup scheme and successfully start businesses in many other fields. He was speaking during the expanded launch of the Women Entrepreneurship Program held at Lok Bhavan in collaboration with Niti Aayog and Rural Development Department. Dr. Sawant said the Goa government is providing several incentives to help women become financially independent and support them in marketing the products they create. He urged women across the state to make use of these schemes to expand and strengthen their enterprises. Under the Women Startup Initiatives, women entrepreneurs can avail loans up to 10 lakh rupees to start businesses. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: और अब बात करेंगे विदर्भ की. विदर्भ में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत पूर्ति संचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के रजत जयंती समारोह के अवसर पर नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और इस विषय में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता.
4: नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को जल संपन्न बनाने पर बड़े पैमाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि फार्म तालाबों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग अकोला, वाशिम और बुलडाणा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया गया है, जिससे पश्चिम विदर्भ में भू जल स्तर बढ़ा है।
5: हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खुलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहां किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहां तालाब बनाना। इसके दो बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3500-4000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी आया और वहाँ अच्छी क्रांति। दूसरा एक बुलडाणा पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की, ये बुलडाणा से अजंता तक रोड था, हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खुलीकरण किया और ये मिट्टी पूरी रोड में, और इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई।
4: ऐसे कई प्रयासों पर नितिन गडकरी ने चर्चा की। देश भर से प्रमुख जल विशेषज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां इन आयोजनों में भाग लेने वाली है। सम्मेलन का विशेष आकर्षण पानी फाउंडेशन के संस्थापक और प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान, नाम फाउंडेशन के अध्यक्ष नाना पाटेकर और सचिव मकरंद अनासपुरे की उपस्थिति होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: So this next report, even I'm very excited to know about it, Niang Taser 2026. This is a two-day festival celebrating the mass emergence of the World Cup cicada. This is also known as World Cup insect. This was held on May 8th and 9th in Meghalaya's Riboi district. So this festival is actually a celebration of the Niang Taser, popularly called, I told you, World Cup insect, that appears in the same year. When the FIFA World Cup is held, the locals refer to it as the Niang World Cup. Let's find out more details in this report.
6: The residents of Saiden village in Meghalaya's Riboi district recently celebrated the Niang Taser festival, one that is quite unique because it is centered around a mysterious insect that appears only once every 4 years. Locally known as the World Cup insect, the appearance of Niang Taser is often linked with the FIFA World Cup season. The two-day festival was organized by the Riboi District Tourism and Environmental Development Forum in collaboration with the headmen of Saiden village. Meghalaya Community and Rural Development Minister Shri Sosthenes Sothun inaugurated the festival and said that the unique festival highlights the richness of Riboi. The event featured traditional sports, cultural performances, folk songs from different localities, traditional dance competitions, fishing competitions, a fashion show and football-themed activities. The insect has become a cultural symbol in several villages of Riboi district. People associate its arrival with celebration, football fever and traditional gatherings. Families gather through the night to collect the insects, which are also considered a local delicacy. Organizers and village elders believe that the festival is helping showcase Meghalaya's rich biodiversity and indigenous culture to visitors from outside the state. The Niang Taser festival blends folklore and community celebration, and it continues to remain one of Meghalaya's most rare cultural traditions. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
1: मणिपुर को उसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक समृद्धि के लिए जाना जाता है, और रिंग फेस्टिवल 2026 के लिए की मेज़बानी के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है मणिपुर राज्य। ये एक अनूठा मंच है जो वहाँ की मूल कला, संस्कृति और पहचान का उत्सव मनाता है। ये महोत्सव कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों को एक साथ लाता है, जो इस क्षेत्र की विविध परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देता है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे इम्फाल संवाददाता।
7: The five-day Ring 2026 festival, scheduled to take place from 21st to 25th May 2026, with preparations already in progress for its grand event at Mapal Kangjibung and Kumbh Lampak in Imphal. Ring 2026 aims to elevate the indigenous games inherited from the forefathers of the land to the international stage. More than just a sporting event, Ring represents a broader culture and movement dedicated to preserving identity, strengthening community ties, and inspiring inspiring the youth through engagement with tradition and heritage. The festival will showcase a wide range of indigenous games from different communities, including Thang Ta, Mukna, Yubi Lakpi, Mukna Kangjai, Sagol Kangjai, Arambai Hunba, Kang, Thauri Chingbi, Naga Wrestling, and Porcupine Foraging Games of the Tarau tribe. A call has also been made to scholars, youth organizations, and athletes involved in traditional games to unite under one platform and motivate the younger generation to revive

0: आज ही के दिन जन्म हुआ था महेंद्रनाथ मुल्ला का। कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला। और 1926 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान INS खोखरी के कप्तान थे ये। और युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, तब इन्होंने अपने साथियों की जान बचाने को सबसे पहले महत्व दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए। उनका ये साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय नौसेना के इतिहास में अद्भुत उदाहरण माना जाता है। देश के प्रति उनकी वीरता और सेवा को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: वेल, टुडे इट्स आल्सो माधुरी दीक्षित नेने'स बर्थडे। So she has appeared in over 70 Hindi films, attaining nationwide stardom that influenced Indian popular culture.
2: जी, आज बॉलीवुड की धक धक गर्ल का जन्मदिन है। और माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अभूत से अपने फिल्मी जीवन की करियर की शुरुआत की थी। और अभिनेत्री के रूप में देखा जाए, जिस फिल्म से इनको पहचान मिली वो थी फिल्म तेजाब।
1: एग्जैक्टली,
2: और तेजाब फिल्म से ही इनको पहली सफलता मिली और इसके बाद ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। और माधुरी दीक्षित ने अगर फिल्मों की बात करें तो बहुत लंबी सूची है, फिल्मों की लिस्ट है। दयावान, रामलखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन जैसी सफल फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। और इनकी मुस्कान और चेहरे के भाव और इनका जो नृत्य जो था वो दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता था।
1: सो यू टॉक्ड अबाउट हम आपके हैं कौन, वी आल्सो हैव अ डायलॉग फ्रॉम द मूवी, लेट्स लिसन इन।
2: जी जरूर।
3: समझ गई।
4: क्या?
3: खड़े होइए।
4: जी
3: खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं।
4: जी
3: जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने।
4: नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं।
1: सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन।
2: जी, और हर किरदार में माधुरी ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी है।
1: So her accolades, they also include 6 Filmfare Awards and in 2008, well, she was awarded with Padma Shri, right?
2: जी, तो उनकी फिल्म का एक गीत जरूर सुना जाए।
1: जी।

0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है, आपसे हमें अनुमति लेनी होगी यहीं पर, तो इजाजत दीजिए विशाल और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। और आप इस कार्यक्रम को अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: सो विद दैट, थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बरडांड, कंडराजा, चोरकी, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट,

0: तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मुहकोट, बहीगांव, लिखमा, जोगी बिरदो, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। 9:30 पर सुनिएगा करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा परिवार हमारी ताकत है। साथ ही सुनिएगा जश्न ए आवास में शीला श्रीधर से भेंट और सुनिएगा कव्वालियाँ। 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियाँ। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा खेती माँ सौर ऊर्जा अपनावन लागत ला घटावन विषय पर आज की बात में चर्चा। साथ ही सुनिएगा हेलो चौपाल, विषय होगा फसलों में सामयिकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SM अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे पवन चंद्राकर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कल रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती सुनेगा कल रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कल रात 10:00 सुनेगा पंडित कैवल्य कुमार गुरव से ख्याल गायन। ये तीनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे रमाशंकर। कल सुबह 9:00 सुनिएगा बातों बातों में। प्रस्तुतकर्ता होंगे विकल्प रंजन शुक्ला। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगी अमचिरी बाई और साथी। इसी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर कलाकार होंगे जवाहर बघेल और साथी। इसी के साथ

0: रिश्तों से ही घर की रौनक, रिश्तों से ही पहचान है। अपने साथ हो तो हर मुश्किल भी आसान है।
1: जो हर सुख दुख में साथ निभाए उम्र भर, वही परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत और सम्मान है।
0: इन पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं सिलसिला बातों का। हाजिर हैं आपके अपने रेडियो दोस्त मलिका सुभाषीश
1: और पलक तिवारी
0: आपके अपने कार्यक्रम युववाणी के साथ। स्वीकारे हमारा प्यार से सराबोर नमस्कार। अच्छा पलक, कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब लोग कहीं बाहर चले जाएं और पूरा घर अचानक बहुत शांत सा लगने लगे?
1: हाँ, और तब एहसास होता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर अपनों से बनता है।
0: दोस्तों, इंसान के संपूर्ण विकास के लिए समाज की आवश्यकता हुई और समाज की पहली इकाई के रूप में परिवार का जन्म हुआ, क्योंकि बिना परिवार के समाज की कल्पना तब भी असंभव थी और आज भी है।
1: परिवार वो स्थान है जहाँ इंसान को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, जहाँ हर रिश्ता हमें संभालता है और हर सदस्य हमारे जीवन को सरल बनाता है। मल्लिका, तुमने परिवार से दूर रहकर काम किया है ना?
0: हाँ, और सच बताऊँ पलक, उस समय मैंने सबसे अधिक अगर किसी चीज़ को महसूस किया तो वो था परिवार का साथ। शुरुआत में लगा कि अकेले रहना आसान होगा, अपनी दिनचर्या, अपनी सुविधाएं, सब कुछ अपने अनुसार। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि अकेले कमरा तो मिल जाता है, पर घर जैसा सुकून नहीं मिलता। जब बीमार पड़ती थी तो सबसे अधिक माँ की याद आती थी कि वो आकर बार बार पूछे, दवाई ली ना, कुछ खाना है तुम्हें? उस ममता की जगह कोई और ले ही नहीं सकता।
1: सच, माँ केवल इंसान नहीं होती, पूरा संसार होती है।
0: और मेरा भाई, जिससे रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, उसी के साथ वो नोकझोंक सबसे ज्यादा याद आने लगी।
1: हाँ, घर में रहते हुए लगता है कितना परेशान करता है, लेकिन दूर जाने पर वही आवाजें सबसे प्यारी याद बन जाती है।
0: और मेरे पापा, पापा का होना एक अलग ताकत देता है दोस्तों। भले वे बोलते कम हो, लेकिन उनका साथ हमेशा ये विश्वास दिलाता है कि कुछ भी हो जाए, मैं हूँ ना। और पलक, एक और सदस्य था जिसे मैंने सबसे ज्यादा याद किया।
1: अच्छा, कौन?
0: चिंटू, हमारा डॉग। वो तो जैसे मेरे दिल का टुकड़ा है।
1: अरे वाह, मतलब उसका भी परिवार में विशेष स्थान था।
0: बिल्कुल, उसके बिना रहना शायद सबसे कठिन था। घर पहुंचते ही उसका दौड़कर आना, बिना कुछ कहे मन की स्थिति समझ जाना और बस पास बैठ जाना, बहुत याद आता था।
1: सच में कई बार हमारे ये बेजुबान जीव भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जो बिना शब्दों के प्रेम जताना जानते हैं।
0: और इन सब चीज़ों से मुझे ये समझ आया दोस्तों कि परिवार में हर सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई जिम्मेदारी, कोई अनुशासन और कोई धैर्य रखना।
1: बिल्कुल, माँ हमें ममता सिखाती है, पापा हिम्मत और संघर्ष, भाई बहन बांटना और साथ निभाना, दादा दादी संस्कार और अनुभव, और कभी कभी एक छोटा सा पालतू जीव भी हमें निस्वार्थ प्रेम सिखा जाता है।
0: यानी परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं, ये वो स्थान है जहाँ हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है, जहाँ हम इंसान बनना सीखते हैं।
1: लेकिन आज धीरे धीरे लोग रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, समय कम हो रहा है और दूरियां बढ़ती जा रही है।
0: ऐसे में आवश्यक है दोस्तों कि हम अपने परिवार को ज्यादा समय दें, उनकी बातें सुनें, अपनी बात उनसे कहें, उनके साथ बैठें, क्योंकि जीवन की असली खुशी वहीं मिलती है। वो घर सबसे समृद्ध होता है जहाँ रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन होता है।
1: आज परिवार दिवस पर आइए अपने परिवार को समय और सम्मान देने का संकल्प लें,
0: क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है दोस्तों, लेकिन

परिवार जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। परिवार ही हमें प्यार, संस्कार और हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। जिस घर में अपनों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद होता है, वही घर खुशियों से आबाद होता है। साथ बना रहे यूं ही हर रिश्ते का, क्योंकि परिवार से ही जीवन खास होता है।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के इस विशेष अवसर पर आप सभी का स्वागत है क्रम जश्न आवाज में। आज हमारे साथ है डॉक्टर शीला श्रीधर, जो गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल विभाग की प्राध्यापक है और 80 के दशक में युववाणी की कंपेयर भी रह चुकी है। उनसे बातचीत कर रही है हमारी कंपेयर साथी मल्लिका शुभाशीष। तो आइए यादों, अनुभव और आकाशवाणी के स्वर्णिम सफर से जुड़ी खास बातों का सिलसिला शुरू करते

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जश्न आवाज। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये उन आवाजों का उत्सव है जिन्होंने समय को शब्द दिए और शब्दों को एहसास। आज हम मना रहे हैं 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा का जश्न, जिसे हम सब जानते हैं आकाशवाणी के नाम से। एक ऐसा मंच जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, संस्कृति को संजोया और हर दिल तक अपनी सच्ची सशक्त आवाज पहुंचाई। दोस्तों, आज का ये सत्र मेरे लिए और भी खास है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसी मंच से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने युववाणी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम से एक सूत्रधार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और आज वही आवाज समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल बन चुकी है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शीला श्रीधर की। मैम, इस विशेष अवसर पर आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, इतने वर्षों बाद जब आप फिर से इस स्टूडियो में आई तो मन में सबसे पहली भावना क्या उभरी?
1: आकाशवाणी में अंदर आते ही मुझे ऐसा लगा, सब दीवारें और आसपास देख के ऐसा लगा, सब कुछ कह रही हैं कि जैसे मैं अपने घर वापस आ गई, मैं जैसे मायके आ गई, बस यही फीलिंग है।
0: क्या बात है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफर की शुरुआत, युववाणी की शुरुआत किस समय से हुई?
1: देखिए, मैं 1982 में MA कर रही थी भूगोल में, और मेरा नाम था शीला शर्मा। सो उस समय आकाशवाणी की युवाणी टीम, वहाँ नए नए एडमिशन्स हुए थे यूनिवर्सिटी में, तो कुछ किसी विशेष चर्चा पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई प्रासंगिक विषय था उस समय, तो उस पे चर्चा करने कमल शर्मा और उनकी पूरी टीम
0: जी,
1: ओबी वैन लेके वो लोग आए थे उधर
0: यूनिवर्सिटी
1: में आए थे। तो वहाँ बहुत लोगों से कुछ कुछ पूछा, पर पता नहीं मुझसे भी कुछ कुछ पूछा गया।
0: हाँ।
1: तो मैंने उसका बेबाकी से उत्तर दिया। उस समय मैं बिलासपुर से पढ़ के यहाँ आई थी
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि आप हमसे आके आकाशवाणी में मिलिए। तो बस फिर क्या था कि मैं दूसरे ही दिन पहुंच गई आकाशवाणी।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और दूसरे ही दिन पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि आप स्वर परीक्षण के लिए आवेदन दीजिए, आपका उच्चारण अच्छा है,

0: और आप दक्षिण भारतीय हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं दक्षिण भारतीय हूँ, पर मैं मेरी आवाज़ से मेरी मतलब प्रोनंसिएशन से आपको कहीं पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप इसमें स्वर परीक्षण दीजिए, ऐसा करिए। तो मैंने कहा ठीक है। पर इसके पहले ही उन्होंने मुझे कार्यक्रम दिया कि कुलपति से मुलाकात।
1: अच्छा
0: जी। वो भी युवाणी के अंदर ही था
1: जी।
0: तब मैं कॉम्पियर नहीं थी
1: जी।
0: कॉम्पियर नहीं बनी थी, पर मुझे उन्होंने बोला कि आप अपने ही यूनिवर्सिटी के कुलपति से एक मुलाकात का कार्यक्रम दीजिए। तो मैं उस समय अपने कुलपति महोदय के साथ मैंने ये कार्यक्रम किया, और जिससे मेरी आकाशवाणी स्टूडियो में वो भी आए थे और मैं भी, मेरा भी पहला कार्यक्रम था। कुछ त्रुटियाँ भी थी, पर उस पहले प्रयास में मुझे आकाशवाणी के जो मेंटर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने मुझे इतनी मदद की, इतने मेरे उत्साहवर्धन किया कि मैं फिर स्वर परीक्षण में फिर पास हो गई। और मुझे याद है कि हमारा इनसेट सैटेलाइट तब लॉन्च हुआ था
1: जी।
0: तो उस समय कहा गया था, कुछ पूछा गया था इनसेट से संबंधित, तो मैंने पूरे के पूरा, मैं एक भूगोल की विद्यार्थी हूँ और अंतरिक्ष और संबंध में मेरा मुझे रुचि थी, तो मैंने इसरो के संबंध में बहुत सारी जानकारी लिखी। तो बस मतलब मुझे ये बाद में पता चला बहुत दिनों बाद कि मेरा रिटर्न में भी बहुत अच्छा नंबर था और मुझे स्वर परीक्षण के लिए बुलाया गया, और फिर मैं युवाणी में कॉम्पियर बन गई। और उस समय हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे सतीश सक्सेना जी, और उन्होंने तो हम लोगों को बहुत उत्साहवर्धन किया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सदैव प्रेरित किया। और हमारे साथी थे कमल शर्मा, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
1: तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी मैम कि आप भी मानते हैं आकाशवाणी ने आपको सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सोच समझकर बोलना भी सिखाया है?
0: बिल्कुल 100% सही है। आकाशवाणी ने सोचने समझने की शक्ति दी, किसी चीज को कैसे बोला जाए, कब चुप रहा जाए, कब बोला जाए, और कब किसी चीज को सुनकर आत्मसात किया जाए। बहुत सी बातें जीवन की, मतलब मेरा तो पहला ही काम था ये, और जिसको मैं काम से ज्यादा, मतलब मुझे इतना रुचिकर लगता था ये काम करना, इतना इंटरेस्ट रहता था कि मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में। सबसे पहली बात है कि समय की महत्ता,
1: बिल्कुल
0: अनुशासन,
1: बिल्कुल,
0: और टाइम पे एकदम पंक्चुअल प्रोग्राम देना है तो हमको मालूम है कि कैसे हम उस प्रोग्राम को करते थे,
1: कि यहाँ हर सेकंड की कीमत,
0: हर एक एक सेकंड की कीमत है। तो वो चीजें जो मैंने सीखी वो मैं और कहीं, मतलब इससे मेरी नींव पड़ी हर काम को करने की।
1: इसी से संबंधित इसी के लिए वापस ये प्रश्न है कि रेडियो के दिनों ने आपको आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को किस तरह से आकार दिया?
0: मेरे व्यक्तित्व को जो आकार दिया उसको तो मैं शब्दों में क्या बोलूं, मेरा पूरा पर्सनालिटी ही, लोग मुझे हर कोई कहते हैं कि क्या आप वही शीला शर्मा है जो आकाशवाणी में थी
1: जी।
0: तो मेरी पहचान ही आकाशवाणी से थी,
1: बिल्कुल,
0: और आकाशवाणी के कारण मैंने प्रेस में भी मैंने लिखा था, मैं दूरदर्शन रायपुर में प्रोडक्शन असिस्टेंट का भी मैंने वो जो एग्जाम हुआ था वो पास किया था
1: जी।
0: तो आकाशवाणी ही वो नींव का पत्थर है जो मेरे व्यक्तित्व को, आज मैं गर्ल्स कॉलेज में, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महिला महाविद्यालय है, उसमें मैं वरिष्ठतम प्रोफेसर हूँ, और समाज में मेरी एक पहचान है, मेरी एक पहुंच है। तो उस सब चीज को मेरे व्यक्तित्व को बनाने में जितना आकाशवाणी का योगदान है वो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना योगदान है।
1: आपको ऐसा लगता है कि लोगों की भावनाओं को समझने और उन्हें महसूस करने के लिए जो एक अलग दृष्टि चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें रेडियो में या ऐसे कंपेयर के रूप में सीखने और समझने मिलती है?
0: हाँ बिल्कुल मिलती है, क्योंकि देखिए अगर आप हमारे समय, मुझे अभी का तो नहीं पता, पर पहले हम जब आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून बजने के बाद, नमस्कार करने के बाद 5 मिनट का जो समय रहता था, तो वो हम आज की बात या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। तो वो जो समय था वो 5 मिनट के समय में मैंने बहुत कुछ सीखा, किससे कैसे बात करना है, किस विषय को ध्यान देना है। और उस समय एक पत्रिका आती थी आकाशवाणी की, आकाशवाणी
1: जी,
0: वो पत्रिका इतनी अच्छी थी, उसके एक एक शब्द इतने अच्छे थे। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपकी लाइब्रेरी में हो कोई कुछ अंक तो मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगी। बहुत मतलब उस पत्रिका के बारे में तो मैं आकाशवाणी पत्रिका का जितना तारीफ करूं उतना कम है। उसे भाषा, बोध गम्यता, किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करना, बहुत अच्छा लगता था पढ़ को पढ़कर। मुझे अब भी याद है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का अंत हुआ था, तो उस समय एक आकाशवाणी का वो आया था, एक पृष्ठ का इतिहास आकाशवाणी के सामने, उसमें सामने जो मुख पृष्ठ था, उस मुख पृष्ठ का टाइटल ही था एक पृष्ठ का इतिहास। तो वो एक पृष्ठ का इतिहास और उस वो अंक इतना अमूल्य था कि मैंने उसको कई बार पढ़ा उसको। तो आकाशवाणी से भाषा ज्ञान है, आपको

0: किसी चीज को समझने की सुनने की अंतर्दृष्टि जो प्राप्त होती है वो और कहीं नहीं है।
1: और जैसे आपने कहा अब भी होता है कि कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून के बाद 5 मिनट आजकल यानी किसी विषय पे हम बात करते हैं, तो हम जब उस विषय के बारे में लिख रहे होते हैं तब हम खुद बहुत सारी नई चीजें समझते हैं और सीखते हैं। आपको जैसे आजकल ये क्रम याद था, वैसे उस समय युववाणी में आने वाले और कोई क्रम याद है जिनके लिए आपने तैयारी की?
0: एक तो मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, मेरे लिए बहुत वो लटपत्र आते थे सवालों के आईने में
1: जी,
0: तो मैं सवालों के आईने में की क्वेश्चन छांटने वाली, और लोग इतना पोस्ट समय तो पोस्ट कार्ड का चलन था
1: जी, जी।
0: तो अभी का अभी भी पोस्ट कार्ड चलते
1: हैं, पोस्ट कार्ड और ईमेल दोनों आते हैं।
0: तो उस समय तो मतलब मैं ज्यादा पॉपुलर थी गाने और उससे ज्यादा सवालों के आईने में, और कोई भी पर्यावरण संबंधी मौसम संबंधी, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड था, तो मैं इन सब चीजों के लिए मैं बहुत मतलब इससे संबंधित मैं टॉक वॉक किया करती थी। और मैंने उस समय एक और था कि भारत दर्शन, तो अलग अलग प्रांतों का हम एक बनाते थे एक पूरा प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम कमल जी के साथ मिलकर। तो मैंने क्या कर्नाटक उड़ीसा जम्मू कश्मीर कई चीजों पर मैंने बनाया था कि जिससे पूरे भारत के, तब उस समय तो 22 राज्य थे, तो उस समय अनेक राज्यों के और वहां की लोक संस्कृति के बारे में, इवन यहाँ की आकाशवाणी की लाइब्रेरी में पतली पतली किताबें हैं जो उस समय थी
1: जी।
0: तो एक एक राज्य के बारे में किताबें थी जो उस राज्य के इतिहास और संस्कृति को बताते थे। पर उस समय हमारे पास गूगल भैया नहीं थे
1: जी,
0: हमारे पास टीवी नहीं था, तो हम जो कुछ प्राप्त करते थे अपने पत्र पत्रिकाओं से, यहाँ तक कि देशबंधु की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी उस समय, तो हमारे पास किताब और पत्र पत्रिकाएं, और इतने पेपर भी नहीं आते थे, न्यूज़पेपर एक दो न्यूज़पेपर ही थे, तो उसी में से पढ़ के हम पूरा उसमें से पढ़ाई करते थे, उसी में देख कर जानते
1: थे। क्योंकि आप खुद भूगोल में दिलचस्पी रखती आई हैं इसलिए आपके लिए ये क्रम और ज्यादा खास रहता होगा।
0: हाँ ये, और मैं बहुत पॉपुलर थी क्योंकि मेरे मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे कमेंट कर रहा है कि आपने ये सवाल अच्छा पूछा, ये इसको पूछिए, इस विषय पे पूछिए, तो वो सब मतलब मेरे फेवरेट जो था सवालों के आईने में। और आज मेरी बारी है, वो भी था उस समय,
1: ये अभी भी ये क्रम है। तो जैसे इन दोनों क्रम का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि कई बार पत्र आते थे जिसमें आपकी तारीफ होती थी, तो उस समय क्रम पत्र मिला हुआ करता था जिसमें श्रोता साथी हमें पत्र भेज के अपने क्रम,
0: हाँ उस समय था ये क्रम, पत्र मिला था, और कई बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मैं भी रहती थी, और सवालों के आईने में ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कमल जी जवाब देते थे या सतीश सक्सेना जी जवाब देते थे, तो वो तो होता था,
1: क्योंकि ये एक क्रम है जो युववाणी के हर कंपेयर के दिल के बहुत खास होता है, क्योंकि इसमें श्रोताओं की सीधी बात हम तक पहुंचती है।
0: जी जी, ये तो बहुत ही मतलब टचिंग मोमेंट रहता है
1: बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पत्र या कभी किसी श्रोता ने आपसे मिलने का मौका मिला हो, या आपको कहीं से पता चला हो कि आपकी आवाज ने सच में किसी के जीवन में कोई बदलाव लाया, या कोई चीज ऐसी हुई जिससे श्रोताओं को ये महसूस हुआ कि इस कार्यक्रम में जिसमें शीला जी थी उनके बात सुनकर हमने ये बदलाव लाया अपने जीवन में?
0: हाँ देखिए, मैं 1985 जनवरी से मैं कॉलेज ज्वाइन कर ली थी, छत्तीसगढ़ कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि कुछ यही जो 5 मिनट का समय होता है, एक बार मैंने किसी को हमारे प्रिय के खो जाने पर हमें कैसा महसूस होता है और हमें क्या करना चाहिए इस पर मैंने कुछ कहा होगा।
1: अच्छा।
0: तो छत्तीसगढ़ कॉलेज में एक लड़का था, स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, तो वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि क्या आप वही शीला मैडम हैं, और आपके इस कार्यक्रम को मैं सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी भी मम्मी की डेथ हो गई थी
1: जी।
0: तो मुझे आपकी बातें, आपने जो उस समय बोला था वो इतना अच्छा लगा कि मैं आज भी आपकी उन कुछ कहा होगा मुझे याद
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: पर उस बच्चे ने मेरे को बोला तो मुझे वो चीज याद है कि मैं कम से कम किसी के लिए, किसी की मुसीबत में या जब कोई हम उदास रहते हैं तो उस समय मैं उसको, मेरे शब्दों ने उसको ढांढस बंधाया
1: जी।
0: तो,
1: क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे पास वो जरिया है जिससे हम लाखों लोगों तक पहुंच के उन्हें कुछ सिखा भी सकते हैं और समझा भी सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो ऐसा ही और कोई प्रसंग जो आपके ध्यान में आ रहा हो जिसको देख कर या सुन के आप मुस्कुराती हो अभी भी जब उन चीजों को याद करते हो?
0: भाई देखिए, आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून
1: जी
0: वो ऐसा ही है कि वो जहाँ कहीं भी हो कि मैं उसको सुन के मतलब इतना अच्छा लगता है उस सिग्नेचर ट्यून से कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उसकी वजह से मेरी बहुत मुस्कुराहट, मेरा दिन अच्छा चले जाता है उस दिन। पर आज भी मैं आकाशवाणी सुनती हूँ, आज भी मेरा 8 से 8:30 बजे सुबह
1: जी
0: और 9:45 से 9:15 शाम को
1: जी,
0: रात को
1: जी,
0: ये मेरा नित्य प्रति का कार्यक्रम है कि मैं रोज सुनती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए।
1: अब इस
0: आज मैं मोबाइल से सुनती हूँ, अब रेडियो का उतना ट्रेंड नहीं है तो मैं मोबाइल से सुनती हूँ।
1: एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है ये कि हम अब कहीं से भी किसी भी जगह की आकाशवाणी सुन सकते हैं। और क्योंकि अब मैं युववाणी का एक हिस्सा हूँ, तो मैं चाहूंगी कि कभी आप अभी की युववाणी भी सुने और हमें बताएं कि तब में और अब में क्या बदलाव है और हम किन चीजों से इसे और बेहतर बना सकते हैं।
0: हाँ, मैं कोशिश करूंगी। मैंने क्योंकि ऑफिस में ही 5:30 बज जाते हैं और फिर मैं सुनी नहीं हूँ बहुत दिनों से, मैं जरूर सुनने का प्रयास करूंगी
1: और
0: आपको बताऊंगी।
1: बिल्कुल, आपकी आवाज में जो अपनापन है, क्या ये अभ्यास से आया है या अनुभव के साथ खुद से विकसित होते चला है?
0: अभ्यास भी है, अनुभव भी है और खुद से भी है। आप जो कह रही हैं तीनों चीजें सम्मिलित हैं, क्योंकि अनुभव तो बहुत हो गया है भाई, अभी मैं 62 साल की हूँ तो इतना अनुभव तो है ही है। और इसके अलावा आकाशवाणी के बहुत से कार्यक्रम में मैं भाग ली हूँ, जैसे महिला कार्यक्रम में तो मैंने बहुत, बिंदिया में तो मैंने बहुत सालों तक मैंने किया है काम, और यहाँ की मैं नाटक उसमें भी मैं थी, ड्रामा आर्टिस्ट भी थी। पर उसके बाद मुझे किसी ने कहा भी एक बार कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए तो हम आपको फिर से ले लेंगे, तो मैं बोली इतना तो मेरे पास याद नहीं और है नहीं, पर मैं ये सब की हूँ
1: जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, उस समय का जमाना जब, जैसे आपने कहा, गूगल नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, अब ये सारी चीजें आ गई है और आप एक विद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल युग के कारण आज की जनरेशन में क्या बदलाव है, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या चीजें हैं जो उनके लिए एडवांटेज भी है?
0: देखिए, ये तो हमारा पेटेंट वाक्य है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये तो यूजर के ऊपर है कि आप उसे कैसा यूज करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज की छात्राएं या छात्र में पढ़ने की इच्छा, सीखने की इच्छा नहीं है, बहुत कम है। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सीख रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: पर ये कम है। परंतु जो एवरेज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हर चीज के लिए गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस पे डिपेंडेंट है, जो सही नहीं है। आपकी मौलिक सोच कहाँ है? मौलिक सोच तो है ही नहीं। हमारे जमाने में तो अगर हम किसी बगल वाले लड़की या बगल वाले लड़के की कॉपी देखकर लिख लेते थे तो वो भी गलत, नकल ही माना जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो आज
1: बिल्कुल।
0: तो पूरा नकल का ही सिस्टम चल रहा है, कॉपी पेस्ट का जमाना है। गूगल में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। तो मौलिकता नहीं है, चिंतन नहीं है। तो इसलिए जो देखिए, अभी युवाओं में जो एक अजीब सी बेचैनी है, हड़बड़ी है और कहीं पे भी धीरज नहीं है इनमें। और देखिए अभी कितना क्राइम हो रहा है
1: जी,
0: क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि उसको देख के ही लगता है कि हमारी युवा जो है एक अंतहीन किस दिशा में जा रही है, जो गलत है। और मोबाइल के रहने से कोई भी छात्रा हो, भले भी कैसे भी कपड़े पहन लेगी, पर मोबाइल के लिए तो वो एकदम क्रेजी है, जो कि गलत है। मोबाइल में क्या है? और उसमें क्षणिक आनंद मिलता है रील और उसको देखकर, और साहित्य की बात तो कोई जानता ही नहीं है आज।
1: तो आपको क्या लगता है, इस डिजिटल दौर में क्या रेडियो आज भी अपनी जगह पर है या कहीं वो अपना अस्तित्व खोता जा रहा है? और अगर खो रहा है तो हमारे लिए रेडियो सुनना कितना जरूरी है या हमें सुनना चाहिए या नहीं?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसको स्कूल में ही प्रैक्टिस कराना चाहिए कि आप जो है समाचार सुनिए। आप जो है, जैसे बच्चों का कार्यक्रम आता था पहले, बाल वाटिका,
1: अभी भी चलता है
0: तो बाल वाटिका। हाँ, मैंने बाल वाटिका में भी काम किया है
1: जी,
0: एक दो बार
1: जी।
0: तो बाल वाटिका में इवन मेरा बेटा भी दो तीन बार आया है।
1: क्या बात?
0: तो बाल वाटिका मतलब, आपको अगर ये घर घर की बात है कि ये संस्कार, ये प्रैक्टिस अगर आप अपने घर में देंगे तो ये अच्छा होगा। और हमें ये प्रैक्टिस स्कूलों से लगाना चाहिए, क्योंकि ध्वनि, ध्वन्यांकन, इसका एक अलग इतिहास है। आप कई अच्छा, जब मैं सवालों के आईने में ये करती थी तो मैं कई जगह का साउंड से मैं बताती थी कि ये इस जगह का कहा क्या है। जैसे कई बार हम, जब मैं दूरदर्शन में काम की तो चित्रों के माध्यम से भी मैंने बताया। जैसे पहले तो हमारे पास टीवी भी उतना नहीं था
1: जी,
0: टीवी भी बाद में आया। तो रेडियो का तो महत्व बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर है कि हम उसे कैसा उपयोग करते हैं। परंतु बीच के समय में ये ऐसा जरूर हुआ कि रेडियो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अपनी भूमिका खोते जा रहा है, परंतु ये हमें और हमारे पुराने, जैसे आपने ये जो कार्यक्रम करके बुलाया, मेरा तो मन इतना प्रसन्न चित्त है आज की मैं क्या बताऊं, कि वर्षों पुरानी, मतलब मैं कई दिनों से चाहती थी कि एक बार आकाशवाणी तो जाना चाहिए, पर बिना बुलाए आना भी अच्छा नहीं लगता।
1: लेकिन ये कार्यक्रम का मकसद ही ये था कि आप जैसे हमारे आकाशवाणी की जो पुरानी धरोहर है, हम उनसे मिल सके और आज की पीढ़ी ये समझ सके कि आकाशवाणी, खास तौर पर रेडियो के रूप में अगर बात करें, क्योंकि रेडियो का मतलब ही आकाशवाणी रहा है शुरू में, और आज भी जब हम किसी क्रम के बारे में बात करते हैं तो हर चीज बहुत सोच समझ के, हर शब्द का चयन बहुत सोच कर लिया जाता है यहाँ पर। तो इसलिए हम चाहते थे कि आपसे एक मुलाकात हो, और अब क्योंकि आप युवाओं के साथ जुड़ी हैं, आप युवाओं को पढ़ा रही हैं, तो वापस वही सवाल कि आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी आज क्या है?
0: आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत है कि इनके पास इंफॉर्मेशन, मतलब आपको जानकारी तुरंत चुटकियों में उपलब्ध है,
1: बिल्कुल,
0: पर इस जानकारी का कैसे उपयोग करना, आप में इतना एथिक्स, आप में इतना नैतिक बल होना चाहिए कि आप सोच सके विवेकपूर्ण ढंग से कि आप क्या करना चाहिए और किसका सदुपयोग क्या होगा, हम समाज को क्या दे सकते हैं। जैसे आकाशवाणी का लोगो ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब हम मास को क्या देते हैं, और कुल मिलाकर समाज के लिए जीना, समाज के लिए अच्छा करना, ये मैंने आकाशवाणी से ही सीखा है।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने बात किया समाज के लिए जीना, समाज के लिए रहना, और हमने सुना है कि आप आज भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, मैं बहुत से कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ। जैसे सुगम्य भारत अभियान जब आया
1: जी,
0: तो छत्तीसगढ़ में किसी महाविद्यालय को पहले नहीं लिया गया था, सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों को लिया गया था कि जिसमें रैंप, टेक्टाइल टाइलिंग और वो जो ब्रेल ये सब का बनाना था
1: जी।
0: तो मैं उस समय के जो समाज कल्याण के जो सचिव थे, मैंने उनसे जाकर मिली और उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में बहुत सी दृष्टिबाधित बच्चियां पढ़ती हैं, तो आप इसको महाविद्यालयों के लिए शुरू करिए। तो उसके बाद सुगम्य भारत अभियान में महाविद्यालयों की एंट्री हुई, तो उच्च शिक्षा में और शिक्षा जगत में सुगम्य भारत को मैंने अपना काम का, मैंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया कि मैं क्या करती हूँ, क्या मैं चुप रहना पसंद करती हूँ और ज्यादा लाइमलाइट में आना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है, और उसके बाद बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैंने समाज कल्याण के जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ काम किया और करती रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, चाहे हाथ लगवाना हो, चाहे उनके लिए ब्रेल बच्चों को लिखने के लिए उनको अखबार दिया जाता है जिसमें वो लिखते हैं, और स्वच्छता से संबंधित जुड़ी हूँ। हमारे पीएचडी छात्रों के माध्यम से हम कई काम करवा रहे हैं। एक मेरा छात्र तो दिल्ली का है और वो डिजेबिलिटी पे मेरे काम को देखते हुए कुछ नेशनल लेवल पे मुझे कोई जानकारी मिली तो जिससे वो यहाँ आया और वो छत्तीसगढ़ में जो डिजेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। और चूंकि ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये अभी आया है और इसके पहले था 1995 का एक्ट जिसमें सिर्फ 8 डिसेबिलिटी थी और अभी 21 डिसेबिलिटी हैं। तो अच्छा। इन डिसेबिलिटीज को पहचानना, चिन्हांकित करना और इनके लिए काम करना, ये मैं छोटा छोटा काम करती हूँ। और इसके अलावा मैं कैरियर काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आकाशवाणी से मेरी जर्नी सवालों के आईने से शुरू हुई थी, तो ये सवालों के आईने का विकसित रूप है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना। तो मैं ये लगातार मेरा प्रयास रहता है कि बदलते हुए माहौल में मैं कैसे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एसएससी के लिए, आपके व्यापम के लिए, पीएससी के लिए कैसे तैयार करूं, ये मेरा प्रयास रहता है। अब कितनी मैं सफल हो पा रही हूं कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, पर मैं प्रयासरत हूँ।
1: आपसे मैम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बात की करियर काउंसलिंग की, ऐसे में कॉलेज में होते हुए कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ विद्यार्थी आते होंगे जो अपने जीवन से निराश चल रहे हैं या वो रिजल्ट को लेकर इतने पॉजिटिव नहीं है, तो आप उन्हें क्या सलाह देती हैं?
0: नहीं, बिल्कुल, हम बच्चों से सबसे पहले बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद हम उनके दिल तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। एक बार तो एक बच्ची ऐसी थी, मैं गर्ल्स कॉलेज की ही बात कर रही हूँ, पता नहीं उसे क्या दुख था कि क्या था, मेरी किसी बातों से उसे बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में बताई कि मैडम मैं तो एकदम निराश होकर मैं मरना चाह रही थी और उसके बाद मैं आपकी बातचीत से मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप मेरा प्लीज़, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अचार का एक डब्बा है
1: जी,
0: तो आप प्लीज़ अचार रख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं उस बच्ची का, मैं बोली बेटा मुझे अचार नहीं चाहिए, बोलते नहीं मैम आप एक अचार तो रख लीजिए, तो वो मुझे 2 आम के अचार के 2 फांक मुझे लाके दी। ये सब चीज़ें मैं, जिसका कोई मोल नहीं है,
1: लेकिन मेरे लिए
0: इतना टचिंग है कि वो बच्ची ने, शायद मैंने उसको अपनी मेरी बातों से उसको कुछ अच्छा लगा हो, तो ऐसे पल हमारे पास बहुत है, अनगिनत पल है।
1: बिल्कुल, ऐसा ही एक और पल जो आप साझा करना चाहें जिसने आपके भीतर कुछ बदल दिया हो या उसके बाद से आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल गया हो।
0: हाँ, ऐसा भी है। ये जो हमारे कॉलेज में एक दृष्टिबाधित बच्ची है जो बहुत अच्छा गाना गाती है
1: जी।
0: उसने ये जो वे अपना आता है ना मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर वाला जो गाना है
1: जी।
0: वो गाई है।
1: अच्छा।
0: तो उसके गाने के बाद वो इतना अच्छा गाती थी और उसको जो इच्छित फल मिलना था वो मिलता नहीं था। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए, उस बच्ची से बात करके, और उनका समूह था, ये पूरे ग्रुप में रहते हैं क्योंकि अकेले उनका रहना मुश्किल है, तो इन लोगों को मैं इतना, फिर मैंने इनके लिए बहुत सारा काम करना शुरू किया इन लोगों के भलाई के लिए, और हमेशा मैं ब्रेल दिवस और ये सब मनाती हूँ, और 5 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है तो मैं उस दिन स्पेशली इनको ट्रीट देती हूँ, मेरा बर्थडे मैं इन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, इन्हीं के साथ करती हूँ, बस एक मेरे लिए सबसे
1: अच्छी चीज है साथियों, होटल और कैफे में जाके पैसे बर्बाद करने से अच्छा है ऐसी जगहों पर जाएं, इनके साथ समय बिताइए, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें जो खुशी देंगे वो तो अनमोल है। आज आप इतने सालों के अनुभव के साथ माइक्रो

0: फोन के सामने बैठी हैं, लेकिन आपको आपका वो पहला दिन याद है जब आपने पहली बार माइक्रोफोन फेस किया था, तब और अब में क्या बदलाव है?
1: हाँ बहुत बदला। मतलब मैं इतना डर रही थी और इतनी फमलिंग हो रही थी मेरे से कि मैं ठीक से बोल, मतलब मैं चाहती थी कुछ बोलना और कुछ बोल जाती थी,
0: जी
1: तो मेरे से त्रुटि, वही मैंने कहा ना शुरुआत में मुझसे
0: बिल्कुल
1: त्रुटियां हुई। तो पर फिर भी मैंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही होगा, 60% तो ठीक
0: जी
1: बोला होगा,
0: जी
1: जिसके
0: जी
1: कारण मेरे जो आकाशवाणी के सीनियर थे उन लोगों ने मुझे चुना और बोला कि नहीं आप दोबारा आइए। पर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और उस समय मैं एक सांस में पड़ जाती थी, मॉड्यूलेशन नहीं था
0: जी
1: और उतार चढ़ाव नहीं था, तो
0: समय के
1: धीरे
0: साथ
1: धीरे
0: भी
1: मैंने
0: चीजें
1: सीखा
0: समझ
1: कि
0: आने
1: कैसे
0: लगी।
1: बोलना है और कैसे करना है। और खासकर मैंने कमल जी के साथ जो सीखा, कमल जी के साथ बिताए हुए पल, उन उसको तो मैं किसी मतलब धन्यवाद क्या दूं, मैंने सब कुछ सीखा उनके साथ है,
0: बिल्कुल
1: तो बहुत कुछ सीखा उनके साथ। और मेरे युवाणी के जितने साथी थे उन सभी साथियों के साथ मैंने कार्यक्रम को प्रस्तुत कैसे करना है, कैसे रहना है, बहुत कुछ सीखा हूं।
0: अंत में अगर आपको अपने उन दिनों को एक पंक्ति में समेटना हो या इस मंच के माध्यम से आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है, इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और वास्तव में जो इसका लोगो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, यही मेरा कहना है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आप देखते हैं कि हम हर दिन आपको ये कहते हैं, खास तौर पर पत्र मिला के दिन, कि हमारा प्रयास होता है कि हर क्रम से आपको मनोरंजन भी मिले, ज्ञान भी मिले और आप हमेशा एक सुकून में रहें कि हाँ आज आपने रेडियो सुना और आपने कुछ नया सीखा। वाकई कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। डॉक्टर शीला श्रीधर, आपने अपने अनुभव से हमें जो प्रेरणा दी उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: आज के इस जश्न आवाज में हमने जाना कि आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक सशक्त शक्ति है। इसी के साथ मैं मल्लिका सुभाशीष आपसे लेती हूँ इजाजत। याद रखिए, आवाज अगर सच्ची हो तो वो सिर्फ सुनाई नहीं देती, दुनिया बदल सकती है। इसी के साथ शुभ संध्या, नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम जश्ने आवाज में डॉक्टर शीला श्रीधर से हमारी कंपेयर साथी मल्लिका सुभाशीष की बातचीत।
3: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
0: दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं होता, कई बार वो दिल की गहराइयों में निकली हुई दुआ और इबादत भी बन जाता है। जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद होते नज़र आते हैं, उम्मीदें भी टूटने लगती है और हम हार मान जाते हैं, तब हमारी आखिरी उम्मीद होती है दुआ।
2: बिल्कुल सही कहा मल्लिका तुमने, एक ऐसी दुआ या कहे कि एक ऐसी फरियाद जिसमें एक इंसान उम्मीद और विश्वास के साथ अपने मन की बात कहता है और माथा टेक अपनी अर्जी की, अपनी दुआ की अर्जी करता है, तब वह दुआ कबूल भी होती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जहाँ दवा असर नहीं होती वहाँ दुआ अपना काम करती है।

0: अभी आप सुन रहे थे क्रम कव्वाली की पहली प्रस्तुति फिल्म बजरंगी भाईजान से। स्वर थे अदनान स्वामी के, गीत के बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने, संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: फरमाइश थी खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा का। बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू, मुरली गौतम का। सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव का।
0: दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, और इसे ही शायद इश्क कहते हैं।
1: बिल्कुल, और साथियों, हर लफ्ज़, हर एहसास हमारे जीवन की धड़कनों को और तेज कर देती है। दोस्तों, आपको पता है कि इश्क की सबसे खास बात क्या होती है? कि ये कभी आवाज़ नहीं करती, बस दिलों में धड़कती रहती है।
0: और दोस्ती ज़रूरी होती है, लेकिन मोहब्बत में आपकी अपनी मंजिल मिल जाती है, क्योंकि इस राह में कभी मोहब्बत का इजहार होता है तो कभी जुदाई का दर्द भी। दोस्तों, मोहब्बत हमें एक बात सिखाती है कि इश्क सिर्फ पाना नहीं होता, असली इश्क किसी के लिए दुआ बन जाना होता है।
1: दोस्तों, मोहब्बत जब अल्फाजों में ढलती है तो वो शायरी बन जाती है, और जब वही मोहब्बत सुरों में ढलती है तो कव्वाली बन जाती है।

0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: फरमाइश आई थी गाता पार लावन से लावण्या उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज प्रभु राम की, शिव शीतलानगर दुर्ग से शिव भगवान चंद्राकर की, धरसीवा से छेदूलाल सीता अरुणा अर्चना अनुराधा अल्पना यादव की। दोस्तों अब वक्त है आपको बताने का कल के आकर्षण, कल की युववाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए आपकी दोस्त मल्लिका सुभाषीष
0: और पलक तिवारी को विदाई, तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति

0: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्रता का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार।

अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन्हा पेट्रोल और डीजल के कीमत

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह कहिन कि विद्यार्थी सरकार के प्राथमिकता है और सरकार ओमन बर संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ह कहिन कि एनटीए ह मेडिकल में प्रवेश बर नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित करे के घोषणा करे है। शिक्षा मंत्री ह कहिन कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होवैया नीट यूजी परीक्षा अवैया बछर ले कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम ले होही। श्री धर्मेंद्र प्रधान बताइन कि विद्यार्थी मन परीक्षा पर अपन पसंद के शहर चुने के मौका मिलही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। दिल्ली में अब पेट्रोल के कीमत 97.77 रुपया प्रति लीटर जबकि डीजल के कीमत 90.67 रुपया प्रति लीटर हो गए है। उन्हें राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपया और डीजल के दाम 96.57 रुपया हो गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन ले पेट्रोल और डीजल के उपलब्धता ला लेके चिंता नहीं करे के अपील करीन है। उमन किहिन कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडारण मौजूद है और प्रदेश के जम्मू ऑयल डिपो में नियमित रूप ले ईंधन के आपूर्ति करे जाते। मुख्यमंत्री है बताइन कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनी आपसी समन्वय के संग स्थिति में सरलक नजर बनाए हुए है। उमन किहिन कि केंद्र सरकार घलो ईंधन आपूर्ति लले के जरूरी तैयारी करे है और कोनो तरह के समस्या नहीं है। श्री साय लोगन मल्ले अफवाह ऊपर ध्यान नहीं दे और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेके आग्रह करें। यही बीच राज्य के खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले हकीन कि आम लोगन डहाले पाछू 2 दिन में घबराहट के सेती पेट्रोल डीजल के खरीदी करे गए है जेखर ले एखर खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुए है। एखर सेती कुछ एक जगह में कृत्रिम अभाव के स्थिति बन गए है। ओमन लोगन मल्ले कोनो भी तरह के अफवाह या घबराहट के स्थिति में पेट्रोल डीजल के खरीदी नहीं करे के अपील करीन है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के दौरा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना के निरीक्षण करें। ए दौरान ओमन सुरक्षात्मक सिंचाई आजीविका संवर्धन और मृदा के संग्रह जल संरक्षण ऊपर केंद्रित आने आने पहलू के समीक्षा करें। उन्हें केंद्रीय सचिव हां सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टाप डैम के घलो अवलोकन करें। प्रतिनिधिमंडल हां सौगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल के घलो दौरा करें जहां 1000 ले ज्यादा अमरूद और लिमऊ के रुख लगाए गए हैं। ऐसने केंद्रीय सचिव धमतरी में नक्शा प्रोजेक्ट के प्रगति के निरीक्षण करें। ए दौरान ओमन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करे और सर्वे टीम के संख्या बढ़ाए के निर्देश कलेक्टर लदिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत गर्मी के मौसम में लू ले बचाव और सावधानी ऊपर स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 16 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित करेगी। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने आने संकाय में प्रावीण्य सूची में जगह पाए मेधावी विद्यार्थी मन ल 13 ठीन स्वर्ण 7 रजत और 2 ठीन कांस्य पदक दिन संग्रह 128 शोधार्थी मनला PhD 518 विद्यार्थी मनला स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थी मनला स्नातक के उपाधि देगिस। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल ह विद्यार्थी मनला बधाई देत

0: के दीक्षांत समारोह छात्र जीवन के एक बहुत बड़ा मौका होते, ये केवल डिग्री पाए के दिन नहीं है बल्कि भविष्य के शुरुआत के प्रतीक है। श्री डे कहा कि हिन के आज कृषि परिवर्तन के दौले गुजरत है, किसान और युवा मन लघलो आधुनिक और उन्नत खेती कोती पढ़ना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री है विद्यार्थी मन ले ड्रोन AI और डिजिटल तकनीक ले खेती ले जोर के किसान और वैज्ञानिक मन के बीच सेतु बने के आह्वान करिन। उमन किहिन कि कृषि विश्वविद्यालय है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे है और वैज्ञानिक ढहर ले विकसित नवा फसल किस्म और आधुनिक तकनीक ले किसान मन ला बड़का फायदा मिला थे। समारोह में कृषि मंत्री रामेचा नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल मौजूद रहीन। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहाले वाकाथन के आयोजन करेगीस। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा रहीन। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुईं। वाकथन आज बिहनिया लगभग 7 बजे सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन ले शुरू हुई। ए शहर के आने आने रद्दाले होत आकाशवाणी परिसर में ही सिराइस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर है बताएं कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 बच्छर के सफल यादगार बनाए बर करे गए है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के संग आकाशवाणी के स्थापना 8 जून 1936 में हुई रही। ये देश के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जौन आने आने भाखा में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण करते। रायगढ़ जिला के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन है मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये उपलब्धि पर वित्त मंत्री OP चौधरी है दिव्यांशु ला फोन करके बधाई दीन है। उमन विश्वास जताइन कि दिव्यांशु भविष्य में घलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश और प्रदेश के नाम रोशन करत रही। उन्हें स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु है किहिन कि प्रदेशवासी मन के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ही उमल्ला ए शिखर तक पहुंचाए के ऊर्जा दे है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई के केरल तट में पहुंचे के संभावना जताए है। यही बीच छत्तीसगढ़ में अवैया 24 घंटा के दौरान कई जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधड़ चले और गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव होए के संभावना नहीं है जबकि 17 मई ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकत है। आज बिहनिया मौसम के मिजाज बदले के सेती राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में तेज हवा के संग तेज वर्षा हुई। एखर ले लोगन मल्ला गर्मी ले कुछ राहत मिलिस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन है पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहाले वाकाथन के आयोजन करेगीस। इखरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा UAE देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारो रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000 वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य एकविंशति दिनांके 26,000+ नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्। औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000+ श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य विदेशमंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रकाशिते सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चाम् उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य 3 आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपरलीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
3: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
4: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
3: Education mafiaon ke sadyantra se sahi chhatr ki adhikar vanchit ho jaye।
1: शिक्षा मन्त्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुम् उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामिवर्षात् सङ्गणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
4: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
3: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based test से होगी।
1: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साई राजरंकीरेड्डी चिरागसेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम् इति वार्ताः।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
6: श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। तो श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में गहरा असर डाल सकती है। जी हाँ, दहेज। दहेज समाज में एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं पर कल्पना से परे प्रताड़नाओं तथा अपराधों का कारण है। इस अपराध ने समाज के सभी तबकों की महिलाओं की जान ली है, चाहे वे गरीब हो, मध्यम वर्ग की हो या धनाढ्य हो, लेकिन आज के समय में सभी इस जाल में फंसते हैं एवं शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव और लालच। जी हाँ श्रोताओं, मनुष्य में बढ़ता हुआ लालच। दहेज वर्तमान समय में इतनी बड़ी समस्या है कि इसके कारण कई बेटियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। शादी विवाह के बीच दहेज की चर्चाएं भी समाज में अक्सर सुनने में मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
7: माँ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो?
8: बस थोड़ी सी चिंता है।
7: कैसी चिंता माँ?
8: वो रमा काकी से बात हुई थी आज, तो वो बता रही थी कि उनकी बेटी सुनीता की शादी हुई है, तो जो सुनीता के समधियों ने दहेज मांगा था, तो बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने किसी से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी करवाई।
7: क्या, उधार लेकर?
8: हाँ बेटा, अब बेचारी बड़ी परेशान है। कमाई वैसे ही कम है भाई साहब की, ऊपर से ही कर्जा उतारने की टेंशन।
7: पर माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है।
8: गलत तो है बेटा, पर ये समाज नहीं समझता। अगर वो दहेज नहीं देती तो उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होती और ना ही समय से हो पाती।
7: सुनीता आंटी की बेटी खूब पढ़ी लिखी और समझदार है, इतनी प्यारी लड़की की शादी तो यूं ही हो जाती है, उन्हें दहेज देने की जरूरत कहाँ थी। आप तो जानती है ना माँ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। आंटी के पास इतना होता और वो अपनी खुशी से देती तो बात और थी, पर दबाव में और उधार लेकर दहेज देना अपराध है। आंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ।
8: बेटा, अपने बच्चों के आगे सही क्या और गलत क्या, बस अपने बच्चों की खुशी ही नजर आती है।
7: नहीं माँ, गलत तो गलत ही है ना, सब ऐसा करेंगे तो समाज में सुधार की शुरुआत कैसे होगी।
8: तू अभी नहीं समझती है, कुछ ही 100 में से कोई एक दो होंगे जो ये बात समझते होंगे, बाकी लोग जो समाज में है ना, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। समाज का जो चलन है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
7: तो क्या माँ, कल को कोई मेरी शादी के लिए भी दहेज मांगे तो आप दे दोगे?
8: बेटा, अब मुझे यही तो चिंता है, बेटी तेरे बाऊजी तो है नहीं, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, शादी में तो सब देना ही पड़ेगा ना।
7: आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपने ही कहा ना ये सब गलत है, फिर भी आपको करना है, समझ तो आप भी नहीं रही है। दहेज देना गलत है और इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ माँ। अगर ऐसी ही चिंता है आपको तो मुझे शादी ही नहीं करनी।
8: अरे तू पागल हो गई है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा?
7: देखो माँ, गलत का साथ मैं नहीं दे सकती और ना ही मैं आपको ऐसी चिंता में देख सकती हूँ, तो अब सारी चिंता खत्म।
8: नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, परसों तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम ऐसा कुछ मत करना बेटी, तुमको मेरी कसम है।
7: अरे माँ, मतलब आप चाहती हैं भले आपकी बेटी दुखी हो जाए पर उसकी शादी होनी ही चाहिए।
8: बेटा, ऐसा तो नहीं चाहती मैं, बस मैंने इतना कहा है, तू परसों कुछ मत कहना, मैं देख लूंगी अपने आप।
7: ठीक है, अभी आप सो जाइए और चिंता मत कीजिए। ईश्वर, मैंने सुना है कि आप हो और मेरा ये विश्वास है कि आप हो और जीवित हो, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं आप। हे ईश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस दहेज प्रथा के विरोध में, जो समाज में डर है, सब चुप हैं, दहेज लेने वालों को कोई रोक ही नहीं रहा और आज ये मेरे जीवन में भी आन पड़ी है। माँ ने मुझे कसम दी है कि मैं कुछ ना कहूँ और आप जरूर कुछ कर सकते हैं, प्लीज मेरे इन हालातों में मेरी मदद करो, मुझे सही राह दिखाओ कि मैं सही निर्णय ले पाऊँ और जो भी परसों आ रहे हैं मुझे देखने वो समझ पाए और माँ को भी मैं समझा पाऊँ, प्लीज मेरी मदद करो। परमेश्वर जरूर कुछ अच्छा करेंगे, बाकी तो संभाल लो खुद को सुमन, जो होगा अच्छा ही होगा परसों।
9: माँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, दहेज मांगना सही नहीं है, यह एक कानूनन अपराध है।
6: बेटा, इतना बोलने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुझको। तू शांत रह तो ही अच्छा होगा। सुबह से देख रही हूँ बोले जा रहा है। अगर वो अपनी बेटी की खुशी से कुछ देना चाहती

0: लगी है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है?
1: माँ, पहली बात तो उस लड़की के पिताजी नहीं है, और दूसरा मैं आपको जानता हूँ, वो खुशी से दे या ना दे पर आप जरूर दबाव डालोगी उन पर।
0: बस अब चुप।
1: माँ, हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी चाहिए ना, वो अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे यही मेरे लिए काफी है।
0: जब समाज वाले पूछेंगे हमसे कि क्या मिला और मिला जी, बेटे की शादी तो करा दी, तो क्या कहेंगे हम कि हमें तो एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो हमारे बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी है और हमारी अच्छी बहू है जो हमारा घर संभालेगी, ये कहेंगे क्या?
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना है।
0: चुप रहो तुम, हंसेंगे समाज वाले हम पर। अब हमें कुछ सुनना नहीं है, चुपचाप चलो और अपना मुंह बंद रखना।
1: मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ, आप हमेशा ही सामान देखती हैं, कौन कितना दे रहा है, अगर दहेज ही चाहिए ना तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? माँ मुझसे नहीं होगा, ये जानते हुए कि दहेज लेना जुर्म है, और मैं आपका साथ दूँ, आपको जो देखना है वो देखो, जो मुझे देखना होगा वो मैं देख लूंगा।
0: बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा।
2: अरे उर्मिला जी।
3: हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते
2: जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसी हैं आप?
3: हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
2: को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
3: नहीं नहीं, दिक्कत कैसी, बस कार में बैठे और पहुँच गए।
2: सुमन जरा पानी लाना बेटा।
4: नमस्ते आंटी।
3: नमस्ते नमस्ते बेटा, ये तो आपकी बेटी है ना?
2: जी।
3: सुंदर तो है
2: जी। आपका बहुत शुक्रिया।
3: आओ बेटा बैठो इधर, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने?
4: एमए बीएड किया है।
3: ओ पढ़ाई तो काफी की है, बस घर में ही रहती हो या कुछ काम भी करती हो?
4: जी पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ, और बस घर के काम में माँ की मदद।
3: अच्छा जी, दो मिनट। हाँ बेटा कैसी लगी तुम्हें?
1: माँ मुझे सुमन पसंद है, इसके व्यवहार में जो सादगी और सरलता है, बस ऐसा ही जीवन साथी मुझे चाहिए।
3: तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ फिर, बस तुम अपना मुंह बंद रखना।
1: उसका कोई मतलब नहीं माँ, मैंने जो आपको घर पर कुछ कहा था।
3: कहा तो मैंने भी था तुमसे, तुमसे वो होगा कि नहीं? मैं तुमसे वही चाहूंगी जो मैंने कहा है। चुप रहना अब, जितनी तुम्हारी राय चाहिए थी उतनी ले ली मैंने। हमारी तरफ से तो हाँ है।
2: सच कह रही हैं क्या आप?
3: हाँ भाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। वैसे कांता जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी है आपसे।
2: आप पूछिए ना।
3: शादी में अपनी बेटी को क्या भेंट दे रही हैं आप? वैसे इस बारे में कुछ सोचा है आपने? अब क्या है ना कि हमारे घर में तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, पर समाज में दिखाना तो पड़ता ही है।
2: हाँ सही कह रही हैं आप, वो क्या है ना, बात ऐसी है कि सुमन के बाबूजी तो है नहीं, सुमन और मैं इतना ही कमा पाते हैं कि बस घर चल जाए, फिर भी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी।
3: अरे कांता जी देखिए, अब हमें क्या है कि हमारे लेवल के हिसाब से समाज में दिखाना भी पड़ेगा।
2: तो आप बताइए फिर मुझे, तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी करूंगी।
3: बस वही 4-5 तोला सोना, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एक बड़ी सी गाड़ी, और इसके अलावा जो भी आपके मन में हो वो दे दीजिए।
2: जी इतना सब?
3: क्यों ज्यादा है क्या, नहीं हो पाएगा आपसे?
2: नहीं नहीं, मैं कर लूंगी।
4: एक मिनट आंटी, मुझे एक दुविधा है।
3: हाँ बेटा बताओ।
4: आप आपके बेटे के लिए जीवन साथी देखने आई हैं या अपने घर के लिए सामान?
3: क्या मतलब है तुम्हारा?
4: आपने अभी जो ये लंबी सूची पकड़वाई है, लगता है आपको सामान चाहिए।
3: बेटा जब बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में मत बोला करो।
4: क्यों आंटी, आपको पता नहीं है दहेज मांगने पर क्या हो सकता है?
2: अरे बेटी चुप कर तू,
3: बहुत ही बदतमीज बेटी है आपकी।
1: सही कहा माँ आपने, बदतमीज तो बिल्कुल है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा बदतमीज ही होता है, पर ऐसे सच बोलने वाली सचमुच मुझे पसंद है।
3: तुझे मैंने घर पे कुछ समझाया था ना?
1: जी माँ, और मैंने भी आपको

0: ये जो अभी आपने लिस्ट दी है ना, इसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
1: क्या जेल? वो कैसे?
0: हमारे देश की सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता IPC के तहत बनाए गए हैं, जो दहेज लेने देने और मांगने का अपराध मानते हैं। इस कानून के तहत दहेज के लेने देने पर 5 साल की तो कैद है और 15,000 तक का जुर्माना भी है। माँ
2: सही कहा है इन्होंने, अपराध को सहने वाला भी बराबर जिम्मेदार होता है। जितनी सजा दहेज लेने वाले के लिए है, उतनी ही सजा दहेज देने वाले के लिए भी है। माँ
0: हमारी सरकार इतने कानून बना रही है, इतना सोच रही है इन प्रथाओं को रोकने के लिए, और हम भी सहयोग नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है?
3: मुझे माफ कर दे समन बेटा, तूने मुझे इतना समझाया फिर भी मैं नहीं समझी, माफ कीजिएगा उर्मिला बहन जी। मेरी बेटी की शादी तो मैं वहीं करवाऊंगी जहां उसकी खुशी हो और जहां दहेज देने के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए। और संदीप बेटा, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ही नेक और समझदार लड़के हो।
4: नहीं नहीं कांता बहन, मुझे जेल नहीं जाना। आपका तो पता नहीं, पर मेरा बेटा मुझे जेल जरूर पहुंचा देगा अगर मैंने दहेज मांगा तो। मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है, अब मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो भी सिर्फ आपकी मर्जी से और खुशी से।
3: तो फिर रुकिए, अभी मिठाई लेकर आती हूँ मैं समधन जी।
4: जल्दी कीजिए।
0: थैंक यू सुमन, आपने आवाज उठाई तो मुझे भी हिम्मत मिली।
2: थैंक यू संदीप जी, आपने भी समझा और सपोर्ट भी किया। थैंक यू गॉड।
5: तो श्रोताओं, देखा आपने किस प्रकार शिक्षा समाज में हो रहे अपराध को रोकने में सहायक हुए। साथ ही एक और बात ध्यान देने की है, वो है ईश्वर पर विश्वास। जी हाँ, ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सुमन ने प्रार्थना की और ईश्वर पर विश्वास दिखाया, उसी प्रकार हमें भी जीवन के कठिन समय में उस पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे समय में उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
6: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
5: तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं, दहेज लेना और दहेज देना सही है या गलत? अवश्य इस बारे में सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियाँ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपए और डीजल के दाम 96.57 रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है।
8: मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहे, किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
7: इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले दो दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। उधर गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो पहिया वाहन में 300 रुपये और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1000 रुपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय सचिव ने सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टॉप डैम का भी अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सौंगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया, जहां 1000 से अधिक अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिव ने में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करने और सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय यात्रा में आकाशवाणी भागीदार रहा है और आकाशवाणी ने समय के साथ बदलाव को अपनाया है।
9: आकाशवाणी हेरिटेज संस्थान है भारत के लिए। भारत की राष्ट्रीय यात्रा जो रही है, सांस्कृतिक यात्रा रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये सभी में पार्ट रहा है आकाशवाणी। समय के साथ इस बीच में जो बदलाव आए हैं, आकाशवाणी में भी बदलाव आए हैं, डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है और सभी चीज़ों में बदलाव को अपनाया है, आत्मसात किया है और आज भी देश की 98% जनता को तक पहुँच है।
7: कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जयभाई और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वाकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है।
10: जो वाकथन एंड मैराथन इसलिए आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया है कि 8 जून 2026 को 90 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी उनका योगदान था। इसमें हम लोग जितना डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेजेस में प्रसारण करते हैं तो कोई मीडिया दुनिया में नहीं करते हैं। जिसका लिपि नहीं है उस भाषा में भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्तर रीजन में गोंडी, हल्बी, बटरी का कोई लिपि नहीं है और आकाशवाणी इज ए मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
11: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
7: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक प्रदान किए। साथ ही 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आह्वान किया। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल उपस्थित थे। रायगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉ विमल किशोर रॉय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 16 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर 9:00 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज से पर्यावरण दिवस अभियान शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव प्रयास करने, बदलाव लाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों तथा व्यवहार के महत्व को समझाते हुए शपथ दिलाई। यह अभियान 5 जून तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सुबह मौसम का मिजाज बदलने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार यानी 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पहला फ़ोन नंबर है 400-3482। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 400-3483। हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से लेकर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 से किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में लीजिए सुनिए 100 डेज फिल्म का ये गीत। दिलीप ताहिर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए लव फिल्म का ये गीत एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है आनंद मिलन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए वंश फिल्म का गीत एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम सतीश भाई।
1: राम राम ऋचा और संग में चौपाल सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम। देख सतीश भाई, अभी देख खेती बाड़ी और किसानी काम में तो कत को अकन आजकल काय देखे ले मिला थे, नवा नवा मशीन है ना, और जो ना अलग अलग ऊर्जा ले घलो चलते और नवा नवा तकनीक घलो आगे हावे।
1: हर मशीन के अलग अलग ऊर्जा स्रोत होते, कोनो हाँ मशीन डीजल ले चलते, कोनो पेट्रोल तो कतको बिजली ले चलते, तो ऐसन यंत्र घलो हवे जिनहा सूर्य ले चलते, जिनहा सूर्य हमला आसानी से ऊर्जा मिलते एकर से घलो चलते, तो अनेकानेक आज नवीनीकरण हो गए है, नवाचार हमर कृषि जगत में हो गए हवे।
0: सिर तो उन बात आया, और देख सौर ऊर्जा तो भाई आज के युग में ज्यादा अच्छा होगी, काबर की ना तो ये मा डीजल पेट्रोल लगे ना तो बिजली, और कभू कभू बिजली बंद हो ले कभी देखतन तो मशीन हा बंद हो जाते, तो मा कोनो प्रकार के रुकावट नहीं आवे।
1: ये बढ़िया कहा था चौका है, अभी ये वर्तमान में देख किल्लत हवे, अभी बने समसमय का देख अभी डीजल पेट्रोल बड़ा मुश्किल होगी इसे, तो ये समय में इसने जो न सौर से चलित जिन हवा या इलेक्ट्रिक है तेनों मन काम आ जाते हैं। ये बहुत सही बात है कि हम कोनो भी काम बिजली चलित यंत्र ले करन करथन, और बिजली कभू कभू बंद हो जाते तो हमार बिजली के अगोरा करत हमार समय हाँ बहुत खराब होते, तेकर जति हमला एक वैकल्पिक रूप से सौर ऊर्जा के घलोक हमला उपयोग करना चाहिए।
0: वाह, तब तो ऐसा समय बर ना सबसे अच्छा हमन कह सकथन सौर ऊर्जा चलित यंत्र के उपयोग हमला ज्यादा ले ज्यादा करना चाहिए, और हमार कीमती समय घलो एक हल्ले बाची है नहीं।
1: सौर ऊर्जा के गोट करन तो आज केवल घरेलू नहीं व्यावसायिक रूप से बड़े बड़े उद्योग या बहुत बड़े बड़े फर्म आज कर सौर पैनल लगा करके चलावत है, सूर्य के जिन निःशुल्क मिले जो ऊर्जा है को उपयोग हमार संगवारी मन करत है, मुनाफा भी कमाते है कर।
0: हाँ, खेती के संग घरेलू उपयोग बर घलो सरकार ह सौर ऊर्जा ला बढ़ावा दे बर प्रोत्साहित घलो करत है, जेमा उपभोक्ता ला छूट घलो दे जाते, और बिजली के बिल ह उपभोक्ता मन बर ज्यादा आर्थिक भार नहीं बनन दे।
1: जब बात कर लेन कि खेती में सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग कैसे और का काम बर कर सकथन, काबर की हर अलग अलग विधि ले आने आने काम में उपयोगी होते है।
0: हाँ, तो सबले पहले सौर ऊर्जा पंप के बात करन, ता सिंचाई के लिए बिजली या डीजल के जगह सौर ऊर्जा ले चलने वाला पंप के उपयोग करना जरूरी, काबर के पंप के लागत हा बिल्कुल कमती या शून्य कही सका था, बने वहाँ बहुत कमती खर्चा है।
1: बिजली से यदि चले वाला यंत्र के अलावा ये मन उपयोग करबे तो हमारा आर्थिक बचत भी हो जाए, हमारे सीधा जेब से सरोकार है। अब ये बात सही पहली जरूरी है, काबर की मुख्य रूप ले किसानी बर पंप की जरूरत पड़ते, सौर इमा सौर ऊर्जा ले एक ठन रूप और उपयोगी हवे वो है एग्रोवोल्टेक्स। अच्छा। ये कर ऐसा विधि है, ये है कि इमा ऊपर मा सोलर जो पैनल रही थे वो लगते सूर्य पैनल है, और नीचे के जो जमीन खाली है ओमा हम कोनो भी कृषि काम सब्जी फसल ये हम काम कर सकते, तो ये बहुत अच्छा चीज होते एक माध्यम में बढ़िया चीज है।
0: इसने ही सोलर ड्रायर के माध्यम ले फसल सब्जी और फल मल्ला सुखा सकत हावन, और एक ले फसल या जो न फल है वो खराब हो ले बाज जाते, ता ये सब तरीका ले हम सौर ऊर्जा के उपयोग घलो कर सकत हावन।
1: ये सब के उपयोग करे ले किसान मन ला लाभ होते, एकर बारे में घलोक चर्चा कर लेथन हमन काका कर लाभ होते एकर बारे में।
0: सबले पहले तो सौर ऊर्जा लगाए ले लागत में भारी कमती आते, काबर की ये माना बिजली लगे ना डीजल, जेखर ले किसान मन के बचत के अनुपात घलो बढ़ जाते।
1: अभी हमन देखत हन के खेती किसानी के साथ साथ सरकार ह घर में घरेलू उपयोग पर घरों के हर जगह सोलर पैनल खल लगावा थे, उस सब्सिडी देवा थे, लाभ देवा थे है ना, और लाभ के ये कह सकथन कि किसान मन के उपराहा आमदनी एकर लगाए ले होते, सौर ऊर्जा ला बेच के और पैनल के नीचे फसल या फल लगा के अतिरिक्त माने ऊर्जा उत्पन्न करके हम ओला बेच भी सकथन, यही एकर मुनाफा एक थन।
0: और सौर ऊर्जा ले खेती करे में बहुत से फायदा है, जैसे अब देख एमा ना हमार आसपास के जो वातावरण है बहुत सुधरित है, काबर न एमा कोनो प्रकार के धुआं है न धूल रहा है।
1: ये

0: किसम ले कहन कि एकर आसान और भरोसामंद रहते, रख रखाव के प्रबंधन उतका ज़्यादा समस्या देह नहीं रहा है, आसानी से एकर रख रखाव या प्रबंधन कर सकथन और रोशनी मुफ्त एला हम उपयोग कर सकन। तो सबला देखत आज के समय में सौर ऊर्जा के मांग बढ़त जाते और हम मतलब एक ये तरफ हमारे एक कदम बढ़ाना चाहिए बिल्कुल।
1: और खेती में सौर ऊर्जा ला बढ़ावा दे बर सरकार ह ओ कत कोन सुविधा बर कदम बढ़ावा थे। पीएम कुसुम योजना के बाद सरकार ह एला अच्छा बनाए बर और किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए बर योजना घलो बनावत हवे।
0: हाँ, ऐसे बताते हैं कि केंद्र सरकार ह किसान मन के आय बढ़ाए खातिर और सिंचाई के व्यवस्था ला सस्ता बनाए बर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान माने पीएम कुसुम योजना के नवा संस्करण और नवीनीकरण ओखर बर लावत है, ताकि किसान के जेब के मतलब कहना चाहिए और आर्थिक स्थिति और अच्छा हुआ और ओला ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। एक कदम ये सरकार है किसान मन के हित बर बढ़ावा था भाई।
1: तो सतीश भाई, तब तो ऐसा माँ फसल और सब्जी के खेती करे किसान मन ला और ज़्यादा लाभ मिली। सरकार के लक्ष्य है खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन के विकल्प ला बढ़ा के आमदनी ज़्यादा करवावता।
0: ऐसा सुघर व्यवस्था के आय ले सिंचाई और खेती किसानी हाँ पूरा सौर ऊर्जा में पूरा आधारित हो जाते और बने घलो का है, काबर की सूर्य ले बनने वाला ऊर्जा सस्ता में सबो ला मिल जाते और डीजल पेट्रोल या बिजली ले बचत हो जाते।
1: सौर ऊर्जा लगाए के लाभ के बात कहान त किसान हाँ अपन खेत में सौर पैनल लगा के ऊर्जा उत्पादन कर सकते और ओला बेच घलो सकते त और एखर ले किसान मन ला अतिरिक्त आय घलो मिला थे और किसान मन के काम घनो बने ढंग से चलत हवे और साथे साथ हमार पर्यावरण घलो बने हवे।
0: ये कहे कि एक पंथ दो काज या का आम के आम गुठली के दाम मिलते, तो एला हमन ए तरफ हम एक कदम बढ़ावन एला उपयोग करके देखन, निश्चित रूप से हमला आर्थिक लाभ मिली। अब ये बात तो सही है कि जब किसान मन के जेब में उपरहा आय रही तो ओकर आमदनी के कतको वो आमदनी जन होई तेकर ले और कुछ काम कर सकते और जब ऐसा काम करही उकर आर्थिक स्थिति संपन्नता की ओर बढ़ी तो खुशहाली आई तो बढ़िया वह किसानी और अच्छे ढंग से कर लीही।

0: अभी ये गीत सुने जलेश्वर देवत्री सभा विदुषी ममता चंद्राकर और प्रेम चंद्राकर मन
1: संगवारी हो क्रम हेलो चौपाल माँ सुनथन फसलों में समय के तीक कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन ये विषय माँ किसान भाई मन से हुए गोट बात और हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर एस एम अली हुमायूं जी कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले और गोट बात करावत है हमारे सतीश भाई हा।

0: खेती खार ला चतवार ले कांटा खुंटी ला बिन ले किसान देख तोर मेहनत बर अगोरा करत हे खेत खलिहान थोरको बेरा अब झन करते होगे किसानी रूपी बिहान किसान संगवारी हो सतीश कुमार यदुके राम राम जय जोहार आवाओ आज हलो चौपाल क्रम मा विषय है फसल मन मा समेती कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के लाभ जेकर विशेषज्ञ है डॉक्टर एस एम अली हुमायूं कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद प्रस्तुत करता हवे शशि प्रकाश पांडे तकनीकी सहायक है प्रियंका डिक्सेना और उदय ठाकुर डॉक्टर हुमायूं जी नमस्कार
1: नमस्कार
0: बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमर स्टूडियो में
1: धन्यवाद
0: हेलो चौपाल कौन बोला था आप मन
2: हेलो चौपाल नमस्ते सर जी
0: नमस्ते कौन बोला था कहाँ ले बोला था
2: राजेंद्र कुमार दामले को उठा था सिरमुंडा ले
0: अच्छा दामले जी आज आप मन के का प्रश्न है बताओ
2: सर जी आज के जो प्रश्न है सर बता देते कि समिति कीट प्रबंधन कैसे कैसे करना है ओकर वंशों से बता देते सर जी
0: अच्छा तो जानथन आप मन के प्रश्न के जवाब हमारे विशेषज्ञ मन ले
1: जी नमस्कार आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि समन्वित कीट प्रबंधन जो है किस तरह से किया जा सकता है देखिए आजकल जो है समन्वित कीट प्रबंधन जो है वो बहुत अति आवश्यक है किसानों को समझना कि समन्वित कीट प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन होता है जिसमें कीट और खरपतवार रोग नियंत्रण के वो सारे उपाय किए जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से जिससे कि जो है आखिरी में हमें जो है फसल उत्पादन अच्छा हो क्योंकि हम सारी चीजें फसल के अच्छे उत्पादन के लिए अपनाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है फसलों में रसायन का प्रयोग करना नहीं होता तो समन्वित कीट प्रबंधन जो है वो प्रबंधन होता है जिसमें कीट रोग और खरपतवार से बचाव के लिए वे सारे प्रबंधन अपनाएं जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो जिसमें कि सारे के सारे प्रबंधन जो है जैविक प्रबंधन उसमें अपनाए जाते हैं कल्चरल कृषक जो प्रबंधन है वो अपनाए जाते हैं यांत्रिक प्रबंधन उसमें अपनाए जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसान किसी चीज का या किसी फसल का समन्वित कीट प्रबंधन करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना प्रबंधन जो है मृदा से शुरू करे वो मृदा को पहले जो है उपचारित करे उसमें जो है खाद की मात्रा जो फार्मयार्ड मैन्योर होता है गोबर की खाद होती है ना वो अच्छे से मिलाए गहरी जुताई करे गर्मी के वक्त अगर गर्मी की फसल मतलब खरीफ की फसल लगा रहे हैं तो गहरी जुताई करें जिससे कि अंदर जो जमीन के अंदर पड़े हुए जो कीट होते हैं उनके अंडे होते हैं उनके जो कृमि कोष होता है या बीमारी होती है

0: वो जो अंदर पड़ी रहती है वो पलट के जब मिट्टी ऊपर आती है तो मिट्टी जब धूप में पड़ती है तो उससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो वहां से किसान भाई को जो है शुरू करना चाहिए, मृदा को जो है पहले उपचारित करें, फिर उसके बाद स्वस्थ पौधे का जो है चुनाव करें। आपने एक बार अभी शायद ये भी आपको जानकारी आप लेना चाहेंगे कि स्वस्थ बीज किस तरह से अपनाएं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अच्छी, अगर आप कहीं से बीज लेते हैं तो उसका जो है सोर्स जो होता है, स्रोत होता है, वो अच्छी जगह से हो। आप उस बीज का प्रयोग ना करें जो आपके घर में कहीं कमरा होता है या आपका जो बाड़ा है जहाँ पे आप बीज रखते हैं, वो ऐसी जगह ना हो जहाँ पे जो है बीमारी लग गई हो, कीट आ गए हो, है ना। वैसी जगह का बीज आप ना लगें। सालों साल एक ही बीज का जो है, जो फसल निकाले उसी फसल के बीज को आप सालों साल वापस लगा लगा के जो है प्रयोग ना करें। और फिर उसके बाद बीज लगाने से पहले आप उसको बीज को उपचारित कर लें, है ना, कीटनाशक से, फफूंदी नाशक से या नमक के घोल से उपचारित कर लें। तो इस तरह से सब क्रियाएं करके जो है जैविक के साथ समन्वित कीट प्रबंधन किया जा सकता है।
1: फोन लगाए खातिर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चौपाल।
2: हाँ भैया, मुरमाया भरे राम राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: बहुत बहुत स्वागत है क्रम में। वर्मा जी बताओ, आज आप मन के का प्रश्न है विषय ले संबंधित?
2: हाँ भैया, डॉक्टर भैया राम राम।
0: राम राम वर्मा साहब।
2: जैसे भैया ये समिति स्थिति का होते और हवैया रोग और एक रोग के प्रबंधन और एक लाभ हमन कैसन ढंग ले सकथन, यही जम्मो बात ल पूछे बर फोन लगाए हूँ भैया आपले।
0: समन्वित कीट प्रबंधन जो है वे फसल का ऐसा प्रबंधन है जिसमें कीटों से, रोगों से और खरपतवारों से और कोई भी ऐसे जीव जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाव का एक प्रबंधन, जिसमें सभी प्रकार के प्रबंधन का मिश्रित उपयोग किया जाता है, उसे समन्वित कीट प्रबंधन कहा जाता है। आपके समझने के लिए एक सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपके जो है फसल के चुनाव से लेके जमीन, मृदा, जो भूमि है हमारी उसको उपचारित करना, फसल के अच्छे बीज लेना, स्वस्थ पौधों का जो है लगाना, उसके बाद अगर कीट बीमारी आते हैं तो उनमें जो है सीधा सीधा रसायनों का प्रयोग ना करते हुए पहले जैविक नियंत्रण की तरफ जाना, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है रासायनिक की तरफ जा सकते हैं। इनका सब मिला जुला जो प्रबंधन होता है वो समन्वित कीट प्रबंधन कहा जाता है, जिसे जो है समेकित कीट प्रबंधन भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, IPM के नाम से जाना जाता है। तो इससे लाभ ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये लाभ होता है कि हमारे जीवन में जो हम भोजन ले रहे हैं वो विषैला है, ये आप और हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अंधाधुंध जो है रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायन का प्रयोग करना हम गलत नहीं कहते, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग करना, अनावश्यक प्रयोग करना, ये जो है उचित नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम जहर के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए समन्वित कीट प्रबंधन अपनाना जरूरी। तो सबसे पहले तो ये उसका फायदा है कि आपके हमारे स्वास्थ्य में इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा अगर हम रसायनों का प्रयोग कम करते हैं। दूसरी बात ये कि जो पौधों में फसल लगती हैं उन फसलों में जो है स्वाद जो होता है वो रसायन की वजह से कम होता है। आप जैविक का कोई फसल लगा के अगर आप उसको जो है खा के देखें और जो रसायनों के ही भरोसे जो फसल उगाई जाती है उसके स्वाद में भी आपको अंतर साफ साफ पता चलेगा। दूसरी बात यह कि वातावरण जो है वो दूषित नहीं होता। देखिए, जितने भी रसायन बनते हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनते हैं, उसमें बहुत से लोग काम करते हैं जिनके स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है। फिर उसके बाद उस रसायन का अंततः उसको जाना कहाँ है, उसको जाना है मृदा में, पानी में, हमारे पीने वाले पानी में और ऊपर वायुमंडल में। तो जो है हमारे पर्यावरण को जो है उससे हानि होती है। तो इस वजह से भी हम जो है रसायन का प्रयोग करने कम कहते हैं। आगे उसका लाभ ये हो सकता है आपको, अगर आप देखें कि आप जो है उसका मूल्य अधिक पा सकते हैं अगर आप जैविक की तरफ जाते हैं जिसमें अगर रसायन की मात्रा कम हो, तो आप जो है मूल्य भी उसका अधिक पाया जा सकता है, आपको मिल सकता है, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत से जागरूक हो रहे हैं। बाहर के जो देश हैं वो ऐसे फसल, ऐसी फलों का जो है अपने देश में लाना चाहते हैं जिसमें जो है रसायन का कम से कम प्रयोग हो। कुल मिला के जो है किसानों को जो है ये सब लाभ समन्वित कीट प्रबंधन बनाने से किया जा सकता
2: है। बहुत सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: आपका भी धन्यवाद वर्मा साहब।
1: हेलो चौपाल, कौन बोला था, नाम बताओ।
3: मैं मोतीलाल सिंह से बोला था। मैं खैरागढ़ राजलालपुर से बोला था।
1: आज आप मन के का प्रश्न है?
3: वो जैसे मतलब फसल के काम चालू करना है, बीज बीज के संबंधी जानकारी लेने की, बीज के उपचार जैसे हम घर में कर सकते हैं या फिर प्रमाणित बीज कहीं बाहर से खरीद सकते हैं, तो हम मतलब का करना चाहिए? घर से प्रमाणित बीज के उपयोग करे जाए, प्रमाणित बीज घर से तैयार करके उपयोग करे जाए, या फिर मार्केट से, या फिर जो जहाँ से बीज बीज जहाँ से मिलते वहाँ से खरीद के उपयोग करे जाए, ये जानना चाहते हैं।
1: अच्छा, तो आप मन के शंका के समाधान हमारे विशेषज्ञ ले पाबो।
0: देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये जो सवाल है ये बहुत से कृषकों के मन में ये रहता है कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि घर का भी बीज अगर आपका है, अगर वो स्वस्थ है, आपने उसे उसका भंडारण जो है ऐसी अच्छी जगह पे किया हुआ है जहाँ पे

0: नमी नहीं थी, आर्द्रता नहीं थी, शुष्क जगह पे अगर आपने रखे हैं, साफ सफाई वाली जगह में रखे हैं, चूहों का जो है वहाँ पे प्रकोप ना हुआ हो, उस फसल में जो है कीट के अंडे बच्चे ना रहे हों, तो वैसी फसल अगर आपकी है, मतलब ऐसे बीज अगर आप हैं, तो उसका प्रयोग आप बिल्कुल अपने खेत में कर सकते हैं, है ना, सबसे पहले। दूसरी बात ये कि बस ये ध्यान ये रखिए कि लगातार अगर आपको 3-4 साल हो चुके हैं उसी बीज को बार बार लगाते हुए, तो फिर उसको ना लगाए, उससे उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि उसमें जो है बीज में जिससे जो पौधे निकलते हैं वो उतने स्वस्थ नहीं हो पाते। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो आप जो हैं लगातार 3-4 साल जो हैं एक ही फसल के बीज को बार बार ना लगाएं, और आप बीज प्रमाणित हो, चाहे आपका जो है आधार बीज हो, वो आप अच्छी संस्थान से ले सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, है ना, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको जो फसल लगानी है उसके अच्छे गुणवत्ता के बीज जो है को मंगा के दिए जा सकते हैं। वहाँ पे जो है आप बीज की मात्रा बता दीजिए, फसल बता दीजिए, वो आपको अगर उनके पास नहीं होता तो वो आपको बता देंगे कि आपको वो बीज कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। दूसरी बात ये कि बीज उपचार करके लगाना जो है ये बहुत अच्छा कार्य होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, बाहर दुनिया में बच्चा आता है, तो उसी तरह से बीज, अब वो आपका समझ जाइए एक इशू है जिसको आपको लगाना है, पौधे निकलेंगे, फल लगेगा, उत्पादन आएगा, तो उसको आपको उपचारित करना पहले आवश्यक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि नमक का जो 17% का जो घोल होता है उसको बना लें आप घर में, उसमें जो है बीज को डुबा के रखें, उसमें जो बीज हैं वो हल्के बीज जो होंगे वो ऊपर आ जाते हैं, मतलब जो स्वस्थ नहीं रहते, जिनके अंदर कीड़े रहते हैं, जिसको अंदर से वो खोखला कर देते हैं या कोई बीमारी रहती है, तो उन बीजों का वजन कम हो जाता है, तो नीचे नहीं बैठते, ऊपर तैर के आ जाते हैं, तो उन बीजों को आप हटा दीजिए, जो अच्छे बीज नीचे बैठते हैं उन बीजों का आप सुखा के वापस जो है खेत में बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि बोने से पहले जो है आप अगर आप जैविक की तरफ जाना चाहते हैं तो राइजोबियम कल्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएसबी कल्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीजों के बढ़वार के लिए सहायक होते हैं, फसल के हिसाब से अलग अलग, फसल के हिसाब से वो अलग अलग प्रयोग किया जाता है, किसी में जो है वो आपकी फसल कौन सी है उस हिसाब से वो निर्भर करे। दूसरी बात ये कि किसी भी क्या बोलने से फफूंदनाशी जो होती है कार्बेंडाजिम नामक एक दवा आती है, उसको भी आप 2 किलो प्रति बीज की दर से जो है मिला के उसको जो है आप बीज की बुआई करें, तो उससे भी जो है रोग जो जनित बीमारियां होती हैं वो पौधे पे नहीं आती हैं। और अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें जो है कीट का प्रकोप बीमारी से ज्यादा होता है तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, उसका भी आप मिश्रण बीज में मिला के जो है अच्छी तरह से सान लें, और उसके बाद आप उसको जो है बीज को जो है बुआई कर सकते। तो बीज का स्वस्थ होना सबसे पहले आवश्यक है, स्वस्थ बीज होगा तो आप ये मान के चलिए उससे स्वस्थ पौधे होंगे और उसमें जो है उत्पादन आपको अच्छा मिले।
1: तो डॉक्टर साहब सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हमको बीज बीज बाहर से ले जाए कि अब घर में तैयार करके उपयोग करेगा, ये जानना चाहते हैं।
0: देखिए आप अगर बीज घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप बीज उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा ले लीजिए। बीज उत्पादन कार्यक्रम होता है, उसमें जो है आपको जो है बीज जो है बीज निगम से या फिर जो है कृषि विज्ञान केंद्र से या NSP से, है ना, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम में जो है करवा लीजिए, उसमें जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम में लेने से आपके जो है बीज उत्पादन का कार्य अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको इसमें उत्पादन में कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है तो अच्छी, देखिए हाइब्रिड का तो दोबारा होता नहीं, तो अच्छी फसल अगर आप लेते हैं, जैसे आप आधार बीज लेके आते हैं, आधार बीज ला के लगाइए आप, और उसको जो है उगाने के बाद जो है उसको अगले साल के लिए आप 2 साल के लिए भी आप इस्तेमाल करके बुआई कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने शुरू में जो कहा कि अगर आप वो 4 साल पहले से लाए हैं और उसी को बार बार लगा रहे हैं तो इस तरह का कार्य करने से क्या होता है कि फसल जो होती है वो स्वस्थ नहीं हो पाती। मान के चलिए कि आपको हर 3rd साल जो है नया बीज लाना चाहिए, आधार बीज ले आए, उससे फिर आपका जो है सर्टिफाइड बीज प्रमाणित बीज बन जाएगा, आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के फोन लगाए पर।
1: धन्यवाद।
2: हेलो चौपाल।
3: हेलो नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: जिला सागर तहसील बंदा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, करण सिंह, जिला सागर मध्य प्रदेश।
2: बताओ आज आप मन के क्या प्रश्न है?
3: उड़द बोई है तो उसमें पता में छिदना हो रहे हैं,
2: हाँ।
3: कौन सी दवाई डाल रहे हैं सर?
2: उड़द बोए हो वो छिद्र हुआ थे, तो एक निवारण आप जानना चाहते हो तो आवा जानथन विशेषज्ञ मल्ले आपके समस्या के समाधान।
0: चरण सिंह जी, आप अगर उड़द लगाए हैं तो अगर आप उड़द को पास से जाके देखेंगे कि छेद जो हो रहा है वो किस प्रकार का कीट आपके जो फसल में है, इल्लियां जो होती हैं वे भी पत्तियों को काट के खाती हैं, बाल वाली इल्लियां प्रमुख रूप से जो है उड़द में आ जाती हैं, फिर कई बार ऐसा होता है कि सूखी की वजह से जो है कुछ ऐसे कीट रहते हैं जो उनके कीट नहीं रहते लेकिन फिर भी जो है पत्तियों का भक्षण करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अगर आपके उसमें जो है उड़द की फसल में छेद हो रहा है तो आप सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि उसमें कहीं पीलापन आ रहा है क्या, क्योंकि उड़द में जो

0: पत्ती काटने वाले कीटों से ज़्यादा जो है रस चूसक कीट जो हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो आप ये देखें कि अगर कहीं से उड़द का जो पौधा है उसकी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं और मुड़ रही हैं तो आप उसे तुरंत जो है निकाल के नष्ट कर दें। नष्ट भी अपने खेत से दूर ले आके करें और कहीं ज़मीन में उसको गाड़ दें या अगर जला सकते हैं तो जला दें, अगर कुछ पौधे रहते हैं तो कहीं दूर ले जा करके।
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: जी सर, धन्यवाद सर।
2: हेलो चौपाल,
3: मैं दानीराम चंद्रवंशी बोला था भैया, लखनपुर कवर्धले। सब्जी के बारे में, कीटनाशक के बारे में पूछे लगा है भैया।
2: अच्छा, तो आओ जानन आप मन के समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञ मन ले।
0: कौन सी सब्जी आप लगाए?
3: सब्जी लगे भैया, भिंडी उंडी सब लगे ना, कोहरा उड़ा तुम देखा दवाई बार पूछे।
0: देखिए, हर सब्जी की समस्या अलग होती है, उसका निदान अलग होता है ना। तो कौन सी फसल में, कौन सी फसल आप लगाए हैं जिसमें अभी आपको जो है समस्या आ रही है, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप भिंडी लगाए हैं तो मैं भिंडी के बारे में बता दूं। देखिए, भिंडी की फसल जो होती है ना, वो अगर आपने सही तरीके से लगाए हैं और पानी की उचित व्यवस्था आपके पास है तो उसका भिंडी का पौधा जो है स्वस्थ अवश्य होगा। और अगर उसके बाद भी अगर कीट लगते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसके कीट में जो होता है फल भेदक एक कीट लगता है भिंडी में, है ना। भिंडी में जो फल भेदक कीट लगता है जो सीधा सीधा फल में छेद कर देता है, जिससे उसके जो है बाजार मूल्य कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप सतत निगरानी कर रहे हैं और अगर आपको जो है वो कीट जो है अभी शुरुआती उसमें दिख रहा है, किसान भाई ये ध्यान रखें कि भिंडी की फसल में अगर जो है छेद होता दिख रहा है तो जो उसमें सबसे पहले जो है नीम अजाडायरेक्टिन नाम की जो दवा आती है, नीम की दवा रहती है ये, इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है जैविक कीट नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो है नीम का प्रयोग करें, जो आपका 300 ppm का जो मार्केट में मिलता है उसको जो है 1.5 liter प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है किसान भाई जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि ये दवा डालने के बाद, और इसका प्रयोग आप हर 15 दिन की आड़ में कर सकते हैं, अगर उसमें नियंत्रण आपको मिल जाता है तो आपको जो है अन्यथा जो है रासायनिक कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कीट ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जो है आप फिप्रोनिल नामक एक दवा आती है उसको आप 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इससे जो है रस जो फली भेदक कीट हैं उसमें भिंडी में जो लगते हैं उससे आप जो है निदान पा सकते। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि भिंडी के पौधे जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए ना हों। अगर सटे हुए रहते हैं तो उसमें जो है कीट एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पुरानी फसल ना हो। कई बार किसान भाई जो है भिंडी को बहुत लंबा लंबा लगा के रखे रहते हैं, तो उस तरह भी लगा के ना रखें। और दूसरी बात यह कि अगली बार अगर उसी खेत में भिंडी ना लगाएं, आप अपना खेत बदल कर भिंडी लगाएं, तो उससे जो है कीटों का प्रकोप जो है कम हो सकता है।
2: जब तक हमारे अभी श्रोता मन के फोन नहीं आते, तब तक आप मन से ये जानना चाहो कि सरकार ढाले समिति कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन पर बढ़ावा दे बर कोई योजना चलात हुई तो उला बताते हमारे किसान संगवारी मन।
0: देखिए, ये जो जैविक खेती के ऊपर जो है ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से जो है बहुत कार्य किए जा रहे हैं, और जैविक को बढ़ावा देने के लिए कई जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी जो है जैविक उत्पादन कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। किसान भाई जो हैं कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं कि जैविक उत्पादन कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है, जिसके लिए जो है उनके तरफ से अनुदान में कुछ कुछ चीज़ें जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, किसान भाई जो है उसको भी जाके पता कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि जैविक कीट नियंत्रण के लिए या जैविक फसल उत्पादन के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि सिर्फ पहले साल ही जैविक कर लेने से वो जैविक का प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है ना। कम से कम 3 साल किसान भाई को जो है वो जैविक फसल को लगाते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका जैविक प्रमाणीकरण होता है। तो इस चीज़ के लिए जो है व्यवस्थित रूप से जो है जैविक के लिए जो है उस जिले में जा करके आपके जो कृषि के कार्यालय हैं वहाँ पे जाके जो है किसान भाई उसका लाभ ले सकते।
2: तो डॉक्टर हुमायूं जी, आज आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जौन आज हमारे स्टूडियो में पधार के हमर जिज्ञासु किसान संगी मल्ला फसल मनमा समिति कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन विषय में सुघर सुघर जानकारी देव। आज के हेलो चौपाल क्रम के प्रस्तुतकर्ता रहना भाई शशि प्रकाश पांडे, तकनीकी सहयोग रही साबय प्रियंका डिक्सेना और उदय ठाकुर। अब देव विदा, सतीश कुमार यदु के राम राम।
0: धन्यवाद।
4: हेलो चौपाल माँ, अभी सुनत रहें फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन और विशेषज्ञ रहीन हैं डॉक्टर एस एम अली हुमायूं जी, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले, और गोट बात करावत रहीन है सतीश भाई।
2: अब श्रोता संगवारी हो, हेलो, किसान से संबंधित हमारे एक विशेष सूचना हमें सुन ले। आप मन आगामी मंगलवार 19 मई 2026 के प्रसारित होइया हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय होई धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। विषय में आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमर स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित रही मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका समाधान पाए खातिर हमन ला फोन कर सकते हो। हमर फोन नंबर हवे 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के स्टूडियो कोड हवे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाए और ये कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन मंगलवार के संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन कॉल के इंतजार रही संगवारी हो, सूचना यही मेरे सिरावत है।
4: और क्रम कृषक प्रश्न मंच में आज लिख लेवाओ हमर प्रश्न ला। हमर प्रश्न है, बीज उपचार कौन कौन माध्यम ले करे जा सकत है। प्रश्न एक और बता देता हूँ, बीज उपचार कौन कौन से माध्यम ले करे जा सकत है।
2: संगवारी हो, एला बढ़िया सुने हूँ और बढ़िया सुघर लिख के समय में भेज दू। जेकर बर हमर ईमेल पता है raiaajkeprashn23@gmail.com।
4: और हमर पाछू हफ्ता के प्रश्न रही सावे, अपन बारी मा कौन कौन से सुगंधित पौधा लगा सकत हावन। तो एकर सही जवाब है तुलसी, एलोवेरा, सतावर, अश्वगंध, पुदीना। और सही जवाब भेजैया हमर संगवारी मन हावे नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक जीत, पुष्पांजलि वर्मा, मदनपुर कवर्धा लेहे श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, गरापार बांधा बाजार लेहे राकेश साहू, सुलोचना मानवेंद्र साहू, आर्यनगर कोहका भिलाई लेहे उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, मानस अजीत, आयुष नंदनी जंघेल, नागर कोहरा राजनांदगांव लेहे बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत बेबी, आराधना साहू, कांकेर संबलपुर लेहे फागुराम यादव, ज्योति यादव, जस्वी यादव, ग्राम बठेना पाटल है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, उमेश, प्रमिला, मिथलेश वर्मा मन हा।
2: संगवारी हो, अतेक सुघर आप मन हा सुन्नर वार्ता सुने हा और हमर तक ईमेल पठोय हा, एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आओ आप सुन लेथन ये सुघर से गीत कृष्ण कुमार पाटिल के स्वर्मा।

0: कृष्ण कुमार पाटिल के स्वर माँ अभी सुने ये सुघर की
1: संगवारी हो। अब कार्यक्रम ले विदा लेके बेरा हुआ थे तो बता देवन काली के कार्यक्रम कली आज की बात में सुनूं पशुधन पर पौष्टिक चारा अजोला। आज की सलाह में सुनूं परंपरागत तरीका ले मछली प्रसंस्करण। विशेषज्ञ हो ही देवती जायसवाल सहायक प्राध्यापक फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा। दाऊ जी वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग। और सुनूं गीत संगीत तो देवाविदा जम्मो संगवारी मल्ला सतीश कुमार यदु
0: और ऋचा के राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए खिलाड़ी फिल्म का ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में। अनुवाद सागर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम के स्वरों में जुर्म फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं देवर और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मीडियम व्यूअर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पवन चंद्राकर। कार्यक्रम में पहले सुनिए पवन चंद्राकर के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे पवन चंद्राकर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। भारतीय वुशू टीम ने मकाऊ में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हरजिंदर कौर ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची।

0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 राज्य पदक जीत करके ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। आज खेले गए फाइनल मुकाबलों में 64 किलोग्राम वर्ग में राखी ने उज्बेकिस्तान की रुखशोन बोनू अहदोवा को और 57 किलोग्राम वर्ग में नव्या ने जापान की सारा कोनो को 4-0 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। लड़कियों में ही 48 किलोग्राम वर्ग में खुशी चंद, 63 किलो वर्ग में दिया, 70 किलो वर्ग में हिमांशी, 75 किलोग्राम वर्ग में ज्योति, 80 किलोग्राम वर्ग में वंशिका और 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में गुरसीरत कौर ने रजत पदक जीता। लड़कों के वर्ग में एकमात्र फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार

0: वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ताशकंद में भारतीय मुक्केबाजों का ये कीर्तिमान अभियान भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, भारतीय बॉक्सिंग का एक स्वर्णिम अध्याय कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में पदक जीते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि विजेंद्र ने जो मशाल 2008 में जलाई थी, जिसको मैरीकॉम लंबे समय तक लेके चली, आज भारत के युवा खिलाड़ी अंडर 15, अंडर 17 वर्ग में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
2: हाँ जी, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए ओलंपिक में पदक पहला उन्होंने दिलाया था, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो डिंकू सिंह जैसे बॉक्सर भी थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत सफलताएं, एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए थे, बहुत लंबे समय बाद वो जीते थे, कॉमनवेल्थ में भी अच्छा प्रदर्शन किया कुछ मुक्केबाजों ने लगातार, तो वहाँ से एक परंपरा कह सकते हैं कि, और ये पहले से चली आ रही है। कौर सिंह 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीते थे, उससे पहले हवा सिंह हुआ करते थे, तो ये सब हरियाणा के ही ज्यादातर, डिंको को अगर हम छोड़ दें वो मणिपुरी थे, तो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी बनी सकती बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वहीं से ज्यादातर हमारे मुक्केबाज निकले हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ी है। तो और इसके अलावा जब हरियाणा से निकलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सफलताएं मिलने लगी, तो बाकी राज्यों में भी उसका असर देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी उस तरीके की चीजें देखने को मिली, तो लगातार जो है जैसे लवलीना वगैरह जहां से निकल के आई, असम से आए कोई, मणिपुर से बॉक्सर हैं, मैरीकॉम का आपने जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि नई पौध से ही आगे हमें बड़े मंच पे जो है खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर अंडर 15 में 27, अंडर 17 में 17 इस तरीके के पदकों का अगर जखीरा ला रहे हैं हमारे नए नवोदित नई पौद, और अभी अंडर 19 स्तर पे अब प्रतियोगिताएं होंगी, तो यही अच्छी चीज़ है, सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है ये, क्योंकि यही तो आगे चल के ध्वजवाहक बनेंगे हमारे जो असली
1: जो हमारी कतारों के ध्वजवाहक बनते नजर आएंगे ये खिलाड़ी आने वाले समय में। और सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने वुशू के खेल में भी अपना शानदार दबदबा दिखाया है। भारतीय वुशू टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।
3: अपर्णा दहिया और शिवानी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मकाओ में अपनी शानदार स्किल और काउंटर अटैक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक यादगार अभियान का समापन किया। अपर्णा दहिया ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन थी फुओंग को सीधे सेटों में हराकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने अपनी रूस की प्रतिद्वंदी के सामने सांडा कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को 2 गुना कर दिया। अपर्णा और शिवानी ने पिछले वर्ष ब्राजील में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में कुशल कुमार ने रजत पदक हासिल किया। करीना और सागर दहिया ने 1-1 कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या को 5 कर दिया। मकाओ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 देशों और क्षेत्रों के कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, भारत ने 5 पदक जीते, 3 पदक भारत के लिए बेटियां लेकर आई। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा शिवानी की, बीएसएफ में कांस्टेबल हैं
2: जी,
1: लास्ट ईयर सिल्वर जीती थी, अपर्णा भी सिल्वर जीती थी, और इस बार देखिए कि अब दोनों ने एक साथ पदक की चमक को बढ़ा दिया।
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अगर कोई अपने पदक का रंग बदलता है खिलाड़ी, तो ये एक बड़ी सफलता है। रजत से आप स्वर्ण पदक पे अपने उसको ला रहे हैं प्रदर्शन को, और अब ये जिस तरीके से हम पहले 19 में प्रवीण कुमार थे, एक सांडा खिलाड़ी जिनको हम जानते थे कि वो पहले खिलाड़ी भारत के हैं जिन्होंने वुशू वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब लड़कियां भी उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा, और ये बहुत कोई पुराना खेल भी नहीं है भारत के लिए। वुशू मात्र 3 दशक पहले इसकी यहाँ शुरुआत हुई, और शुरुआत में तो एसोसिएशन लखनऊ से ही इसकी चलती थी जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि ये तत् थोड़ा बहुत फेर बदल के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन लोग इस एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया भारत में इसकी जमे जाना, हालांकि अभी ओलंपिक खेल नहीं है शक्ति
1: जी, बिल्कुल,
2: लेकिन जिस स्तर पर भी अभी खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और 5 पदक लाना लड़कियों द्वारा, सारे पदक जीतना, ये एक बड़ी उपलब्धि है
1: जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 96 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आज कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने वजन उठाया भी है, वजन दिखाया भी है, और हर क्षेत्र में जहाँ पर भी बल प्रयोग हो सकता है भारत ने भरपूर मेडलों की संख्या बढ़ाई।
2: देखिए, इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है। शुरुआत लड़कियों ने की, फिर कल का दिन एक पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा, आज फिर हरजिंदर निकल के आई हैं मेडल विनर के तौर पे। और हरजिंदर का अभी पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बर्मिंगम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो एक बड़ा कंपटीशन होता है चूँकि, तो उसमें कॉमन वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लाना एक बड़ी सफलता है। और पिछले साल ही उन्होंने अहमदाबाद 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी मेडल जीता था। तो अपने प्रदर्शन को हालांकि अभी ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर नहीं ले जा पा रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि 25 में भी जीता और 26 में भी जीत रही हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि भारोत्तोलकों के लिए बहुत बहुत चुनौतियां होती हैं बड़ी अलग तरीके की। आपने देखा ही होगा कल भी जो अजीत जीते थे वो मात्र 1 किलोग्राम वर्ग से उन्होंने किसी खिलाड़ी को चौथे नंबर पे छोड़ा था और ब्रॉन्ज मेडल पोडियम पे आने में। तो ये बड़ा बड़ा कठिन खेल है ये कि आप 1-1 किलो किस तरीके से अपने वजन को बढ़ाते हैं और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी इंजरीज के बीच में
2: बहुत मुश्किल खेल है ये।
1: जी बिल्कुल, और 1-1 किलो वजन बढ़ाने में लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और कहीं आपका एज ग्रुप बदल गया तो फिर आपको नई चुनौतियां नए सिरे से।
2: हाँ बिल्कुल, बहुत चुनौतियां इस खेल में।
1: आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की।
4: धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में कल वापस जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लिए पंजाब किंग्स का सामना हुआ प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम से। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए 35 गेंद में सर्वाधिक 57 रन बनाए। अजमतुल्ला उमरजाई ने भी 17 गेंद में 38 रन का अहम योगदान दिया। MI की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने शुरुआत से ही सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने 39 गेंद में टीम के लिए 61 रन जोड़े। रिकल्टन 23 गेंद में 48 रन और रोहित 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में शानदार 75 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं टीम के लिए बचा हुआ काम विल जैक्स की 10 गेंदों में 25 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी ने कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने पंजाब के लिए 2 विकेट भी लिए। सीजन के शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब की लगातार 5वीं है जिसने उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ को थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, जिस तरह की शुरुआत पंजाब की सीजन में हुई थी, फेवरेट्स थी, अभी भी काफी हद तक फेवरेट्स है, और इतनी फेवरेट्स है कि लगातार 5 मैच हारने के बाद भी चौथे नंबर से कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन क्या हो गया इस टीम की फॉर्म को?
2: देखिए, स्कोर तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, 200 रन कोई कम नहीं होते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इस टीम के लिए। इस सत्र में उन्होंने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 200 रन का स्कोर जो है टांगा है, और इससे पहले और पिछले साल भी उन्होंने ये इस तरीके का कर दिखाया था। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो उनके बराबर ठहरती हैं, लेकिन इसका वो बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जिस अंदाज में खेले हैं, मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बनाए, और ये उनका पहला अर्धशतक है इस सत्र में 10 पारियों में, तो वो जिस तरीके से आड़े आ गए पंजाब के, वो कहा जा सकता है। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी अच्छी थी, उनको 2 कैच भी उनके ड्रॉप हुए और बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवनदान ये मिले, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ये आप कह सकते हैं कि अगर वो 57 रन से कहीं बड़ी पारी खेलने में सफल होते तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से बीच में मैच थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपने कब्जे में लिया, एक ये भी वजह हो सकती है कि बहुत अच्छा उनका औसत चल रहा था, वो 200+ जा रहे थे, जा भी सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जिस अंदाज में लिए, उससे मैच कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से निकलता तो नहीं। अब ये तो 200 रन तो पर्याप्त थे, फिसलता इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब मुंबई इंडियंस खेल ली तिलक वर्मा की वो इतनी बड़ी पारी आ गई, तो उसके बाद इसको माना जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, शार्दुल ठाकुर उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं पंजाब के, लेकिन अब ये है कि इनके लिए करो मरो की स्थिति तो जरूर

0: लेकिन टीम बहुत ही मुझे लगता है कि एक हौसले के साथ खेल रही है, जरा भी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दे रहे, ना खिलाड़ी ना कोच ना कप्तान। तो अगर उस हौसले के साथ ही उतरते हैं तो मुझे लगता है उसका लाभ इनको मिलेगा जरूर।
1: जी बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब की नजरें आज के मुकाबले पे होंगी, जो कि अगर चेन्नई जीतता है तो शायद इस सीजन में पहली बार पंजाब अपने आप को टॉप फोर के नीचे पाएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल, अब पंजाब चाहेगा कि यहाँ से कम कोई गलती को ना दोहराया जाए और वापस अपनी पुरानी
0: लय को। वही है कि उनके दो मैच बचे हैं तो उनको दोनों जीत रहे हैं, तो
1: जी बिल्कुल
0: उस अंदाज से उनको खेलना है कि अब ये दोनों ही मैच हमारे लिए क्रूशियल है, हमें जीतने करो या मरो शब्द मैंने इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल किया।
1: जी बिल्कुल, अब करो या मरो के मुकाबले पंजाब को खेलने होंगे और जो शीर्ष दो में पहुंचने की दौड़ थी उसको फिलहाल शीर्ष चार तक बांधने की कोशिश होगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी को 21-12 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलाउत विदित्सन से 19-21 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए खेलों में जो आज एकमात्र बुरी खबर रही वह ये रही कि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का अभियान थाईलैंड ओपन में आज समाप्त हो गया।
0: ये है कि मतलब क्वार्टर फाइनल तक देखिए आए, अब उससे आगे जाने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे दोनों के, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपका कमी रह गई। सिंधु भी लगातार अच्छा कर रही थी इस टूर्नामेंट में, लक्ष्य भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों के जो सामने जो खिलाड़ी थे वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए, तो वो मौका नहीं मिला उनको। लेकिन ले जाते अगर वो अपने अभियान को और आगे तो और ज़्यादा बेहतर होता।
1: जी बिल्कुल सचिन, लेकिन भारत की इस ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी पे क्या कहेंगे, जहाँ पे सात्विक और चिराग हैं हर कॉम्पिटिशन में भारत को कुछ देते हैं।
0: वो तो बहुत ज़बरदस्त खेल ही रहे हैं और उनके वजह से देखिए बहुत सफलताएँ भी मिली हैं, और अब जब सिंगल्स में कुछ नहीं इस तरीके के कोई टाइटल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डबल्स में आए कम से कम, क्योंकि जो बैडमिंटन ने जो एक दिशा दिखाई थी जो खिलाड़ियों के लिए वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए, अगर वो सिंगल्स में नहीं तो डबल्स में सही।
1: जी बिल्कुल, डबल्स में उम्मीदों के साथ कल ये टीम सेमीफाइनल खेलने उतरेगी और उम्मीद होगी कि उसको किताब में बदलने की कोशिश हो। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद सचिन।
0: धन्यवाद शक्ति।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
5: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
7: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
8: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा

0: है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले, पप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाजों में अनजान का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं पप्पी लहरी, फिल्म का नाम है नमक हलाल।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। करेंट अफेयर्स ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: करेंट अफेयर्स। Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
2: आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
1: The two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with 7 major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor Anshu Joshi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Thank you to both our guests for joining us on this program on Akashvani.
3: Let me begin.
1: Before we proceed further into the discussion, let's listen to this special interview of Indian Ambassador to the UAE on the significance of India-UAE ties by Prasar Bharati correspondent Vinod Kumar.
4: The MOU on strategic petroleum reserves comes at a time of significant supply disruptions in West Asia. Master Deepak Mittal, how

0: Innovation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we will have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aaiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है, और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें फिर एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है. उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ आरंभ भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे.
2: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है. नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है. सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी.
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं. हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें, यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए.
2: सर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है. उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण, जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी की जो मिशन लाइफ है उसके संबंध

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। आपके साथ तबले पर संगतकार थे अभिजीत बनर्जी, तानपुरे पर संगतकार थे मदन बोंगाले। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सोम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पोस्टकार्ड लिख भेजा है। धरसीवा से हैं छिदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। बेलरगांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। बाजार पारा बेमित्र से हैं भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा। भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना, सेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। मगलोड से हैं पुनुराम साहू, तेजस्वरी, राशि और राजवीर साहू। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। कमल विहार रायपुर से हैं रतन जैन, कोकिला जैन, वैभव और चिराग जैन। रुद्री धमतरी से हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, शिखा और शेफाली साहू। पांडा पलारी से हैं नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन। पोटियाकला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। बाजार वार्ड महासमुंद से हैं भीष्मदास, नर्मदा, हिरमणि, दीपक और लक्षदास। लक्षणपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इज्जत फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पोस्टकार्ड लिख भेजा है आप सभी ने। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। भिलाई जामुल से हैं विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ, संजय और पूजा प्रधान। सिमगा से हैं सविता जैन, प्रदीप, बीना, देवेंद्र और आदेश जैन। डोगड़गांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। लोरमी ग्राम चचेड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। और रेठी पारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा साहू। गुढ़ा सोनपुरी से हैं दिलीप पाठक, श्रीमती रेखा पाठक, दीप्ति और दादू पाठक। दतरेंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और अनोखेलाल वर्मा। सहसपुर से हैं छोटकू साहू, मोहित, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद और सतीबाई साहू। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। समडिल नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। बागबाहरा भद्रसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। आप सभी ने सुनना चाहा है इज्जत फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लव इन टोक्यो, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा।

किरित राय, दीपक, प्रदीप, बीबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी और शरद डोडवानी। भाटापारा से हैं बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। खैरागढ़ राज लालपुर से हैं मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा और येशु भीमटे। ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक से हैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता और गजेंद्र गुप्ता। वार्ड दो गंडई पंडरिया से हैं शिवा यादव, राज, चिंटू, तरुण, चुआराम, कन्हैया और निर्मला यादव। दुर्रा बांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन और युवराज साहू। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, विक्की, लक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप सभी ने। ग्राम रोहासी से हैं डगेश्वर राम साहू, अलका, जानवी, घनश्याम और नूतन गौरव साहू। अरमरी खुद बटरेल दुर्ग से हैं चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार वार्डे और नेहा वार्डे। भाटापारा से हैं रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ अयाज, अल्फैज और हजीरुन निशा। साकरा सोमनी राजनांदगांव से हैं नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप, मिलेंद्र, कुलवंतीन, नेहा और कुमारी टिकेश्वरी। शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से हैं रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा। आप सभी ने सुनना चाहा है लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए वक्त फिल्म का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है रवि ने। इस गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप सभी ने। कोटा रायपुर से हैं योगिता वर्मा, रुचि खुशी और ओजल वर्मा। कोटा से ही हैं अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर और दिनेश सेन। रामनगर रायपुर से हैं राजेश अम्बादे, शशिकला पूजा अम्बादे। हथनीपारा भाटापारा से हैं चौहान राम वर्मा, मुकेश दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है आप सभी ने। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। कांकेर संबलपुर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। पारा अहिवारा दुर्ग से हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। चिमबिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर। हटौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल। चरौदा बार नावपारा बलौदा बाजार से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। आप सभी ने सुना चाहा है वक्त फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। शैलेंद्र का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का। पत्र लिख भेजा है इस गीत के लिए आप सभी ने। श्री गाथापाठ से हैं कुमारी लावण्या साहू, कुमारी उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभुराम साहू। यहीं से ही हैं धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू। भाटापारा से हैं नारायण यदु, पुनिया, राकेश और असी यदु। इसी गीत के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत दानो, पद्मिनी नीरज शुभम और सौरभ रावत। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। लघान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू। भाटापारा से हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। पीपरलोड सरगांव से हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। रिंगनी से हैं दिनेश और करुणा वर्मा। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। आप सभी ने सुना चाहा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे

0: सारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also call for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stress the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stress their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there's not an iota of truth in it. The Prime Minister said there's no question of putting such restrictions on foreign travel. The Central Bureau of Investigation has arrested